जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई पड़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं? इस कारणवश हृदय में दुख और असंतोष रहता है सदा। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में, क्या आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है हृदय में, वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए।

भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में

उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं। हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का। तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए।

सुप्रभात श्रोता साथियों, सुबह के सुनहरी सफर में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज। और मैं हूँ साथियों आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर, लेकर हाजिर हो चुकी हूँ इस ताजगी से भरी सुबह में हमारे दिन के सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, हर नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद, एक नए सपनों की किरण लेकर आती है, और हम भी चाहते हैं कि आपके दिन की शुरुआत भी हो ज्ञान, प्रेरणा और मधुर संगीत के साथ में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत सफर की, जहां हर पल होगा खास, कुछ नया सीखने वाला और कुछ मन को छू जाने वाला, सिर्फ सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो पर। साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना, दिन की शुरुआत हो प्रभु के नाम से। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भक्ति, श्रद्धा व आस्था से जुड़े गीतों को, जो आपके मन को शांति दे। तो आइए साथियों, ईश्वर की वंदना के साथ अपने दिन की शुभ शुरुआत करते हैं। इसी के बाद सुबह 6:30 पर होगा कार्यक्रम खेतीबाड़ी, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है और उनकी मेहनत से ही जीवन की थाली सजती है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं साथियों खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण सलाह को, ताकि खेतों में हरियाली बढ़े और किसानों के चेहरे पर मुस्कान खिले। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। सुबह 7 बजे श्रोता साथियों हम प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन, नन्हे मुन्ने श्रोता साथियों के साथ, जहां होंगी रोचक कहानियां और ढेर सारी मस्ती। यह कार्यक्रम बच्चों की दुनिया

दुनिया को ज्ञान और संस्कार के रंगों से सजाता है। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं, और मेरे साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। साथियों, इसी के बाद हम रुक करेंगे सुबह 7:30 पर। आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही देश की असली शक्ति है। इस कार्यक्रम में मिलेंगी करियर से जुड़ी जानकारियां और नए विचारों को मंच, ताकि हर युवा अपने सपनों को नई उड़ान दे सके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर, और मेरे साथ होंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट। इसी के बाद दोस्तों सुबह 8 प्रस्तुत होगा कार्यक्रम सच्चा स्वराज, क्योंकि स्वराज केवल स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और जागरूकता का संदेश भी है। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। इसी के बाद दोस्तों हम रुक करेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास और परंपराओं की ओर। लोक संगीत में बसती है हमारी मिट्टी की पहचान, तो तैयार हो जाइए साथियों ढोलक बांसुरी मंजीरे की मधुर धुनों पर झूमने के लिए कार्यक्रम लोक संगीत में। इसे आप सभी सुनेंगे ठीक सुबह 8:30 पर। इसी के बाद दोस्तों हम फिर से बढ़ेंगे अगले कार्यक्रम की ओर सुबह 9 और सुनेंगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस कार्यक्रम में आप जानेंगे डॉक्टरों की सलाह, योग से जुड़ी ढेर सारी बातें और बीमारियों से बचाव के तरीके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। इसी के बाद दोस्तों शुरू होगा हमारा विशेष प्रेरणादायक कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जिसमें आप जानेंगे साथियों नए नए प्रेरणादायक विषयों के बारे में और हमारी सपनों की उड़ान के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी और इसे आप सुन पाएंगे ठीक सुबह 9:30 पर। तो श्रोता साथियों, जैसा कि रूपरेखा कार्यक्रम की आप जान ही पा रहे हैं, अब समय है सीधे आपसे जुड़ने का और आपकी बात सुनने का। कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में, जहां आप सभी सुनेंगे आपकी राय, आपके अनुभव और समाज से जुड़ी बातों को। इसी के आगे साथियों दोपहर 11 से 1 तक प्रस्तुत होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जो है सिर्फ आपके नाम। इस कार्यक्रम में बजेंगे वही गीत जो आपके पसंदीदा होंगे। आप अपनी फरमाइश और संदेश के लिए हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं साथियों हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों जुड़े रहिए सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो के साथ में, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज ही है सबसे खास। तो श्रोता साथियों, यह तो थी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब शुरुआत करते हैं आज की सुनहरी सुबह की कार्यक्रम आराधना से।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आंगनवाड़ी जाई में तारो नाम लगाओ, भारी पोग बहन तू जासे तीन कराओ।
2: सोराना नक्काबजू, नाना राको वार, साफ सफाई राखजू, खाजू सब्जी दार।
1: भिंडा तुरिये आलड़ी, कोराने वालोर, रोपो खाओ सब्जिये, डीले आवे जोर।
2: सीरो दलियो राबड़ी, फूली सोका दाल, पांचवे महीने बाल ले, आ खवानो आल।
1: अणी वातनु ध्यान राखो, आपणो जीवन सुरक्षित राखो।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बुनों ने आपनी बुन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बुन आप हमरी रहो आपनो सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 एफएम माते ने आप सबनो घणे मान स्वागत करो हो अमारे आसे कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम की भाई बुनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थे जह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाते। तो भाई बुनो आज हमारे कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नो विषय है कि अगर पशुओं में पानी की कमी थी सा तो आना हो प्रभाव पड़े है ने हरते आपणे पशुओं ने पानी की जो आवश्यकता है इन्हें हमसा की जरूरत है। तो आज के कार्यक्रम में अना विषय माते हमारी आप तक घना कानी बातें थाएंगा पर कार्यक्रम शुरू कर इन्हें पहले आपने हमरा विदा की मोरे करा अपनी बातें। तो भाई बोनो आप हमरते रहसू आपू रेडियो अपनी बातें वाग रेडियो 90.8 एफएम माते।

0: એન્ડ બનું ગીત તો આવીશું પૂરું નાણા ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સૌનું ઘણેમાન સ્વાગત કરા હો અમારે આજના કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. જેમ કે ભાઈ એન્ડ બનું ગીત કે પહેલા આપને વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હો કે પશુધન મેં અગર પાણીની કમી થઈ જાત આના હું પ્રભાવ થઈ શકે, તો આના વિશે માટે વાતચીત કરવા બદલ કાર્યક્રમ તકી જોડી રહે મનીષજી સર. તો સપ્તકી પહેલા આપણા હામરી લો એણાની વાત અને મોરે કર આપણી વાતે. સર નમસ્કાર.
1: નમસ્તે અંજલિજી.
0: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈ વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં.
1: आपका और वागड़ रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद.
0: सर जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम खेतीबाड़ी से जुड़ रहे हैं और आज हमारे कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है गर्मियों में पशुधन में पानी की कमी के क्या प्रभाव है. हम सभी जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में पानी की आवश्यकता हम सभी को होती है. ऐसे में पशुधन में अगर पानी की कमी हो जाती है तो उसका क्या असर पड़ता है और किस तरीके से हमारे जो पशुपालक भाई बहन हैं वो इस प्रभाव से हमारे पशुओं को बचा सकते हैं.
1: बिल्कुल, देखिए हमारे क्षेत्र में अभी गर्मियां शुरू हो चुकी है और जैसे जैसे अब ये समय आगे बढ़ेगा गर्मी भी समय के साथ और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी. तो गर्मियों में जब तापमान बढ़ता है यानी कि गर्मी बढ़ती है तो यह पशुओं पर अगर इस समय पानी की कमी होती है तो उसके कई गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं.
0: बिल्कुल.
1: और इसके प्रभाव कभी कभी स्थायी होते हैं.
0: जी.
1: पानी की कमी से पशुधन में कई शारीरिक रोग हो सकते हैं, मानसिक रूप से वो अस्वस्थ हो सकते हैं, उनके उत्पादन पे इसका असर होता है और हम ये बोल सकते हैं कि उनके संपूर्ण जीवन में कुछ स्थायी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं जो इस दौरान पानी की कमी के कारण उन्हें हुई थी, तो वो जीवन भर बनी रह सकती हैं.
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा.
1: तो इस समस्या से बचने के लिए गर्मियों में पशुओं को नियमित रूप से पानी देना और उन्हें ठंडे स्थान पर रखकर उनकी देखभाल करना महत्वपूर्ण होता है.
0: बिल्कुल. तो सर जैसा कि आपने बताया कि पानी किस तरीके से महत्वपूर्ण है, यही हमारे अगर पशु में पानी की कमी हो जाती है तो उनके शरीर पर इसका क्या असर पड़ता है.
1: बिल्कुल, हम इसे इस तरीके से भी अलग अलग रूप में देख और समझ सकते हैं कि शरीर पे

0: कम हो जाता है, ये होने से इनके जो शारीरिक सामान्य क्रियाएं हैं ये उसको प्रभावित करता है और उनके शरीर में ताजगी की कमी हो जाती है। यानी कि जिस तरह से एक स्वस्थ पशु होता है वो उस तरह से ना होके उसमें कई आलसीपन जैसे लक्षण हमको दिखाई देने लगते हैं।
1: बिल्कुल।
0: दूसरा, गर्मी के झटके जिसको बोलते हैं, तो ये भी पानी की कमी के कारण हो सकते हैं, क्योंकि पानी शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। यदि उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है तो इससे उन्हें गर्मी का झटका लग सकता है, जिसे सामान्य भाषा में हम लू लगना भी बोलते हैं।
1: जी जी।
0: और कई बार कमजोर पशुओं धन के मामले में ये जानलेवा भी होता है। यदि हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा पशुधन सुस्त है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या तो तेज सांस चल रही है, या हम यदि हाथ लगा के देखें ऐसी असामान्य अवस्था हमें नजर आए, तो उनके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हो सकती हैं।
1: जी जी।
0: तो ये लू लगने के जो है लक्षण होते हैं। इसमें उनके शरीर का तापमान भी जो है बढ़ने लगता है। एक होता है जब अधिक तापमान और पानी की कमी पशुधन के शरीर में होती है तो उनकी कार्यक्षमता तो प्रभावित होती ही है, साथ ही साथ उनकी जो सहन शक्ति होती है
1: जी जी।
0: वो भी प्रभावित हो जाती है। यानी कि हम इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कम करता है।
1: बिल्कुल।
0: अब शरीर के प्रभाव में चमड़ी पर भी जो है आपको कई बार समस्या देखने को मिलेगी, या फर यानी कि बाल। तो कुछ पशुधन ऐसे होते हैं जिनके बाल घने होते हैं, तो पानी की कमी से पशुधन की त्वचा सूखी और खुरदुरी हो सकती है।
1: जी जी।
0: इसके अलावा उनके फर यानी कि बालों को भी नुकसान हो सकता है, या घने बाल वाले पशुधन के जो है बाल गिरने लगते हैं, तो कई बार इनका भी कई पशुपालक व्यवसायिक रूप में उपयोग करते हैं फर का, तो इससे उनको इसमें भी नुकसान होता है। दूसरा, यदि देखा जाए तो चमड़ी के ऊपर जो बाल या फर होते हैं ये छोटी मोटी चोटों को लगने से बचाते हैं, तो यदि ये इसके कारण असमय गिर जाते हैं तो इनसे उनको चोट लगने का खतरा भी बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि अगर पशुओं में पानी की कमी होती है तो उनके शरीर पर किस तरीके से अलग अलग प्रकार से हमें प्रभाव देखने को मिलते हैं। यही सर, पानी की कमी के कारण पशुओं के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है?
0: जी बिल्कुल। ज़्यादातर पशुधन को उनके उत्पादों के लिए या उनकी कार्यक्षमता के लिए हम उनका पालन पोषण करते हैं, तो दुग्ध देने वाले जो हमारे पशुधन हैं यदि उन्हें इस समय पानी की कमी होती है तो पहला हम इसका प्रभाव देखते हैं कि दुग्ध उत्पादन घट सकता है, क्योंकि पानी की कमी से उनके शरीर में तरल की कमी हो जाती है और दूध का अधिकांश भाग जो होता है वो तरल होता है।
1: बिल्कुल।
0: और इसी के कारण उनके दुग्ध के उत्पादन में गिरावट आ सकती है। दूसरा होता है कि हमारे क्षेत्र में सामान्य रूप से बकरों और बकरियों को पाला जाता है, जिसमें बकरों से जो है विशेष रूप से आमदनी प्राप्त की जाती है।
1: बिल्कुल।
0: तो यदि पानी की कमी होती है तो इससे उनका वजन घट सकता है और अन्य नकारात्मक परिणाम जिन्हें हम बोल रहे हैं कि ये शरीर पर असर करते हैं ये भी हो सकते हैं। तो इन नकारात्मक परिणामों के चलते उनका जो लाभ है वो कहीं शून्य ना हो जाए, इसका भी आशंका बनी रहती है।
1: बिल्कुल सर। तो सर, जैसा कि आपने बहुत अच्छी तरीके से ये बताया कि पानी की कमी के कारण हमारे जो पशु हैं उनके दूध के उत्पादन में गिरावट आती है, साथ ही अगर हम कुछ ऐसे पशु पाल रहे हैं जिनका वजन बढ़ना चाहिए और वो नहीं बढ़ता है तो ये भी पानी की कमी का एक कारण हो सकता है। यही सर, क्या प्रजनन और संतति पर भी

0: इसका कोई प्रभाव हमें देखने को मिलता है?
1: जी बिल्कुल, यदि प्रजनन पर इसके प्रभाव देखें तो पानी की कमी के कारण विशेष रूप से मादा पशुधन में प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: इससे या तो उनके गर्मी पे आने का समय लंबा हो सकता है, कई बार गर्भपात की समस्या भी देखने को मिलती है।
0: जी जी,
1: तो इस तरह से प्रजनन और संतति पर इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा यदि देखा जाए तो जो छोटे बछड़े होते हैं वो या तो होने वाले हैं या वो हो चुके हैं और बहुत छोटे हैं, तो अगर होने वाले हैं तो गर्भवती पशुधन में पानी की कमी के कारण भ्रूण का विकास प्रभावित होता है।
0: बिल्कुल,
1: और इससे कमजोर संतति का जन्म होता है जो आगे आने वाले समय में उनके उत्पादन को प्रभावित करता है। दूसरा, यदि बहुत छोटे जो बछड़े हैं उनके शरीर में पानी की कमी होती है तो उनके भी आगे होने वाले उत्पादन को ये प्रभावित करता है, चाहे वो नर हो या मादा। तो स्थायी रूप से कई बार इसके नुकसान देखने को मिले हैं।
0: बिल्कुल, तो सर जैसा कि आप कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारी बातों को हमें बता रहे हैं, तो क्या कोई और भी प्रभाव हैं जो पशुओं पर पानी की कमी के कारण हमें देखने को मिलते हैं?
1: जी बिल्कुल, इसका जो एक सीधा प्रभाव होता है वो उनके पाचन तंत्र पे भी होता है। यदि पशुधन के शरीर में पानी की कमी होती है तो कहीं ना कहीं उनकी भूख में भी कमी हो जाती है, और इसका कारण होता है कि पानी की कमी से पशुधन का चयापचय धीमा पड़ जाता है, जिससे उनकी भूख कम हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: और भूख कम होने से उन्हें उचित मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता, क्योंकि जितना खाना या चारा उन्होंने खाना चाहिए वो नहीं खाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और उसे नहीं खाने से उनके उत्पादन में ये प्रभाव देखने को मिलता है। अगर पाचन संबंधी समस्या की यहाँ बात की जाए तो पानी की कमी के कारण चारा जो उन्होंने खाया है उसके पचने में भी कठिनाई होती है, जिससे उनका पाचन तंत्र जो है ठीक से काम नहीं करता।
0: बिल्कुल,
1: इससे कब्ज हो सकता है, गैस हो सकती है या पेट में अन्य तरह की समस्याएं हो सकती हैं, और इन समस्याओं से भी हमारे पशुधन प्रभावित होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: बीमारियों का खतरा भी इस स्थिति में बढ़ जाता है। जैसे शरीर में पानी की ज़्यादा कमी होती है, उससे ये जो हमने अभी समस्याएं देखी तो कहीं ना कहीं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये प्रभावित करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि प्रभावित होती है तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से इस समय जो ज्यादातर बीमारियां आसानी से होती हैं उसमें दस्त लग सकते हैं, मूत्र रोग का संक्रमण हो सकता है या त्वचा के रोग हो सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से हमें ढेर सारी बातों को बताया है, तो सर यही बात करना चाहेंगे कि इसके निवारण के क्या उपाय हमारे पशुपालक भाई बहनों को अपनाने चाहिए?
1: बिल्कुल, निवारण के उपाय बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसानी से हम इन उपायों को कर सकते हैं, जिससे इनका निवारण भी हो सकता है और ये उपाय हैं। तो यानी कि उपाय करने से हमें समस्या आएगी ही नहीं। हमेशा हमारे पशुधन के लिए पशुशाला के पास में, पशु शेड के पास में पशुओं धन के लिए ताज़ा, ठंडा और साफ पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: हो सके तो पशुधन को छायादार स्थान पर ही रखें, और गर्मी से बचाव के लिए हवादार जगह जो हो वहाँ पे उन्हें रखें, जहाँ पे गर्म हवा या लू ना लगे।
0: बिल्कुल,
1: इस समय क्योंकि पशुधन ज्यादा हरा चारा नहीं मिल पाता और इस कारण उनको नहीं दे पाते हैं, तो यदि हो सके तो अन्य तरीके से उनकी पोषण की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करें। अगर हमारे पशुपालकों के आसपास चारागाह हैं तो उनमें संभव हो तो सिंचाई का प्रबंध करें, जिससे गर्मियों में भी उन चारागाहों में थोड़ी बहुत हरी घास बनी रहे और वो पशुधन को उपलब्ध हो।
0: बिल्कुल।
1: यदि पशुधन को हम ज़्यादा समय बांध के रखते हैं तो दिन में 3 से 4 बार कोशिश करें कि पशुधन को पानी पिलाएं। हो सकता है उसमें से एक आध बार वो न भी पिए, पर आप नियमित अंतराल पे उनको पानी देते रहें।
0: बिल्कुल। तो सर, जैसा कि कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें हो गई हैं, तो अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: जी, तो अंत में अगर निचोड़ रूप में हम इसकी बात करें तो गर्मियों में पशुधन के स्वास्थ्य और उत्पादन पर पानी की कमी के जो गंभीर प्रभाव हो सकते हैं उनसे बचने के लिए उचित देखभाल और सही तरीके से प्रबंधन करें। इससे पशुधन स्वस्थ रहेंगे, उनकी उत्पादन को स्थायी बनाया जा सकता है। और वही है, यदि हमेशा हम उनके लिए ठंडा और साफ ताज़ा पानी रखें और जिस टंकी में हम उस पानी को रख रहे हैं उनको पिलाने के लिए उसमें नियमित अंतराल पर चूने की पुताई करते रहें, जिससे पानी की गुणवत्ता बेहतर बनी रहती है।
0: बिल्कुल। तो सर, जैसा कि कार्यक्रम में आपने बहुत ही प्यारा सा संदेश हमारे श्रोता साथियों को दिया है, तो आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: आपका और वागड़ रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: બહેન બોનો, જેમ કે હવે આપણે વસ્મી મનીષજી સર જોડે તકા હતા અને એણે આપણાને ઘણી અસલ તરીકા થકી બતાડ્યું હે કે પશુધન મેં પાણીની કમી ના હું હું કારણ થઈ શકે ને હરતે આપણાને આપણા પશુને પાણી પાવશું। તો વાત તો ઘણા કની થઈ ગઈ હે ને, હવે ટાઈમ બી થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટો પડવાનું। સૂટો તો પડા પણ સાથે પહેલા હામરી લાયક ઓર કે મોરે પડા સૂટા।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। आंगनवाड़ी जाई ने तारो नाम लकाओ, भारी पोग बहन तू जासे तीन कराओ।
2: सोराना नक काबजू, नाना राको वार, साफ सफाई राखजू, खाजू सब्जी दार।
1: भिंडा तुरिये आलड़ी, कोराने वालोर, रोपो खाओ सब्जिये, डीले आवे जोर।
2: सीरो दलियो राबड़ी, फूली सोका दाल, पांचवे महीने बाल ले आ खवानो आल।
1: अणी वातनु ध्यान राखो, आपणो जीवन सुरक्षित राखो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाक रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज वार रविवार का दिन है और आज ही के दिन हम प्रेरणादायी शिक्षा प्रद कहानी को लेकर हाजिर होते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी का शीर्षक है हमारी आय को हम कैसे संभालें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य अपने जीवन को सुखी और सुरक्षित बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो जाए, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाए, भविष्य सुरक्षित हो जाए। इन सभी इच्छाओं को पूरा करने में आय का बहुत बड़ा महत्व होता है। लेकिन श्रोताओं, केवल आय अर्जित करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे सही ढंग से संभालना और उपयोग करना भी उतना ही जरूरी है। यदि व्यक्ति अपनी आय को समझदारी से खर्च करे, बचत की आदत अपनाए और भविष्य की योजना बनाए तो सीमित आय में भी जीवन सुखमय बन सकता है। तो दोस्तों आज की हमारी कहानी है हमारी आय को हम कैसे संभालें। लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम कथा कहानी में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

क्रोध और लोभ मैं दज कर जा सकता, तुझको चाहूंगी तो मैं कैसे भुला सकता। तेरा प्यार भी एक बंधन है, तू ही बता।

दोस्तों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि मैंने कहा था कि आज बार रविवार का दिन है और आज ही के दिन हम प्रेरणादायी शिक्षाप्रद कहानी को लेकर हाजिर होते हैं। तो जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहानी का शीर्षक भी बताया था कि आज कहानी सुनाने वाली हूँ, उस कहानी का शीर्षक है हमारी आय को हम कैसे संभालें। तो दोस्तों, आज के समय में बढ़ती महंगाई, दिखावे की प्रवृत्ति, अनियोजित खर्चों के कारण लोग आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसलिए जानना बहुत जरूरी हो गया है कि हम अपनी आय को किस प्रकार से संभालें ताकि वर्तमान के साथ भविष्य भी सुरक्षित रह सके। कहा भी गया है कि आय का सही सम्मान करना ही भविष्य को महान बनाना होता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती इस तरह से, जैसे कि एक गांव है। गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। खेतों में हल्की धूप फैल रही थी और पेड़ों पर बैठे पक्षी मधुर आवाज में चहचहा रहे थे। उसी गाँव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस घर में जो लोग रहते थे उसमें नाम था रमेश और उसकी पत्नी सीता और उनका बेटा मोहन। रमेश मेहनती किसान था। वो सुबह से शाम तक खेतों में काम करता रहता था, लेकिन महीने के अंत तक उसके पास पैसे नहीं बचते थे। सीता ने कई बार पूछा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे पास बचत क्यों नहीं होती। रमेश मुस्कुराकर कह देता दोस्तों कि कमाई ही इतनी कम है कि क्या बचाए। लेकिन सच यह था कि कमाई कम होने से ज्यादा समस्या पैसों को सही ढंग से न संभाल पाने की थी। रमेश जब भी बाजार जाता, जरूरत से ज्यादा सामान खरीद लाता। कभी नए कपड़े ले आता, कभी महंगे मोबाइल का शौक था, तो कभी दोस्तों के साथ बेवजह खर्च हो जाते थे। घर में कई बार ऐसी स्थिति आ जाती थी कि जरूरी चीजों के लिए पैसे ही नहीं बचते थे। स्कूल की फीस भरने में देर हो जाती थी, दवाई खरीदने में परेशानी होती थी और कभी कभी उधार भी लेना पड़ता था। एक दिन मोहन ने उदास होकर कहा, पिताजी, मेरे स्कूल में सभी बच्चों के पास किताबें हैं, लेकिन मेरी पुरानी किताबें फट गई है। रमेश के पास उस समय पैसे नहीं थे दोस्तों, वो अंदर से टूट गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि केवल कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि कमाई को संभालना भी उतना ही जरूरी है। कहा गया है दोस्तों कि आय वही सफल कहलाती है जो भविष्य के काम आती है। कुछ दिनों बाद गाँव में एक बुजुर्ग शिक्षक आए। उनका नाम था हरिदास जी। वे लोगों को जीवन जीने की सही कला सिखा रहे थे। उन्होंने गाँव वालों से पूछा, बताओ सबसे बड़ी समस्या क्या है। किसी ने कहा बेरोजगारी, किसी ने कहा महंगाई। तभी दोस्तों रमेश बोला कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन पैसे हमारे टिकते नहीं हैं। हरिदास जी मुस्कुराए और बोले, श्रोताओं, कि पैसा पानी की तरह है, यदि उसे सही बर्तन में न रखा जाए तो वो बह जाता है। दोस्तों, ये बात रमेश के दिल को छू गई। हरिदास जी ने सभी को समझाया कि सबसे पहले अपनी आय और खर्च का हिसाब लिखो। उन्होंने मिट्टी पर एक सीधी रेखा खींची और बोले, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। उन्होंने रमेश से कहा कि वह महीने की कुल कमाई लिखे और फिर जरूरी खर्च अलग करे, घर का राशन, बच्चों की पढ़ाई, दवाई, खेती का खर्च और बचत। दोस्तों, इस तरह से रमेश ने जब पहली बार ऐसा किया तो उसे पता चला कि उसकी आधी कमाई तो बेवजह के खर्चों में ही चली जाती थी। और कहा भी गया है कि जो खर्चों का हिसाब बनाता है वही भविष्य में सुरक्षित रह पाता है। तो दोस्तों, हरिदास जी ने एक मिट्टी की गुल्लक दी और बोले कि हर दिन थोड़ा थोड़ा बचाओ। रमेश हंस पड़ा, इतने थोड़े पैसों से क्या होगा। हरिदास जी बोले, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। रमेश ने रोज थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया। सीता भी घर के खर्चों में सावधानी बरतने लगी। धीरे धीरे कुछ महीनों में अच्छी बचत हो गई। दोस्तों, एक दिन अचानक सीता बीमार पड़ गई, यानी कि रमेश की पत्नी बीमार पड़ गई। इस बार रमेश को किसी से उधार नहीं लेना पड़ा। उसने अपनी बचत से इलाज कराया। उस दिन उसे समझ आया कि बचत मुसीबत के समय सबसे बड़ा सहारा होती है। गांव में एक शादी थी, सभी लोग नए कपड़े पहनकर आए थे। रमेश भी महंगे कपड़े खरीदने की सोच रहा था, लेकिन फिर उसे हरिदास जी की बात याद आ गई कि दिखावा कुछ पल की खुशी दे सकता है, लेकिन समझदारी पूरी जिंदगी की शांति देती है। उसने जरूरत के अनुसार ही खर्च किया। लोग पहले उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन बाद में वही लोग उसकी समझदारी की तारीफ करने लगे। कहा भी क्या है कि दिखावे में धन मत कमाओ, समझदारी से जीवन सजाओ। यानी कि श्रोता साथियों, रमेश ने मोहन को भी समझाना शुरू किया कि पैसे मेहनत से आते हैं। मोहन अब बेवजह चीजों की जिद नहीं करता था। वो अपनी पुरानी कॉपियों के खाली पन्नों का उपयोग करता था और बिजली पानी भी बचाने लगा था। धीरे धीरे पूरा परिवार जिम्मेदार बन गया। हरिदास जी ने कहा, जिस घर के बच्चे पैसों की कीमत समझते हैं, उस घर में कभी गरीबी लंबे समय तक नहीं रहती है। कुछ समय बाद रमेश के पास अच्छी बचत हो गई। पहले वो सोचता था कि पैसा बस खर्च करने के लिए होता है, लेकिन हरिदास जी ने उसे सलाह दी कि वो अपनी बचत का सही उपयोग करें।
रमेश ने कुछ पैसों से अच्छे बीज खरीदे, खेत में नई तकनीक अपनाई, उसकी जो फसल थी वो पहले से बेहतर हुई और आय भी बढ़ गई। दोस्तों से समझ आया कि पैसा केवल बचाने के लिए नहीं बल्कि सही जगह लगाने के लिए भी होता है। एक साल बाद गांव में सूखा पड़ गया, कई किसान परेशान हो गए, लेकिन रमेश ने पहले से बचत और योजना बनाई थी। उसने अपने परिवार को संभाला और दूसरों की भी मदद की। गाँव वाले हैरान थे कि जो रमेश पहले उधार मांगता था वही आज दूसरों का सहारा बन गया है। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, कमाई बड़ी नहीं होती, सोच छोटी होती है। एक शाम रमेश अपने बेटे के साथ खेत में बैठा हुआ था। दोस्तों सूर्य धीरे धीरे ढल रहा था। उसके बेटे मोहन ने पूछा, पिताजी क्या अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा कमाई जरूरी है? तभी रमेश ने प्यार से कहा कि नहीं बेटा, अमीर वो नहीं जिसके पास बहुत पैसा हो, अमीर तो वो है जो अपनी आय को समझदारी से संभालना जानता हो। उस दिन मोहन ने अपने पिता की आंखों में आत्मविश्वास देखा। तो दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि आय को संभालना केवल पैसे बचाने का नाम नहीं है, यह एक आदत है। सोच समझकर खर्च करना, जरूरत और चाहत में फर्क समझना, नियमित बचत करना, भविष्य के लिए योजना बनाना, दिखावे से दूर रहना, सही निवेश करना, यदि हम अपनी कमाई को सही दिशा दें तो छोटी आय भी बड़ा सहारा बन सकती है। और कहा भी गया है कि कमाई चाहे छोटी हो या बड़ी, समझदारी से ही बनती है जिंदगी खड़ी। बचत, योजना और सही विचार, यही बनाते हैं जीवन शानदार। दोस्तों जीवन में पैसा कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे संभालना। कई लोग बड़ी आय होने के बावजूद परेशान रहते हैं, जबकि कुछ लोग सीमित कमाई में भी खुशहाल जीवन जीते हैं। फर्क केवल सोच और प्रबंधन का होता है। दोस्तों यदि आज से हम अपनी आय का सम्मान करना सीख जाएं, तो भविष्य सुरक्षित और खुशहाल बन सकता है, क्योंकि धन केवल जेब में नहीं समझदारी में बसता है। तो ये थी दोस्तों कहानी, और कुछ छोटी मोटी बातें रह गई हैं आपसे, वो हम जरूर करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि हमारी बहुत ही अच्छी कहानी चल रही थी और मैंने आपको कहानी के साथ शिक्षा भी दी थी, बताई थी कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कहानी का शीर्षक था कि हमारी आय को हम कैसे संभाल सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ बातें हैं जो रह गई है आपसे, वो आपको बताना चाहेंगे कि बचत आर्थिक सुरक्षा का सबसे मजबूत आधार है। जीवन में कब कौन सी समस्या आ जाए ये कोई नहीं जानता, इसलिए हर व्यक्ति को अपनी आय का कुछ भाग बचा कर रखना चाहिए। छोटी छोटी बचत भविष्य में बहुत बड़ी सहायता बन जाती है दोस्तों। यदि व्यक्ति नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी बचत करे तो वो भविष्य में बड़े खर्चों को आसानी से संभाल सकता है। दोस्तों, बचत केवल धन इकट्ठा करना नहीं है बल्कि आत्मविश्वास सुरक्षा की भावना भी देती है। जिन लोगों के पास बचत होती है वे कठिन समय में घबराते नहीं है। और कहा गया है दोस्तों कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बचत से भविष्य संवरता है। तो आप लोग भी अपनी आदतों में सुधार ले आइए अगर आप में ऐसी आदतें हैं तो। जैसे कि आज के आधुनिक युग में लोग दिखावे के कारण अनावश्यक खर्च करने लगे हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं, मोबाइल का शौक रखते हैं, बाहरी चमक दमक के पीछे लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं। श्रोताओं, फिजूल खर्ची व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमजोर बना देती है। कई लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपनी क्षमता से अधिक खर्च करते हैं जिससे बाद में उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। समझदार व्यक्ति वही है जो जरूरत और इच्छा के बीच का अंतर समझे। आवश्यकता की वस्तुओं पर खर्च करना उचित है लेकिन केवल दिखावे के लिए धन खर्च करना गलत है। ये आपसे कहना चाहेंगे दोस्तों कि आय को संभालना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कला है। मेहनत से कमाए गए धन का सही उपयोग ही जीवन को सुखी और सुरक्षित बनाता है। यदि व्यक्ति बचत करे, फिजूल खर्चे से बचे और भविष्य की योजना बनाए तो सीमित आय में भी खुशहाल जीवन जी सकता है। धन का सही प्रबंधन केवल आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं बनाता बल्कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी देता है। इसलिए हमें अपनी आय का सम्मान करना होगा और उसे समझदारी से उपयोग करना होगा। आपसे ये कहना चाहेंगे कि आय को सही दिशा में लगाएं, सुरक्षित और सुखद भविष्य को पाएं। बचत, मेहनत और सही विचार यही बनाते हैं जीवन को शानदार। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आपके साथ आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी क्योंकि समय हो चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा जरूर लूंगी पर जाते जाते आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आपको पता बताना चाहूंगी ताकि आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है श्रोता साथियों, कार्यक्रम कथा कहानी वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपरा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और भी जानकारी के लिए श्रोता साथियों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नई प्रेरणादायी शिक्षा प्रत्याने के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी जागृति भट्ट को कार्यक्रम कथा कहानी से जाने की अनुमति। नमस्कार। साथ ही आप सभी को छोड़े चलती हूँ इस गीत के साथ में।

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आंगनवाड़ी जाई ने तारो नाम लगाओ, भारी पोग बहन तू जांसे तीन कराओ। सोराना नक्काबजू, नाना राको वार, साफ सफाई राखजू, खाजू सब्जी दार। भिंडा तुरिये आलड़ी, कोराने वालोर, रोपो खाओ सब्जिये, डीले आवे जोर। सीरो दलियो राबड़ी, थूली सोका दाल, पांसे महीने बाल ने आ खवानु आल। अणी वातनु ध्यान राखो, आपणो जीवन सुरक्षित राखो।
2: सेहत नो राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा, बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ल ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है। आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो, खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

हेलो बच्चों, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दीदी मनीषा दीदी। आ गई हूँ बच्चों बात नन्हे दिलों की को लेकर नई नई कहानियों के साथ में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में मैं जब भी हाजिर होती हूँ तो कार्यक्रम के माध्यम से प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाती हूँ आपको, जो आपके जीवन में आपको नई नई सीख देते हैं। तो बच्चों आज भी कार्यक्रम के माध्यम से मैं बहुत ही प्यारी कहानियों को लेकर हाजिर हुई हूँ। तो ये कहानियाँ तो मैं आपको अवश्य सुनाऊंगी, लेकिन कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं पहले कार्यक्रम का यह गीत। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM के कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में।

0: बंदर भी आया, छुन छुन करती आई चिड़िया।
1: बच्चों, इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। जैसा कि बच्चों, मैंने गीत से पहले कहा था कि मैं बहुत ही प्यारी कहानियों को लेकर हाजिर हुई हूँ। आज हमारी पहली कहानी है बच्चों, ईमानदार मोहन और जादुई बीज। जी हाँ बच्चों, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक बच्चा रहता था। मोहन बहुत सीधा, मेहनती और दयालु था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन उन्होंने मोहन को अच्छे संस्कार दिए थे। वे हमेशा कहते, बेटा, इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका अच्छा चरित्र है। मोहन यह बात मन से मानता था। वह सबकी मदद करता, सच बोलता और मेहनत से कभी नहीं हटता। गांव के लोग भी उसे प्यार करते थे। गांव के पास एक बड़ा बगीचा था बच्चों, उसमें तरह तरह के पेड़, फूल और फल लगे थे। बच्चे वहाँ खेलते थे। मोहन भी रोज स्कूल से लौटते समय वहाँ जाता और पेड़ों को पानी देता। उसे पेड़ पौधों से बहुत प्रेम था। एक दिन वह बगीचे में गया तो उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई दिए। बाबा थके हुए थे और एक पेड़ के नीचे बैठे थे। मोहन तुरंत उसके पास गया और बोला, बाबा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? बाबा मुस्कुरा कर बोले, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है। मोहन दौड़कर घर गया, लोटे में पानी लाया और बाबा को पिलाया। फिर अपने टिफिन की बची हुई रोटी भी उन्हें दी। बाबा बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी झोली से एक छोटा सा बीज निकाला और मोहन को देते हुए बोले, ये एक साधारण बीज नहीं है, इसे अपने घर के आंगन में बो देना। लेकिन याद रखना, यह बीज केवल सच्चाई, मेहनत और धैर्य से ही फल देगा। मोहन ने आदर से बीज ले लिया। घर आकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा, बेटा, चाहे बीज जादुई हो या साधारण, अक्सर मेहनत लगाएंगे तो अच्छा ही होगा। मोहन ने अगले दिन आंगन की मिट्टी साफ की, बीज बोया और रोज उसे पानी देने लगा। वह सुबह उठकर पौधों से बातें भी करता, जल्दी बड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते बीते, लेकिन कुछ नहीं होगा। पड़ोस के बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। वे कहते, तुम्हारा जादुई बीज तो सो गया। मोहन थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन उसने पानी देना बंद नहीं किया। वह सोचता, हर चीज को समय लगता है। एक सुबह उसने देखा कि मिट्टी से एक छोटी सी कोपल बाहर आई है। मोहन खुशी से उछल उठा। उसने माँ को बुलाया। माँ बोली, देखा बेटा, धैर्य का फल मीठा होता है। अब मोहन और लगन से पौधों की देखभाल करने लगा। धीरे धीरे पौधा बड़ा होकर पेड़ बन गया, लेकिन वह साधारण पेड़ नहीं था। उसके पत्ते चमकते थे और उसकी शाखाएं बहुत सुंदर थीं। कुछ महीनों बाद उस पेड़ पर सुनहरे रंग के फल लग गए। गांव वाले हैरान रह गए, ऐसा पेड़ उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। गांव का लालची सेठ यह देखकर मोहन के पास आया और उससे बोला, यह पेड़ मुझे बेच दो, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। मोहन ने विनम्रता से कहा, यह पेड़ पैसे कमाने के लिए नहीं, यह तो सबके काम आने के लिए है। उसने पेड़ के फल तोड़कर गांव के बच्चों, बुजुर्गों और जरूरतमंदों में बांट दिए। जो भी फल खाता, उसके चेहरे पर खुशी आ जाती। कहते थे कि फल खाने से मन प्रसन्न होता है और शरीर में भी ताकत आती है। अब मोहन का नाम पूरे गांव में फैल गया। लोग कहते, यह बच्चा सच में बड़ा नेक है। एक दिन तेज आंधी आई, कई पेड़ गिर गए। मोहन चिंतित होकर अपने पेड़ के पास पहुँचा। उसने देखा कि पेड़ झुका जरूर है, पर गिरा नहीं है। उसकी जड़ें बहुत मजबूत थी। मोहन समझ गया, जैसे पेड़ की जड़ें मजबूत हो तो वह आंधी में भी खड़ा रहता है। वैसे ही अच्छे संस्कारी इंसान हर मुश्किल में संभालते हैं। कुछ समय बाद वही बूढ़े बाबा फिर से गांव आए। मोहन उन्हें पहचान गया और आदर से घर ले गया। बाबा पेड़ को देख कर प्रसन्न हुए और बोले, बेटा, यह पेड़ मेरे जादू से नहीं, तुम्हारी अच्छाई से बड़ा हुआ है। बीज तो सिर्फ परीक्षा था, असली जादू तुम्हारी ईमानदारी, मेहनत और दया में है। मोहन यह सुनकर मुस्कुराया। उसने समझ लिया कि जीवन में चमत्कार बाहर नहीं, हमारे गुणों में छिपे होते हैं। बाबा ने जाते जाते कहा, जहाँ भी अच्छे बच्चे होते हैं, वहाँ खुशियाँ अपने आप उगती हैं। उस दिन से मोहन और भी विनम्र हो गया। उसने गाँव के बच्चों को पेड़ लगाना सिखाया। सबने मिलकर गांव को हरा भरा बना दिया। अब हर घर के सामने पौधे थे, हर गली में हरियाली थी और हर लोगों के दिलों में प्रेम था। मोहन अक्सर बच्चों से कहता, अगर तुम रोज थोड़ा अच्छा काम करोगी तो एक दिन तुम्हारा जीवन फलदार पेड़ बन जाएगा। बच्चे उसकी बातें ध्यान से सुनते और अच्छे काम करने की कोशिश करते। धीरे धीरे गांव बदलने लगा, लोग झगड़े कम करने लगे, सफाई रखने लगे, पेड़ लगाने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। सब कहते थे कि यह बदलाव मोहन की सोच से आया है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और मेहनत का फल जरूर मिलता है। धैर्य रखने वाले को सफलता जरूर मिलती है। अच्छाई बांटने से बढ़ती है बच्चों। अच्छे संस्कार इंसान की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। छोटा बच्चा भी बड़ा बदलाव ला सकता है। इसलिए बच्चों, हमेशा याद रखें, असली जादू किसी वस्तु में नहीं, आपके अच्छे कर्मों में होता है। आशा करती हूँ कि बच्चों, ये कहानी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। आगे भी मैं आपको एक और प्यारी सी कहानी सुनाऊंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में।

बच्चे इस प्यारे से गीत के बाद में एक बार फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की ओर। जैसा कि बच्चों मैंने गीत से पहले एक प्यारे से कहानी आपको सुनाई थी, अब यही एक और प्यारे से कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है मीना और बोलता हुआ बीज। जी हाँ बच्चों, एक छोटे से गाँव में मीना नाम की एक बच्ची रहती थी। वह बहुत जिज्ञासु थी, उसे हर चीज के बारे में जानना अच्छा लगता था। पेड़ कैसे बढ़ते हैं, बारिश क्यों होती है, फूल सुबह क्यों खिलते हैं। मीना की दादी अक्सर कहती थी, जिस बच्चे के मन में सवाल होते हैं, उसके जीवन में उजाला होता है। एक दिन मीना अपने आंगन में खेल रही थी, तभी उसे मिट्टी में एक चमकता हुआ छोटा सा बीज मिला। वह बहुत सुंदर था। उसने उसे उठाया और ध्यान से देखा, तभी उसे लगा जैसे कोई धीमी आवाज आई, मुझे बो दो, मुझे बो दो। वह बहुत सुंदर था। उसने उसे उठाया और ध्यान से देखा, तभी उसे लगा जैसे कोई धीमे से आवाज आई, मुझे बो दो, मुझे बो दो। बच्चों मीना चौंक गई।

0: उसने इधर उधर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई। अब मीना समझ गई कि आवाज उसी बीज से आ रही है। वो दौड़कर दादी के पास गई और बोली, दादी यह बीज बोलता है। दादी मुस्कुराई और बोली, हर बीज बोलता है बेटा, बस उसकी आवाज सुनने के लिए धैर्य चाहिए। मीना ने उसी समय आंगन में छोटी सी जगह साफ की, मिट्टी खोदी और बीज बो दिया। रोज उसे पानी देती, उसके पास बैठती और कहती, जल्दी बड़े हो जाओ। लेकिन कई दिन बीत गए और कुछ नहीं हुआ। मीना थोड़ा उदास हुई। उसने कहा, शायद यह सचमुच जादुई बीज नहीं था। दादी बोली, जो चीजें धीरे बढ़ती हैं वही लंबे समय तक खुशियाँ देती हैं। मीना ने फिर से उम्मीद नहीं छोड़ी। कुछ दिन बाद मिट्टी से एक छोटी सी हरी कोपल निकली। मीना खुशी से उछल पड़ी। वो रोज उसकी देखभाल करने लगी। धीरे धीरे पौधा बड़ा होने लगा। उसकी पत्तियां चमकदार थी और उस पर रंग बिरंगे फूल खिलने लगे और फूलों की खुशबू पूरे घर में फैल जाती। अब पड़ोसी भी उसे देखकर आने लगे। सब कहते, मीना का पौधा कितना सुंदर है। लेकिन एक दिन तेज धूप पड़ी, पौधा मुरझाने लगा। मीना घबरा गई। उसने पानी डाल दिया पर पौधा फिर भी उदास था। दादी ने कहा, हर समस्या का हल सिर्फ जल्दी करना नहीं होता, सही तरीका ढूंढना होता है। उन्होंने पौधे के ऊपर पुराना कपड़ा बांध कर छाया कर दी। थोड़ी देर बाद पौधा फिर से ताजा दिखाई देने लगा। तो बच्चों, मीना ने सीखा कि समझदारी उतनी ही जरूरी है जितने की मेहनत। कुछ समय बाद पौधे पर छोटे छोटे फल लगे। वे बहुत मीठे थे। मीना ने सबसे पहले दादी को खिलाए, फिर पड़ोस के बच्चों में बांटे। दादी बोली, देखा बेटा, जो मेहनत से उगता है वह अकेले के लिए नहीं होता, सबके लिए होता है। अब मीना रोज नए पौधे लगाने लगी। उसने आम, नीम, तुलसी और फूलों के पौधे लगाए। धीरे धीरे उसका आंगन बगीचे जैसा बन गया। गांव के बच्चे मीना से पूछते, तुम्हारा राज क्या है? मीना हंसकर कहती, प्यार, धैर्य और रोज की थोड़ी मेहनत। एक दिन स्कूल में पर्यावरण दिवस मनाया गया। बच्चों, शिक्षक ने कहा, जिस बच्चे ने सबसे अच्छा काम किया है उसे सम्मान मिलेगा। सब बच्चों ने एक साथ कहा, मीना को दीजिए। मीना को मंच पर बुलाया गया। उसे पौधा और प्रमाण पत्र दिया गया। शिक्षक बोले, मीना ने हमें सिखाया है कि छोटा हाथ भी बड़ा बदलाव ला सकता है। मीना खुश थी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि अब गांव के कई घरों में पौधे लग चुके थे। उस रात उसने अपने पहले पौधे को देखा और मुस्कुराई। उसे लगा जैसे वह पुरानी आवाज फिर आई, धन्यवाद मुझे बोने के लिए। मीना समझ गई कि असली जादू बीज में नहीं, देखभाल करने वाले दिल में होता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, धैर्य रखने वाले को सुंदर परिणाम मिलता है। मेहनत के साथ समझदारी भी जरूरी है। प्रकृति से प्रेम करना बच्चों अच्छी आदत है। छोटी शुरुआत बड़ा बदलाव ला सकती है। और बच्चों, जो अच्छा काम करता है वह दूसरों को भी प्रेरित करता है। आशा करती हूँ कि बच्चों, आपको ये प्यारी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। अब समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आइए सुनते हैं इस गीत को।
1: लकड़ी की काठी काठी रोड़ा, घोड़े के दुम पे जुमा रहा तोड़ा।

बच्चों, इस प्यारे से गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की से विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो बच्चों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपने साथी मनीषा पटेल को बात नन्हे दिलों की से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ में बाय बाय बच्चों।

0: सप्ताह के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
2: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा था की दोस्ती करवी है।
3: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
2: होवे ना कोई गरीबी रोके ना कोई हालात रोके, शिक्षा तक किस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
4: हिंडो स्कूल जा, अपने अपना भी अपना पूरा करो।
3: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
5: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
3: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
6: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: गणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: जागृति बुन, आप एक बार सोचू है, अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था है?
2: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
1: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
2: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
2: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखवो, बारिश ने पानी नो संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नो जीवन सफल थी जागा।
1: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनो ने कहो कि पानी बचावो, पानी बचावो, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नो मोल आपड़े जानो।
3: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जी हाँ श्रोता साथियों, भाग्य भी उसका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारे मेहमान में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 एफएम पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम हमारे मेहमान में हम हर रविवार को कार्यक्रम के माध्यम से एक नई शख्सियत को जोड़ते हैं, तो आज भी हमारे बीच में नए मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उनके जीवन के कुछ अनुभवों को, फिर आगे हम हमारी बातें जारी रखेंगे। सर नमस्कार।
1: नमस्ते मैम।
0: सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे वागड़ रेडियो परिवार में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर जैसा कि आप हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमान से जुड़ रहे हैं, जो कि हर रविवार को विशेष अतिथियों के साथ हमारा कार्यक्रम रहता है, तो सर आज कार्यक्रम के माध्यम से सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगी।
1: जी मैम, मेरा नाम रमेश चंद्र पाटीदार है और मैं डूंगरपुर जिले से बिलोंग करता हूं। वर्तमान में मैं बांसवाड़ा शहर का ट्रैफिक इंचार्ज हूं और लोगों को ट्रैफिक के बारे में काफी नियमों के बारे में जानकारी दे रहा हूं और यातायात व्यवस्था सुधारने का कार्य कर रहा हूं।
0: जी बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आप एक ट्रैफिक इंचार्ज हैं, तो सबसे पहले मैं आपके जीवन के परिचय के बारे में जानना चाहूंगी कि आपका जो बचपन है वो किस कदर बीता।
1: जी मैम, बहुत ही रोचक प्रश्न पूछा आपने, बचपन की याद दिला दी है।
0: जी जी।
1: तो निश्चित तौर से हमारा बचपन बहुत ही अभावों में बीता है। मेरा गांव नौगांव है, जो डूंगरपुर जिले में है।
0: जी बिल्कुल।
1: और बिल्कुल रोड से कटा हुआ, वहाँ ना कोई लाइट की सुविधा, ना ही कोई रोड की सुविधा। ऐसी स्थितियों में भी हमने अभावों में हम रहे।
0: जी जी।
1: मैंने बीएससी किया, तब तक मैंने लालटेन में और दीपक में पढ़ाई की है।
0: जी बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आपका जो बचपन है वो बहुत ही अभावों में बीता, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब हमें पूरी तरीके की सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तब हम हमारे जीवन की जो स्थिति होती है उसे ही अपना कर बैठ जाते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आपका जो बचपन है वो बड़े ही अभाव में बीता, आपने लालटेन और उनके बीच में पढ़ाइयाँ की है, तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका जो शिक्षा का क्षेत्र था उसमें क्या क्या ऐसे संघर्ष रहे, जो आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों को बताइए, ताकि वो भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार से किसी भी परिस्थिति को लेकर हताश न होए और जीवन में निरंतर आगे ही बढ़ते रहे।
1: जी मैम, एक्चुअल में बचपन से हम पढ़े, हमारे गांव में पहले दूसरी तीसरी क्लास थी, हम चौथी क्लास भी बाहर बचपन में पढ़ने जाते थे।
0: जी बिल्कुल।
1: और इसके बाद हम दूरस्थ जाते थे, बरसात के मौसम हम कई दफे पानी में गिरते थे, बस्ते भी भीग जाते थे।
0: जी जी।
1: फिर भी स्कूल में जाके दरी पे बैठते थे, दरी भीग जाती थी, ऐसे अभाव थे। उसके बाद भी हम पढ़ के आते थे और हमारे ना तो घरों में लाइटें थी।
0: जी जी।
1: ये भी आपको मैंने पहले बता दिया, अवगत कराया है। तो ऐसी स्थितियों में हम आगे बढ़ना है तो निश्चित तौर से पढ़ना है, ये मन में ठान लेते हैं और आगे बढ़ना ये तय हो तो निश्चित तौर से अपन आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप किसी अभाव को देखते हो, उस अभाव के साथ तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, तो वो व्यक्ति का विकास रुक जाता है।
0: जी बिल्कुल। सर आपने बहुत सही बात कही है, क्योंकि हम देखते हैं कि अधिकतर हम मनुष्य जो होते हैं उनकी प्रवृत्ति होती है कि अगर किसी एक जो इंसान है उनके साथ में, जो उनका फ्रेंड ही मान लेते हैं हम, अगर उसके पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं तो वो अपने घर पर आकर उन सारी चीजों का जिक्र करने लगता है कि मैं कैसे पढ़ाई करूं, मेरे पास तो न तो टेबल कुर्सी है, न ही अपने घर पर ढंग से लाइट आती है, न ही हमारे पास पंखा है। तो ऐसे में माता पिता जो होते हैं वो भी बच्चे की उस बात को मान लेते हैं कि हाँ हमारा बच्चा आखिरकार सही तो कह रहा है ना, हमारे पास क्या ऐसी सुविधाएं हैं जो हम उसे दे रहे हैं जो आगे बढ़ा सकती है। तो ये जो सारी चीजें जब माता पिता और बच्चे दोनों ही अपने मन में डाल लेते हैं तो वो किसी भी प्रकार से अपनी स्थिति को छोड़कर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वही स्थिति में वो रह जाते हैं। तो सर अब यही मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी जो शिक्षा का क्षेत्र, जैसा कि आपने बताया कि अभाव था लेकिन फिर भी आप उसमें आगे बढ़े, तो बचपन से ही आपकी जो हॉबीज थी वो यही थी कि आपको आगे जाकर किसी सरकारी पद पर ही जाना है, या आप अपने जीवन में कुछ और बनना चाहते थे?
1: मैम दो बातें तो दोनों थी, लेकिन एक्चुअली हम बीएससी निकले।
0: जी जी।
1: और निकलते ही हमारे साथी कुछ पुलिस में फॉर्म भर रहे थे, तो उसमें कोई एग्जाम नहीं होते थे।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो सीधा ही लेते थे, हमने पुलिस लाइन नंबर में फॉर्म भर दिया, दूसरे दिन हमारी दौड़ वगैरह हो गई और शाम को हमारा सिलेक्शन हो गया। तो इस कारण से क्या एक्चुअल में हम कुछ आगे नहीं कर पाए पुलिस में आने के बाद, बाकी इच्छा है तो कहीं ना कहीं आगे उच्च पद की प्राप्त करने की थी।
0: जी बिल्कुल।
1: जो कांस्टेबल में आने से दबी है।
0: जी बिल्कुल।
1: ये निश्चित तौर से है। और आपने एक प्रश्न कहा है कि किसी लोगों की सुविधा बहुत ज्यादा है घर में या नहीं है, अभाव है, तो बच्चों को क्या सुविधा दे सकते हैं? तो बच्चों में जिसको लगन है पढ़ना है वो तो इन बिना टेबल कुर्सी के भी पढ़ सकता है, बिना पंखे के भी पढ़ सकते हैं, और उसको सुविधा देनी है। कई लोग ऐसे हमने सुना भी है कि कई बच्चों रोड की लाइट के खंभे के नीचे भी पढ़ करके अधिकारी बने
0: जी बिल्कुल।
1: तो जिसमें ललक है वो तो कहीं ना कहीं रास्ता निकाल लेगा। साधनों का अभाव किसी की उन्नति में बाधक नहीं होना चाहिए, ये दृढ़ निश्चय हो तो निश्चित तौर से आगे बढ़ेगा।
0: जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हमारे युवा साथियों को आज कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छा संदेश मिल रहा है कि हमारी जो भी स्थिति है उसमें हम अपनी लगन को, हमारा जो लक्ष्य है उसे सबसे पहले निर्धारित करें और उस लक्ष्य पर ही अगर हम अमल करते हैं दृढ़ निश्चय करके तो अवश्य हम उस तक पहुँच पाते हैं। तो सर, जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छी चल रही है, इसके साथ हम देखते हैं कि हमारी जो युवा अवस्था होती है, हमारा जब बचपन होता है तब हमारी खेलने कूदने की इच्छा बहुत ज्यादा करती है। हम देखते हैं कि आज हम क्रिकेट खेल ले, वॉलीबॉल खेल ले, तो ऐसे में मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको कौन सा खेल पसंद था, क्या अब की जो प्रगति है उसमें कभी आपके जो खेलने की चीजें हैं वो कभी बाधक बनी?
1: गाँव में ऐसी कोई सुविधा उस समय नहीं थी। आज जो क्रिकेट वगैरह की और दूसरे खेलों की बात कर रहे हैं, गाँव में हमारे प्रचलित थे गिल्ली डंडे
0: जी बिल्कुल।
1: इसके अलावा हमारे पास गीडा डोट थी जो संक्रांति से 15 दिन 20 दिन पहले शुरू करते थे, गांव की गलियों में खेलते थे
0: जी बिल्कुल।
1: ये बहुत ही बढ़िया थे, ये दो गेम हमें बहुत ही प्यारे लगते थे और इसी के आधार पर हम खेलने का मन करते थे, उसमें ज्यादा रुचि थी। बाद में भविष्य में तो हम वैसे मैं रनर भी रहा दौड़ वगैरह में, इसके बाद में जुड़ो भी रहा, पुलिस विभाग में भी उस समय में मैंने मेडल प्राप्त किए
0: जी बिल्कुल।
1: लेकिन अब एज 55-56 की हो गई, मैं लगभग 15-20 साल से इन खेलों से दूर हो चुका हूँ
0: जी बिल्कुल। तो सर, जैसा कि हम कह सकते हैं कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम खेल कूद में रह जाते हैं, पढ़ाई को महत्व नहीं देते हैं, तो हम खेल कूद के साथ अपनी इच्छाओं को अच्छे से जीते हुए भी पढ़ाई कर सकते हैं। सर, जैसा कि आपके परिचय में आपने हमें बताया था कि आप ट्रैफिक इंचार्ज हैं, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बहुत से ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं, हम देखते हैं कि आए दिन अखबार में हमें कम से कम 5-7 खबरें ऐसी मिली जाती हैं कि जहां पर बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं कह सकते हैं कि नियमों का पालन न करने के कारण होती है। तो ऐसे में आप हमारे उन श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे?
1: जी मैम, ट्रैफिक के बारे में मैं निश्चित तौर से कहूंगा एक बड़ा ही दुखद विषय है। अकाल मौत एक्सीडेंट में होना
0: जी
1: किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़े सदमे से कोई कम नहीं है, क्योंकि जिसके परिवार में कोई एक्सीडेंट हुआ है, घायल हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है या मौत हुई है, वो ही उसकी पीड़ा ज्यादा बयां कर सकता है
0: जी बिल्कुल।
1: मेरा 30-35 साल से पुलिस में हूँ, मैं अक्सर ये देखता हूँ कि ये जो वाहन चालक है वो ट्रैफिक नियमों का कहीं पालन नहीं करते हैं, इसी कारण से एक्सीडेंट होता है। सडनली कोई एक्सीडेंट होना मैं नहीं मानता
0: जी बिल्कुल,
1: क्योंकि ट्रैफिक में निश्चित तौर से जो वाहन चालक हैं वो सबसे पहले अगर जैसे मोटरसाइकिल है तो वो हेलमेट का प्रयोग करें, तो निश्चित तौर से वो गिर भी जाएगा तो अपनी जान बचाएगा, क्योंकि हेड इंजरी से मौत होने का ज्यादा चांस रहता है। तो हेलमेट निश्चित तौर से पहने, फोर व्हीलर है तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें
0: जी जी।
1: अच्छा, वाहन चलाने के लिए 18 साल से अधिक की उम्र का ही व्यक्ति चला सकता है, इसका निर्धारित लाइसेंस 18 साल बाद ही प्राप्त होता है DTO से। तो निश्चित तौर जो 18 साल से कम के बालक हैं, अभिभावक जो हैं वो गलती एक करते हैं, 18 साल से कम के बच्चों को अपनी व्हीकल दे देते हैं
0: जी बिल्कुल,
1: और उनको बड़ी बड़ी महंगी आजकल बाइकें देते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं
0: जी बिल्कुल।
1: जबकि बच्चा जिद्दी है, मैं मानता हूँ जिद करके लेते हैं, तो उनकी जिद को कहीं ना कहीं शमन करना चाहिए, अन्यथा एक दिन आपके घर में भी वही एक्सीडेंट का मातम आएगा। तो मेरा ये कहना है कि जो यातायात के नियम है उनको निश्चित तौर से माने, सड़क पर आप रॉन्ग साइड नहीं चलें, निर्धारित जो गति है उससे वाहन को तेज न चलाएं, सीट बेल्ट का प्रयोग करना ही है
0: जी जी।
1: इसके अलावा आप जो से बड़ी गाड़ियां हैं, कोई परिवहन वाहन है, उसमें क्षमता से अधिक सवारियां न बिठाएं, तेज गति से वाहन न चलाएं
0: जी जी।
1: वाहन चलाते समय कहीं लोग शराब का सेवन करते हैं, ये बहुत ही घातक है, उसके खुद के लिए भी घातक है और सामने से सही चलने वाले के लिए भी घातक है
0: जी बिल्कुल।
1: शराब पीकर जो वाहन चलाते हैं उनकी गाड़ी भी जब्त करते हैं, वो शराब वाला मामला वास्तव में बहुत ही डेंजर है। इसके अलावा व्हीकल जो है MV एक्ट में है, उन MV एक्टों में बहुत सारे जो प्रावधान है उनका अगर पालन किया जाए
0: जी जी।
1: तो निश्चित तौर से दुर्घटनाओं में अपन कमी ला सकते हैं। वाहनों में जो फिटनेस वगैरह है ये देखनी चाहिए, RC बीमा निश्चित तौर से करवाया जाना चाहिए
0: जी जी बिल्कुल।
1: अपने जैसे शहरों में क्या करते हैं, अपना वाहन है वो कहीं कहीं डामर रोड पे खड़ा कर देते हैं, जहाँ दुकान मिली वहाँ खड़ा कर दिया चले जाते हैं, पीछे से कोई स्पीड से आता है तो टक्कर होती है, घायल होता है। तो कृपया शहरों के लिए मैं बताता हूँ कि कोई भी वाहन सड़क पर खड़ा नहीं करें, पार्किंग स्थल पर करें, दुकानों के सामने तरतीब से वाहन लगावें, रॉन्ग साइड कभी नहीं चलें, वाहन चलाते समय एक मोबाइल का प्रयोग करते हैं। जैसे ही घंटी बजती है तो वो मोबाइल उठाता है, तो निश्चित तौर से वो स्वयं भी गिरता है या सामने वाले के साथ भी टक्कर मारता है। तो ये जो एक मोबाइल है, शराब पी के चलाना, ये एक्सीडेंट के कहीं ना कहीं बड़े कारण हैं। और रॉन्ग साइड चलना ये बड़े हैं, तेज चलना, तो इसके ऊपर अगर अंकुश लगाया तो मैं उसी के ऊपर अंकुश लगाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और लोगों के जो जीवन मौतें हैं उन मौतों के आंकड़ों को कम करने के प्रयास कर रहे हैं। विभाग, पुलिस विभाग भी इसमें लगा हुआ है, परिवहन विभाग भी इसमें लगा हुआ है, फिर भी लोगों में कुछ जागरूकता की कमी है। हम निश्चित तौर से विद्यालयों में भी इस संबंध में सेमिनार कर रहे हैं। मेरे स्वयं के द्वारा भी अभी प्रतापपुर में गया था, वहाँ विद्यालय में हमने नेल्सन स्कूल है उसमें हमने निश्चित तौर से बालकों के साथ संवाद किया था। और इसके अलावा मैं घाटोल गया, कल मैं कुशलगढ़ जाके आया, लोगों को अवेयरनेस और ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी अवेलेबल करा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल सर, आपने बहुत सही कहा। हम देख रहे हैं कि आए दिन ये जो दुर्घटनाएं होती हैं वो बहुत सी बार हमारी ना समझी की वजह से हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो ये नियम बनाए गए हैं ट्रैफिक वाले, वो हमारे मनुष्य के लिए उसके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। ऐसे में हम बहुत सी बार अपनी लापरवाही के कारण, जल्दबाजी के कारण ऐसे कुछ कृत्य कर देते हैं। और खासकर अभी हम देखते हैं सर कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि जोशीली हो गई है। आजकल उन्हें अलग अलग स्टंट करने होते हैं, अपने आप को कुछ अलग साबित करने के लिए वो कुछ भी सरेआम करते रहते हैं। तो ऐसे युवाओं को आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: आपने एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न उठाया मैम। आज जो युवा है आज वो ग्रुप बनाते हैं
0: जी,
1: अपनी बाइक महंगी माता पिताओं से दबाव डालकर खरीदते हैं और इसके बाद उनको बहुत ही तेज गति से चलाना इनका शौक बन गया है और एक दूसरे की कंपटीशन में इनके ही व्यक्ति कहीं न कहीं आपस में टकरा के गिरने से मौतें हो रही है, जो अकाल मौतें हैं। ये जो स्टैंड करने वाले जो बालक है वो कहीं न कहीं कॉलेज स्तर के लोग हैं या कॉलेज कर चुके हैं या कुछ बेरोजगार हैं या कहीं अहमदाबाद वगैरह में जो अपना बिजनेस करते हैं और वापस घर आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैम बिल्कुल यहाँ पावर बाइक हम जब्त करने की पूरी कार्रवाई करते हैं और इनको समझाइश करते हैं, शराब पीकर ना चलाएं, स्टैंड ना करें, और इसके अलावा भी हम नियमानुसार उनके गाड़ियां हैं वो जब्त करने के बाद कोर्ट से छुड़ाने के लिए कहते हैं। प्रयास काफी है लेकिन फिर भी इन युवाओं में एक क्रेज बन गया है, कुछ ग्रुप बना रखे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि युवा जो आज भारत के एक तरह से राष्ट्र निर्माता हैं, और जब भारत का राष्ट्र निर्माता ही युवा अपना अकाल मौत कर लेता है हाथों से अपनी ही गलती से, तो एक दुखद विषय है। इस पर इन युवाओं को भी सोचना चाहिए और इस प्रकार के स्टैंड से बाहर जाना चाहिए।
0: जी बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात कही है, यही मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि माता पिता बच्चों को इन सारे संस्कारों को देने में बचपन से ही क्या ऐसी चीजों को अपना सकते हैं। हम देखते हैं कि माँ बाप का इस चीज में बहुत ज्यादा अहम रोल होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बचपन से ही जिस तरीके से हम बच्चों को जिस स्थिति में ढालते हैं, जो वो हमारे आसपास के वातावरण में देखते हैं, वही आगे चलकर करते हैं। तो माता पिता इस चीज में कैसे अपनी भूमिका निभा सकते हैं?
1: जी मैम, एक्चुअल में होता ये है कि आज के बच्चे ऐसे हो गए हैं कि एक दूसरे के शौक क्या ना तौर पर
0: जी
1: माता पिता के ऊपर दबाव डालकर वाहन लाते हैं
0: जी बिल्कुल,
1: और एक दूसरे को कंपटीशन में देखना चाहते हैं। बहुत ही गलत धारणा हो चुकी है। माँ बाप का ये फर्ज होना चाहिए कि सख्ती से मना करते हैं और उनको वाहन ना दें। 18 साल का अगर उम्र नहीं हुई है तो उन बच्चों को वाहन कतई ना दें। इसके अलावा अगर 18 साल हो गई है तो उतने बच्चों का लाइसेंस बनवा लें, वाहन का बीमा करके ही वाहन दें। बच्चे को घर से निकले तो हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करें, नहीं पहनता तो स्वयं अगर पुलिस को मिलके इसका चालान करवाएं या गाड़ी जब्त करवाएंगे और आगे आएंगे तो ही इनको बचाया जा सकता है। आज तो हम कोई चालान बनाते हैं हेलमेट का, मैं शहर में हमें उच्च अधिकारियों द्वारा कहा गया, आज हमारे महानिरीक्षक पुलिस लेडीज हैं एस परिमला जी, उनके सख्त निर्देश हैं कि 100% संभाग मुख्यालय होने पर 100% हेलमेट का प्रयोग करेंगे। तो उसी दिशा में मैं कार्य कर रहा हूँ, बिना नंबर वाहन नहीं होना चाहिए शहर में। तो इस पर हम काम कर रहे हैं, तो आज सिफारिश करते हैं जो उच्च पद पे बैठे हैं, चाहे वो कहीं ना कहीं आपको उच्च समझ रहे हैं या कहीं राजनीति में हैं, तो ऐसे लोग सिफारिश करते हैं कि इसका हेलमेट छोड़ दीजिए साहब, आप मत बनाइए, कैसे बनाते हो देख लेंगे, ऐसी धमकियां देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों को प्रोत्साहित करके उनकी मौत को बुलाना देते हैं। तो मैं इनसे ये निवेदन करूंगा, जो भी सिफारिश अगर करे तो निश्चित तौर से ये देखे कि वो कल उसको मौत को आप निमंत्रण दे रहे हैं। इस संबंध में मेरे भाई टीचर है, उसको एक बार चालान बन रहा था पुलिस का और मुझे सिफारिश की, मैंने उसको दो बार बचाया, तीसरी बार जब आया तो मैंने स्वयं कह दिया कि इसका चालान बनाइए, और उसका चालान बना। उसके बाद उसने हेलमेट का प्रयोग किया और दो बार गिरा। वो वाक्य मिला मुझे और कहा चरण स्पर्श करके, भैया आपने अगर मेरा चालान नहीं बनाया होता तो मैं हेलमेट कभी नहीं पहनता और आज मैं बच गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी सिफारिश करता है, चाहे वो किसी भी पद पर हो, चाहे राजनेता हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, या कोई भी सामान्य प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, अगर कोई सिफारिश चालान के लिए करते हो, हेलमेट के लिए, सीट बेल्ट के लिए, नंबर प्लेट नहीं है उसके लिए सिफारिश करते हो, चालान बचाने के लिए 500,000 रुपया बचाने के लिए, तो मैं इनसे ये निवेदन करूंगा कि आप कहीं न कहीं इन रोड एक्सीडेंट में युवाओं की जान जोखिम में डालकर उनकी मौत को बुलावा दे रहे हैं।
0: जी बिल्कुल सर, आपने बहुत सही बात कही है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक बार हम हमारे बच्चों को बचा लेते हैं, दो बार बचा लेते हैं, निरंतर जान पहचान होने के कारण हम हमारे बच्चों को बचा लेते हैं, लेकिन वो एक ऐसी चीज है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर वही समझाइश अगर हम हमारे बच्चों से कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जो होते हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता है, वो अच्छे से समझ जाएगा कि किस तरीके से उन्हें अपने नियमों का पालन करना है और अपनी जान को बचा कर रखना है।
1: जी मैम, इसमें एक मैं और शब्द कहूंगा, आज शहर में 4-व्हीलर और 2-व्हीलर वाले, अगर कोई रोगी वाहन जाता है, सायरन बज रहा है, उसको साइड देने के बजाय उससे और आगे चलता है, स्पीड करके और आगे चलता है, उसको साइड नहीं देता है। ऐसे लोगों से मैं निवेदन करूंगा, अगर कहीं पर भी किसी भी रास्ते पे, चाहे शहर हो, आम सड़क हो, हाईवे हो, अगर आपको सायरन बजता हुआ कोई गाड़ी रोकी की दिखती है या अग्निशमन की दिखती है, तो उनको तत्काल आपकी गाड़ी साइड में रोकें, ब्रेक करें और उनको आगे जाने का मौका दें। रोगी वाहन से किसी की जान बचाई जा सकती है, और अग्निशमन से कहीं आगे कोई अग्नि हो रही है, कहीं अग्निकांड हुआ है, कोई जान जल रही है या कोई नुकसान हो रहा है, तो उसको अतिशीघ्र बचाया जा सके। तो मेरा सबसे निवेदन है कि ये रोगी वाहनों को और अग्निशमन को तत्काल रास्ता दे साइड में खड़े करके।
0: जी बिल्कुल जी। तो सर, जैसा कि बातें हमारी कार्यक्रम में आपसे बहुत अच्छी चल रही है, इसी बीच हमारे टीम साथी कमलेश पुनकर जी भी आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे।
1: जी मैम।
2: जी सर
1: नमस्कार।
2: सर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है वागड़ रेडियो में। सर एक कार्यक्रम के बारे में, जैसे कि हमारा वागदरा संस्थान का विजन रहा है कि सच्चा बचपन, तो आजकल अधिकांश जो वाहन होते हैं 4-व्हीलर वाहन, वहां पर काली फिल्म की पट्टियां लगी होती हैं, और अवैध पट्टियां भी, अगर जैसे कि आपने पूर्व में भी वार्ता में बताया कि जो बड़े बड़े लोग अपने आप को कहते हैं तो अपने गाड़ी के आगे बोर्ड लगा देते हैं, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए कि वास्तव में यातायात के तौर पर आप प्रभारी हो बांसवाड़ा के, उस पर उस दिशा में क्या कार्यवाही वर्तमान में हो रही है।
1: बिल्कुल आपका सही कहना, जिनकी भी काली फिल्म है उसमें एक निर्धारित रखा है, रेशो है कि इतनी अंधापा वो उसका है, रेशो है, उस रेशो के अनुसार जो है तो उसको तो लगेगी। बाकी अगर ब्लैक ज़्यादा है निर्धारित रेशो, तो उनको हम तुरंत हटवाते हैं और उसका जुर्माना भी करते हैं। वीएक्ट के तहत 200 रुपया जुर्माना है, मौके पर ही जुर्माना करके मौके पर ही हटवा रहा हूँ। लेकिन कुछ बड़े लोग होते हैं, मेरी गाड़ी को कैसे हाथ मारा करके सिफारिशें कराते हैं, तो मैं कहीं दफ़े सिफारिश को अनसुना करता हूँ, तो हो सकता है मेरे नुकसान हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनकी जीवन को बचाने के लिए अनसुना करता हूं। और कहीं ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनका कभी चालान नहीं कटा और सिफारिश कराते हैं, मैं वहां तक पहुंचे, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि आप अपनी सिफारिशों को रोक लें और निर्धारित शुल्क आप जमा करें जो उस राजकोष में जाएगा, और आप भी इसी कारण से कि चालान कटता है तो आगे से आप यातायात नियमों का पालन करना शुरू कर देंगे, अन्यथा आप हमेशा ये कहेंगे मेरे जेब में तो सिफारिश का तुक्का पड़ा हुआ, एक का पड़ा हुआ है
0: जी जी।
1: और इसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए चलेंगे, तो मेरा यही निवेदन है आप लोगों से कि जो भी सिफारिश करवाता है और एक को बाहर निकालता है, वो कृपया स्वयं यातायात नियमों का पालन करें और एक को बाहर निकालने की प्रवृत्ति को बंद करें।
2: कार्यक्रम के अंत में सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप आज की इस चर्चा को लेकर हमारे श्रोता साहित्य के कार्यक्रम में क्या संदेश देना चाहेंगे।
1: वागदरा संस्थान द्वारा, एक तो मैंने सुना है जहाँ तक कि एक सच्ची खेती के बारे में, जो केमिकल मुक्त खेती करवाने के बारे में जोर देते हैं
0: जी जी।
1: और मिलेट्स जो बड़े अनाज हैं उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, देसी खाद से पुरानी पद्धति से खेती करने पे बहुत जोर देते हैं और किसानों को जागरूक कर रहे हैं। बाकी आपका कार्य बहुत तारीफ काफिल है। इसके बाद सच्चा स्वराज का भी आप जो कार्य कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों को नियमों का पालन कराना और उनको स्वराज के प्रति जागरूक करना, और एक सच्चा बचपन के बारे में मैंने सुना आपका कि जो 0 से 18 वर्ष के बालक हैं निःशुल्क RTI के तहत शिक्षा प्राप्त करने के हैं, सरकारी योजना का जो लाभ है, उस समय आप इन बच्चों के बारे में सच्चा बचपन जो चला रहे हैं, 2-3 पॉइंट मैंने जो सुने हैं, वाकई बहुत ही सराहनीय कार्य हैं। क्योंकि आज का बचपन कहीं न कहीं शहरों में किसी नशाखोरी में विलुप्त हो चुका है, तो उनको बचाना बहुत ज़रूरी है, और उनके अभिभावक स्वयं भी इस ओर विशेष ध्यान दें और अपने बालकों को सही दिशा में प्रेरित करें। थोड़े सख्त हों, चाहे बच्चा जिद करे तो उस सख्ती के साथ उसके साथ पेश आना चाहिए।
0: जी बिल्कुल। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका अमूल्य कीमती समय आपने हमें और हमारे श्रोता साथियों को दिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी एंड कमलेश जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बांसवाड़ा वासियों को एक ही निवेदन करूँगा कि जो रोड एक्सीडेंट में मौतें हो रही हैं उसको कम करने के लिए यातायात नियमों का पालन करें और ट्रैफिक पुलिस बांसवाड़ा को सहयोग करें, सिफारिशें ना करावें। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जैसा कि श्रोता साथियों, अभी हमारे कार्यक्रम में यातायात अधिकारी जुड़े हुए थे, जिनके माध्यम से हम बहुत अच्छी तरीके से जान पाए हैं कि अगर हमें हमारे जीवन को बचाकर रखना है, हमारे घर परिवार और देश के लिए कुछ करना है, तो हमें जो ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं उनका पालन अवश्य करना होगा। तो आशा करती हूँ कि आज कार्यक्रम में जो भी बातें रही हैं वो आपको जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम हमारे मेहमान से विदा लेने का। विदा तो जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

इसी गीत के साथ साथियों आज के कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम हमारे मेहमान वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी अगले रविवार को एक नई शख्सियत के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर को कार्यक्रम हमारे मेहमान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। हाजिर है साथियों कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन में। साथियों, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि हर मुश्किल के सामने गांधी जी के सत्य और धैर्य की तरह अड़िग खड़े रहो। गांधी जी का संदेश हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। सत्य बोलो, अहिंसा अपनाओ और मानवता को सबसे ऊपर रखो।

0: साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। जैसा कि कोशिश पिछले रविवार ये विशेष कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन सबके गांधी में हमने जाना था सांप्रदायिक सौहार्द के बारे में।
1: जी हाँ,
0: इसे में आगे आज हम कार्यक्रम के माध्यम से जाने तो श्रोता साथियों, संसार के बड़े से बड़े धर्मों में हिंदू धर्म सबसे प्राचीन और इस्लाम सबसे अवाचीन है। इन दोनों धर्मों के मानने वाले लोग हिंदुस्तान में लगभग 1200-1300 वर्षों से साथ साथ रहते आए हैं।
1: बिल्कुल,
0: हिंद की भूमि पर हजारों वर्षों तक अलग अलग धर्मों के पालन करता और अलग अलग संस्कृतियों का बिरसा साथ लेकर लोग आते रहे हैं। उनमें से जो यहाँ आकर बस गए उन सबका यहाँ स्वागत हुआ है।
1: जी हाँ,
0: रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनका वर्णन इस प्रकार किया है कि यहाँ के मानव महासागरों में अनेक धर्मों और संस्कृतियों की नदियाँ आकर मिल गई हैं। तभी तो यहाँ अनेक प्रकार की विविधताओं के बीच एकता विकसित हुई है।
1: जी हाँ।
0: इस देश के लोगों ने मुस्लिमों को अपने ढंग से उपासना करने की सुविधा प्रदान कर दी। श्रोता साथियों, इस्लाम की एकेश्वरवाद की फिलोसोफी और सभी को समान दर्जा देने की आचार प्रणाली से भारत में भी बहुत से लोग आकर्षित हुए। हिंदुओं के जातिवाद, ऊंच नीच के भेदभाव और छुआछूत के रिवाज के कारण त्रसित लोगों को तो इस्लाम ने बहुत आकर्षित किया। हिंदी की स्थानीय आबादी में से बहुत सारे लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। मुस्लिम शासनकाल के दरमियान बहुत सारे लोगों ने इस्लाम अंगीकार करके राज्य का आश्रय भी प्राप्त किया।
1: बिल्कुल,
0: आज हिंद में रहने वाले मुस्लिमों में से अधिकांश लोग मूल हिंदू थे।
1: जी हाँ अंजलि जी, साथियों ये तो बिल्कुल सत्य है कि इस देश पर कई ऐसे लोगों ने भी चढ़ाई की थी जो इस्लाम धर्म का पालन करते थे।
0: बिल्कुल,
1: यानी कि चढ़ाई करने वालों में से तो बहुत थी। धर्म प्रचार के बजाय हिंदुस्तान की संपत्ति लूटने में अधिक रुचि थी। उन्होंने श्रोता साथियों अंधाधुन लूट मचाई। हिंद के मंदिरों में से कईयों में अथाह संपत्ति थी। लुटेरों की दृष्टि उस पर पड़ी। उन्होंने सिर्फ हिंदू मंदिर ही लूटे सो नहीं, किसी मस्जिद में संपत्ति दिखी तो उसे भी लूट लिया। हम देखते हैं साथियों कि सबका एक ही धर्म था, यानी कि लूटपाट करना। बाद में आने वाले लुटेरों की टकराहट पहले आए लुटेरों के साथ हुई हो, ऐसी टकराहटों के बीच इस देश में श्रोता साथियों समन्वय की प्रक्रिया चलती रही।
0: बिल्कुल,
1: वहीं मध्ययुगीन संतों और सूफी फकीरों ने समन्वय की भावना को बहुत दृढ़ किया। हमारी संस्कृति की नींव में यही समन्वय है अंजलि जी। हमारे संगीत, कला, स्थापत्य, उत्सव, त्योहार, इन सभी क्षेत्रों में यह समन्वय स्पष्ट परिलक्षित होता है।
0: बिल्कुल,
1: उत्तर भारत का शास्त्रीय संगीत कुतुब मीनार और ताजमहल से लेकर अडालजा बावड़ी और सिदी सैयद की जाली तक का स्थापत्य इस समन्वय की गवाही देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमारी वेशभूषा और हमारी रसोई के व्यंजनों में श्रोता साथियों ये समन्वय साफ साफ दिखाई देता है। हम देखते हैं कि समन्वय की इस धारा को जबरदस्त आघात लगा अंग्रेजों के आगमन के कारण। समन्वय की प्रक्रिया रामकृष्ण परमहंस तक विकसित होती रही और वहीं दोस्तों रामकृष्ण विवेकानंद के पश्चात ये प्रक्रिया समाप्त हो गई।
0: बिल्कुल,
1: इतिहास में इसके उपरांत आए पश्चिमी लोग पश्चिम के आक्रांताओं में से किसी ने स्थायी तौर पर इस देश को अपना देश नहीं बनाया। यहाँ पर शासन करके वो लोग यहाँ की संपत्ति बटोर कर यूरोप ले गए। उनमें सबसे अंत में आए अंग्रेज, साथ ही उन्होंने साम दाम दंड और भेद से देश के अधिकांश भाग पर कब्जा जमाया। वहीं अंग्रेजों के विरुद्ध अंतिम महायुद्ध में इस देश के हिंदू सेनापति और सैनिक कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। वैसे अंग्रेजों की सेना में भी बहुत भारतीय थे श्रोता साथियों, पर 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम एक नेतृत्व के अधीन लड़ रहे थे।
0: बिल्कुल कशिश, यह एकता देखकर अंग्रेज चौंक उठे। भारत पर अपने शासन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उन्होंने इन दोनों कौमों के बीच विघटन डालने की नीति अपनाई।
1: बिल्कुल,
0: ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन के बाद ब्रिटिश सरकार ने शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली। उसके बाद बहुत बड़ी मात्रा में उसने भेद नीति चालू की। शुरुआत में लगभग 25 वर्षों तक उसने मुसलमानों की उपेक्षा की और हिंदुओं को सहलाया। हिंदू पढ़ने में आगे निकल गए, वे राजनीतिक संगठन बनाने लगे और 1885 में हिंदी राष्ट्र महासभा की स्थापना हुई।
1: बिल्कुल,
0: उनके मंच से स्वतंत्रता की मांग की थोड़ी थोड़ी भनक आने लगी। तब से अंग्रेज सरकार मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ खड़ा करने लगी। मुसलमानों का हाथ पकड़ कर वे हिंदुओं के प्रति चौकन्ने होकर चलने लगे। अंग्रेज शासकों ने ही मुसलमान नेताओं के मन में अलग अलग मतदाता मंडल के विचार बीच बोए। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के लिए इतिहास की प्रस्तुति अलग अलग ढंग से की। एक तरफ उन्होंने औरंगजेब को रोजाना हिंदुओं से सिर काटने वाला बताया।
1: बिल्कुल,
0: दूसरी तरफ शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों के लिए जमीनें दी थी और शिवाजी की सेना में मुस्लिम अधिकारी थे, यह बात छिपाई। अलीगढ़ में

0: दोस्तों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि दोस्तों सबकी गांधी सांप्रदायिक सौहार्द के प्रकरण को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: गीत से पहले बहुत अच्छी बातें चल रही थी श्रोता साथियों। अब इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं तो श्रोता साथियों, 1858 के पश्चात कौमी संवादहीनता के नाटक में अंग्रेज शासकों की खलनायक जैसी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बन गई। उसके बाद वाले दशकों में हिंदू और मुसलमानों ने एकता के प्रयास किए अंजलि जी।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि दुर्भाग्य से वे प्रयास हृदय की गहराई के बजाय राजनीतिक टेबल पर सौदेबाजी जैसे अधिक रहे। दोस्तों, इस सौदेबाजी में अंग्रेजों ने दो बिल्लियों की लड़ाई के बीच बंदर का ही पात्र निभाया।
1: बिल्कुल,
0: बीच बीच में राष्ट्रीय भावना वाले लोगों ने हिंदू मुस्लिम दोनों कौमों को पास लाने के प्रयास किए। बहुत सारी चर्चाएं हुई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन एक ही नगर में और पास पास की तिथियों में ही आयोजित किए गए। दोनों संस्थाओं के नेताओं ने एक दूसरे के मंच से भाषण दिया। साथियों, जहां किसी ठोस समाधान की बात आती तभी अंग्रेज सरकार मुस्लिम नेताओं की मांगों से थोड़ा अधिक देने का लालच देकर उन्हें अधिक मांगों के लिए प्रेरित कर देती।
1: बिल्कुल,
0: इस पूरे खेल के दरमियान अंजलि जी, सामान्य प्रजा में मुस्लिम लीग का प्रवेश अधिक नहीं था। कांग्रेस भी सभी धर्मों के मध्यम वर्ग की ही प्रतिनिधि थी। हम देखते हैं कि मुस्लिम जनता तो राजनीति से बहुत कम प्रभावित रहती थी। उन पर मुख्य प्रभाव अलबत्ता मुस्लिम नेतागिरी में अनेक राष्ट्रवादी मुस्लिम भी थे, उनमें से बहुत से एक साथ सदस्य रहे थे। हम देखते हैं कि राष्ट्रवादी मुस्लिमों का मुस्लिम जनता पर प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। कांग्रेस के अग्रणियों में थोड़े कट्टरपंथी हिंदू भी थे पर वे बहुत कम संख्या में थे। वहीं हिंदू जनता पर तो सामान्य रूप से राष्ट्रवादी नेताओं का ही प्रभाव था।
1: बिल्कुल, इसी के साथ श्रोता साथियों बताना चाहेंगे कि गांधी जी ने जब हिंदुस्तान की राजनीति में प्रवेश किया तब देश की दशा जैसा कि हमने पहले जाना वैसी ही थी। मुस्लिमों के लिए अलग मतदान मंडल वर्षों पहले ही स्वीकृत हो चुका था। मुस्लिम लीग का नेतृत्व एक अल्प समुदाय तक सीमित था। उनमें भी राष्ट्रवादी और कौमवादी विचारधारा वाले लोगों का चिंतन अलग अलग था। कांग्रेस का नेतृत्व कशिश मुख्य रूप से गरम दल और नरम दल में बटा हुआ था। 1907 से 1915 तक नरम दल का प्रभाव अधिक था। सर फिरोज शाह मेहता तथा गोखले जी के अवसान के बाद नरम दल के प्रभाव में न्यूनता आ गई थी। तब तक कांग्रेस आम जनता की संस्था नहीं बनी थी। गांधी जी ने स्वदेश आने के बाद समन्वय की सदियों से विकसित प्रक्रिया को एक बार फिर से वेगवान किया। गांधी जी ने अपने शील चारित्र्य और सत्याग्रह के कार्यक्रम की वजह से कांग्रेस में द्रुत गति से सम्मानजनक स्थान पा लिया था। कांग्रेस का संविधान सुधारने का काम लोकमान्य तिलक के आग्रह पर उनको सौंपा गया था। गांधी जी ने कांग्रेस के संविधान में वांछित सुधार किए तथा सत्याग्रह आंदोलन में बहुत ऊंचे वर्ग के लोगों को भागीदार बनाया। उन्होंने कांग्रेस को एक विशिष्ट वर्ग की संस्था न मानकर सामान्य जनता की संस्था बना दी। उनकी तरफ से शुरू हुई विविध रचनात्मक प्रवृत्तियों से समाज के गरीब लोगों को रोजी रोटी मिली। गरीब मुस्लिमों ने भी इसका अच्छी संख्या में लाभ लिया। लगभग इसी अवधि में देश के मुस्लिमों के मन खिलाफत के सवाल को लेकर बहुत अधीर थे। ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के समय जब तुर्की प्रतिपक्ष में था तब भी वहां रहने वाले खलीफा को युद्ध में कोई आंच न आए ऐसा विधान हिंद के मुसलमानों को युद्ध प्रयासों में शामिल करने हेतु किया। लगभग इसी अरसे में उन्होंने साथी राज्यों के साथ ऐसा सौदा किया था कि जीतने के बाद तुर्की देश का विभाजन कर दिया जाएगा। इस प्रकार भारत के मुसलमानों को तो उसने धोखा ही दिया था।
0: जी हाँ साथियों, अंग्रेजों के वचन भंग से मुसलमानों के मन व्यथित और उत्तेजित थे, परंतु देश के गैर मुस्लिम नागरिकों का इस तरफ खास ध्यान नहीं था।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, गांधी जी का ध्यान तुरंत इस तरफ गया। उन्होंने कहा कि इस दुख के समय हिंदुओं को मुसलमान भाइयों का साथ जरूर देना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के अगुवाओं से गांधी जी ने विचार विमर्श किया। आंदोलन अहिंसक रहेगा अंजलि जी, तब तक इसमें पूरा साथ देना स्वीकार किया, परंतु खिलाफत कमेटी में उन्होंने कोई पद स्वीकार नहीं किया। खिलाफत कमेटी के नेताओं ने गांधी जी की दोनों शर्तें स्वीकार कर ली थी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया था कि अहिंसा को वे मात्र नीति के रूप में स्वीकार करते थे,
1: जी जी,
0: निष्ठा के रूप में नहीं। खिलाफत के बाबत भी हिंदू के मुसलमान ही विरोध करते हैं तो इसका प्रभाव कम होगा, और यदि उसमें हिंदू भी मिल जाएं तो उसका आंदोलन प्रभावशाली होगा।
1: जी जी,
0: ये बात वे नेता समझते थे श्रोता साथियों। जब एक भाई कष्ट महसूस करता हो तब दूसरे भाई को भी उसकी मदद करनी ही चाहिए, यह गांधी जी अच्छी तरीके से समझते थे।
1: बिल्कुल श्रोता साथियों, खिलाफत विषयक एक सभा में ही गांधी जी ने पहली बार अहिंसक असहयोग का कार्यक्रम सुझाया था। एकाध वर्ष में पूरे देश में यह कार्यक्रम स्वीकृत हो गया था।
0: बिल्कुल,
1: एकाध वर्ष के प्रयत्न के अंत में कांग्रेस ने भी असहयोग और खिलाफत आंदोलन को अप अपने कार्यक्रम में शामिल कर लिया था। खिलाफत के निमित्त से दो लोकप्रिय नेताओं मौलाना सोकत अली और मोहम्मद अली के साथ गांधी जी पूरे देश में घूम आए थे।
0: जी
1: उस समय देश में जितने कौमी एकता बनी मालूम होती थी उतनी उससे पहले या बाद में कभी बनी ही नहीं थी।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि आज हमने कार्यक्रम के माध्यम से बात की सांप्रदायिक सौहार्द के बारे में, अगले रविवार को ये हमारी बातें फिर से होंगी, लेकिन अभी लेते हैं कार्यक्रम से जाने की अनुमति। तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।
2: तो साथियों, सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। नमस्कार।
3: मारू नाम गिल्ली है ने मुँह मुन्नी ने मोटी बोन हूँ। एक दाड़ो स्कूल तक आवी तो देखियो कि मुन्नी घणी रोई रही थी तो मु हमजी के ने पानी ने तर लगी रही है तो मु दूरी ने बा कने गई ने कीधु कि बाबा मुन्नी ने तर लगी है तो इन्हें पानी पिवड़ाओ दे। बाए हफ्टिंग ना कही दीदु ने मने कीधु कि 100 महीना हुदी मुन्नी केवल इनी माँ नु दूधस पिएगा ने अगर आपने मुन्नी ने कहीं भी खबड़ावंगा तो इन्हें दस्त लागी जागा। तो पसे बीजी वगत मुन्नी रोई तो मैंने कान में कही दीदू कि 100 महीना हुदी तने केवल मानो दूधस पीवू है।
4: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है।
5: अरे गोरी, इतनी सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
6: अरे दीदी, क्या करूं? कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
5: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है, जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा। पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
6: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
5: ये हुई ना बात गोरी।
7: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: जागृति बुंद, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ था है?
2: नाना अंजलि बुंद, हूँ था का?
1: अरे जागृति बुंद, आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
2: ओ अंजलि बुंद, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बुंद, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
2: होवे अंजलि बुंद, आपड़े भाई बुंद थकी आपड़े अनुरोध करा की नर ने खुल्लो नीर राखवो, बारिश ने पानी नो संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नो जीवन सफल थी सागा।
1: होवे होवे जागृति बुंद, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नो मोल आपड़े जानो।
3: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: अरे गोरी, इतनी सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
5: अरे दीदी,
4: क्या करूं?
5: कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
4: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है, जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा। पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
5: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
4: ये हुई ना बात गोरी।
3: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: नमस्कार, आओ भाइयों और बहनों, सुनते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज वार रविवार का दिन है और आज ही के दिन हम कार्यक्रम दादी माँ की रसोई को लेकर हाजिर होते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको नई नई रेसिपी के बारे में बताते हैं ताकि आप ये रेसिपी अपने घर पर बनाकर अपने परिवार वालों को खुश कर सकते हैं। और हम जो रेसिपी बताते हैं वो रेसिपी की सामग्री भी हमें घर पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ऐसी ही आसान आसान रेसिपी को लेकर हम हाजिर होते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आज भी मैं आपको आम की कैंडी और आम के पापड़ के बारे में बताऊंगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप बने रहें कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहा था कि आज वार रविवार का दिन है और आज ही के दिन हम कार्यक्रम दादी माँ की रसोई के माध्यम से नए नए व्यंजनों के बारे में आपको बताते हैं। तो आज जैसा कि मैंने गीत से पहले कहा था कि मैं आपको आम की कैंडी के बारे में बताने वाली हूँ और आम के पापड़ के बारे में बताने वाली हूँ। ये दोनों ही रेसिपी बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में प्रतिभा जी आए हुए हैं। वो हमें बताएंगे कि आम की कैंडी किस तरह से बनती है, साथ ही आम का पापड़ किस तरह से बनता है और ये दोनों ही चीज हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभकारी है। तो आइए हम सुनते हैं प्रतिभा जी से आम की कैंडी और आम

0: पापड़ के बारे में रेसिपी।
1: नमस्ते प्रतिभा जी।
2: नमस्ते जागृति जी,
1: आपका स्वागत है प्रतिभा जी हमारे आज के इस कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में।
2: धन्यवाद जागृति जी।
1: जैसा कि प्रतिभा जी आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में पधारे हैं और आप हमारे श्रोता साथियों को आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नई रेसिपी के बारे में बताने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या बताने वाले हैं।
2: जी मैं अभी तो क्या है कि जागृति जी कच्चे आम बहुत आ रहे हैं गर्मियों में, तो मैं आपको एक कच्चे आम की कैंडी बताना चाहूँगी।
1: बिल्कुल,
2: जो बहुत ही मतलब आसान से आपके घर में ही सामान मिल जाएगा और इसे आप बनाकर घर पे खा सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि प्रतिभा जी आपने बताया कि आज आप आम की कैंडी के बारे में बताने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि गर्मियों का मौसम है और आम तो अभी बहुत सारा आए हुए हैं, तो हमारे श्रोता साथियों के लिए तो ये रेसिपी तो बहुत ही अच्छी होगी ताकि वो घर पर बनाकर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप आम की कैंडी कैसे बनाते हैं उसकी सामग्री के बारे में हमारे श्रोता साथियों को बताइए।
2: जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं श्रोता साथियों को नमस्कार कहना चाहूँगी। कच्चे आम की जो कैंडी है उसके लिए आपको घर में ही बेसिक सारे सामान मिल जाएंगे। कच्चे आम हमको चाहिए होंगे 500 ग्राम, मिश्री या आप शक्कर भी यूज कर सकते हैं, चीनी जिसको कहते हैं। मिश्री लें तो धागे वाली लें 500 ग्राम, ठीक है। आप केसर या हल्दी का भी यूज कर सकते हैं, मैं दो तरीके से आपको बता दूंगी, ठीक है। और एक कॉर्नफ्लोर आता है और घी 1 चम्मच, बस इतनी सी सामग्री आपको चाहिए।
1: एक बार पुनः आप हमारे श्रोता साथियों को सामग्री नोट करवा दीजिए।
2: जी, कच्चे आम 500 ग्राम ले लीजिएगा, कॉर्नफ्लोर 3 चम्मच, घी 1 चम्मच, मिश्री धागे वाली 500 ग्राम, अगर नहीं हो तो आप शक्कर का भी उपयोग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
2: केसर या हल्दी जो भी हो उसका उपयोग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल प्रतिभा जी, तो जैसा कि प्रतिभा जी ये तो आपने हमारे श्रोता साथियों को आम की कैंडी बनाने के लिए जो सामग्री हमें चाहिए उसके बारे में बताया, यही हम आपसे उसकी विधि के बारे में जानना चाहेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं।
2: जी बिल्कुल, सबसे पहले हम जो 500 ग्राम आम है ना उनको लेकर उनको अच्छे से धुल लेंगे। फिर कुछ भी नहीं करना है, वो सीधे जो आम है कच्चे आम है ना उनका छिलका उतारना कुछ नहीं करना, उनको चारों तरफ जो गोल एरिया है उस तरफ से चाकू से उसमें कट लगा देंगे चारों तरफ।
1: बिल्कुल,
2: तो सारे आमों में ऐसे ही हम कट लगा देंगे। फिर एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें एक ऐसा स्टैंड रख देंगे उसके ऊपर हम छलनी रख सके।
1: जी हाँ,
2: तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे उसमें, 2 कटोरी या 3 कटोरी के करीब, थोड़ी बड़ी कटोरी होनी चाहिए है ना, और उसमें फिर वो छलनी रख देंगे उसके ऊपर, उसके ऊपर आम रख देंगे छलनी में और उसको ढक देंगे करीब 10 मिनट तक, उसको ढक के पका लेंगे।
1: जी हाँ,
2: फिर उसके बाद हम चाकू लेके उसको चेक कर लेंगे कि आम पक गया कि नहीं पक गया है। आपको कलर से भी पता चल जाएगा कि आम पक गया है,
1: बिल्कुल,
2: है ना, ठीक है। फिर उस आम को हम बाहर निकाल के थोड़ा ठंडा कर लेंगे, फिर उसका जो गूदा है वो हम निकाल लेंगे सारा।
1: जी,
2: गूदा निकालने के बाद एक मिक्सर ग्राइंडर ले लेंगे, मिक्सी का जार ले लेंगे, उसमें वो पल्प जो हमने गूदा निकाला है वो डाल देंगे और मिश्री को हम पहले से ही कूट के रख लेंगे, क्योंकि मिश्री धागे वाली जो होती है वो थोड़ी टुकड़े टुकड़ों में रहती है।
1: जी जी,
2: तो उसको हम एक खलबट्टे पे कूट लेंगे।
1: बिल्कुल,
2: और फिर वो पल्प जो आपने डाला है ना गूदा मिक्सी के जार में, उसमें 2-3 चम्मच डाल देंगे मिश्री और फिर उसको चला देंगे मिक्सर ग्राइंडर में। फिर बाद में देखेंगे कि अगर वो बहुत ही मतलब क्रीमी नहीं हुआ है तो फिर उसमें 2-3 चम्मच डाल के फिर उसको वापस से चला के उसको मतलब एक क्रीमी लुक लेकर आना है उसमें। उसके बाद एक कढ़ाई ले लीजिएगा,
1: जी,
2: उसमें वो पल्प डाल दीजिएगा और उसके बाद जो मिश्री जितनी भी बची मिश्री है वो डाल दीजिएगा और फिर धीमी आंच पे उसको करीब 10 से 10-12 मिनट तक पकाइएगा।
1: बिल्कुल,
2: जब वो 10-12 मिनट तक पक जाए तो वो उसमें क्या करिएगा, कॉर्नफ्लोर जो आप मैंने बताया था ना 3 चम्मच, उसमें बस 3 चम्मच ही पानी डालिएगा, ज़्यादा पानी मत डालिएगा नहीं तो वो फिर उसको मॉइस्चर सुखाने में फिर दिक्कत लगेगा।
1: जी बिल्कुल,
2: तो वो करके फिर उसको चलाते रहिएगा बराबर 5 मिनट तक। जब ये हो जाए तो उसके बाद आपको पता ही चलने लगेगा कि वो कढ़ाई छोड़ने लगता है, उसमें बस 1 चम्मच घी डाल दीजिएगा फिर उसको ठंडा होने दीजिएगा। एक थाली ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा घी चारों तरफ लगा के
1: जी जी
2: जो वो बना हुआ है ना उसको डाल दीजिए,
1: पूरा
2: गूदा उसको फैला दीजिए, वो ठंडा हो जाए फिर उसके छोटे छोटे पीस आप अपने हिसाब से जैसे भी काटने हो, चौकोर ट्रायंगल जैसे भी काटो आप काट के
1: अपनी मर्जी अनुसार काट सकते
2: हैं। बिल्कुल, फिर उसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। उसके बाद जो मिश्री थोड़ी सी बची हुई है उसमें उसको लपेट के, और आप इसको करीब 15-20 दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि प्रतिभा जी आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे श्रोता साथियों को आम की कैंडी के बारे में बताया कि किस तरह से आम की कैंडी हम घर पर ही बना सकते हैं और सामग्री भी हमें घर पर ही उपलब्ध हो जाती है, तो ये आम की कैंडी की सामग्री और विधि के बारे में तो आपने बताया, यही हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि इसके फायदे क्या होते हैं।
2: देखिए, कच्चे आम की कैंडी स्वाद में तो चटपटी होती है, इसके कई स्वास्थ्य फायदे भी हैं।
1: बिल्कुल,
2: जैसे कि इसमें भरपूर मात्रा में डाइट्री फाइबर होता है जो आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर पाचन क्रिया को सुधारता है
1: जी,
2: और कब्ज जैसी समस्याओं में भी राहत दिलाता है। कच्चे आम से शरीर को ठंडक मिलती है, डिहाइड्रेशन से बचाने में भी मदद करता है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको इम्यूनिटी हम कहते हैं, उसको भी बढ़ाता है।
1: बिल्कुल,
2: ये पेट में अच्छे बैक्टीरिया को भी बढ़ावा देता है और आंतों में जो माइक्रोबायोम संतुलन को बनाए रखने में ये मदद करता है। ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए जागृति जी बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है और स्वादिष्ट एक मतलब स्नैक टाइप है ये, जिसे आप घर पे आसानी से बना सकते हैं।
1: जी हाँ, तो जैसा कि प्रतिभा जी आज आपने बहुत अच्छा बताया कि आम की कैंडी किस तरह से बनती है, इसके लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए, साथ ही इसके फायदों के बारे में, तो प्रतिभा जी आगे भी हम जानेंगे आम के पापड़ के बारे में, आपसे ही रेसिपी के बारे में, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। और जैसा कि गीत से पहले प्रतिभा जी जुड़े हुए थे, उन्होंने हमें आम की कैंडी के बारे में बताया था कि किस तरह से आम की कैंडी बनाई जाती है, तो उसके लिए सामग्री क्या क्या चाहिए। यही प्रतिभा जी हमारे साथ जुड़े हुए, अब हम उनसे जानते हैं आम के पापड़ के बारे में।
1: जी, तो इस समय आम बहुत आ रहे हैं गर्मियों में, तो तरह तरह की रेसिपी बना के हम घर में खिलाएं तो अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल,
1: तो मैं आपको आज कच्चे आम के पापड़ की रेसिपी बता रही हूँ। तो इसकी सामग्री श्रोता साथियों लिख लीजिएगा। आपको कच्चे आम 1 किलो चाहिए, चीनी 1 से 1.5 कप तक,
0: बिल्कुल।
1: मतलब आम की जो खटास है उसके अनुसार आप ले लीजिएगा। काला नमक 1 छोटा चम्मच, सादा नमक 1/2 छोटा चम्मच, भुना हुआ जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर या फिर चिली फ्लेक्स 1/2 छोटा चम्मच। चिली फ्लेक्स क्या होता है, जैसे जो सूखी मिर्च हो जाती है ना लाल वाली, उसको आप अगर खलबट्टे में कूट लेंगे ना, वो जो दरदरी सी रहती है ना, उसी को चिली फ्लेक्स बोलते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: है ना। और घी या तेल कुछ भी आप ले सकते हैं थाली को चिकना करने के लिए।
0: बिल्कुल, हमारी आवश्यकता अनुसार।
1: जी
0: जी बिल्कुल प्रतिभा जी, ये तो आपने सामग्री के बारे में बताया, तो मैं चाहूँगी कि एक बार पुनः आप इस सामग्री को फिर से हमारे श्रोता साथियों को बताइए।
1: जी जागृति जी, कच्चे आम 1 किलो ले लीजिएगा, चीनी 1 से 1.5 कप, काला नमक 1 छोटा चम्मच, सादा नमक 1/2 छोटा चम्मच, भुना हुआ जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर या फिर चिली फ्लेक्स 1/2 छोटा चम्मच, घी या तेल थाली को चिकना करने के लिए चाहिए।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि प्रतिभा जी ये तो आपने सामग्री के बारे में बताया, यही आप हमारे श्रोता साथियों को इसकी विधि के बारे में बताइए कि किस तरह से हम आम के पापड़ को बना सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, सबसे पहले हम कच्चे आमों को धोकर छील लेंगे और फिर उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे।
0: बिल्कुल,
1: गुठली को अलग कर देंगे, ठीक है। फिर इन कटे हुए आमों को हम कुकर में डाल देंगे और फिर 1 या 2 कप पानी डालकर इनको 1 से 2 सीटी आने तक मतलब कि बॉयल कर लेंगे।
0: बिल्कुल,
1: फिर ये जब आम नरम हो जाए ना तो इनको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडे हो जाए तो फिर ग्राइंडर लेकर उसमें इसका क्या बोलते हैं पीस कर एकदम स्मूथ पेस्ट, जैसे चिकना बिल्कुल होता है ना, उस तरह का पेस्ट बना लीजिए।
0: जी,
1: कच्चे आमों में कभी कभी ऐसा होता है कि रेशे आ जाते हैं, तो आप एक छन्नी से इस पल्प को पूरा छान लीजिए।
0: बिल्कुल,
1: ताकि ये एक समान हो जाएगा और इसमें से रेशे भी निकल जाएंगे और जो खाते समय आपके मुंह में
0: नहीं आएंगे। बिल्कुल,
1: फिर आप एक कढ़ाई ले लो, उसमें इस आम के पल्प को डालो और धीमी आंच पर 5 मिनट तक पका लो।
0: जी बिल्कुल,
1: ठीक है। फिर उसके बाद जो भी मैंने सामग्री बताई है, चीनी, काला नमक, सादा नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर या चिली फ्लेक्स, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ये आप उसमें डालकर करीब अब इसको धीमी आंच पे आपको 10 से 15 मिनट तक पकाना है।
0: जी बिल्कुल,
1: तब तक पकाना है जब तक ये मतलब कढ़ाई का जो तला होता है ना वो छोड़ने ना लगे।
0: जी जी,
1: जब ये छोड़ने लगे तो मतलब इसकी पकने की यही एक आपको चीज़ है, दिखाई पड़ेगी कि ये कढ़ाई के जो किनारे हैं वो छोड़ दे।
0: जी बिल्कुल,
1: तो समझ लीजिएगा पक गया है। इसको ठंडा कर लीजिए, फिर इसके बाद एक थाली में तुरंत ही घी या तेल जो भी है
0: लगा दे हम।
1: हाँ, लगा के जो ये बने हुए है ना सामग्री इसको डाल दीजिए और पतला पतला फैला दीजिए।
0: बिल्कुल,
1: और उसके बाद इसको आप धूप में 1 या 2 दिन तक सुखा सकते हैं। अगर धूप नहीं है तो आप पंखे के नीचे भी इसको सुखा सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जब ये सूख जाए तो फिर इसके छोटे छोटे मतलब टुकड़े आप अपने आकार के काट लीजिए।
0: बिल्कुल,
1: और आप यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं फिर।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि प्रतिभा जी आपने आम के पापड़ के बारे में बताया कि किस तरह से आम का पापड़ हम बना सकते हैं, उसके लिए क्या सामग्री चाहिए, साथ ही बनाने की विधि के बारे में बताया, यही हम आपसे इसके फायदे के बारे में जानना चाहेंगे कि ये जो आम का पापड़ है वो किस तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माना जाता है।
1: देखिए, इसमें विटामिन सी बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है, ये मतलब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करने में मदद करता है।
0: बिल्कुल,
1: खट्टा मीठा स्वाद मुंह के स्वाद को अच्छा करता है, जिनको भूख कम लगती है उनको भी मतलब भूख बढ़ जाती है, जी मचलाने में भी ये राहत करता है, जैसे सफ़र के टाइम भी आप इसको अपने साथ कैरी कर ले जा सकती हैं। ये गर्भवती महिलाओं में जब अगर उनको जी मचलाए तो ये खा लें तो उससे भी उनको फ़ायदा मिलता है।
0: जी हाँ,
1: और इसमें फाइबर और एंजाइम होते ही हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: जैसे कि पेट फूलना है, एसिडिटी की समस्या है, क्योंकि हमने इसमें काला नमक और जीरा डाल रखा है, इसलिए पेट फूलना और एसिडिटी की समस्या में भी यह राहत आपको
0: दिला सकता है। जी, तो जैसा कि आपने इसके फ़ायदों के बारे में भी बताया कि आम का जो पापड़ होता है उसका क्या फ़ायदे होते हैं, साथ ही हमने बहुत सारी बातें की सामग्री के बारे में, विधि के बारे में, तो जैसा कि समय समय पर आकर प्रतिभा जी आप हमारे श्रोता साथियों को ऐसे ऐसे व्यंजनों के बारे में, रेसिपी के बारे में बताते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद जागृति जी।
0: जैसा कि श्रोता साथियों, प्रतिभा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने हमें आम की कैंडी और आम के पापड़ के बारे में बताया कि ये किस तरह से हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है और हम इसे कैसे बना सकते हैं। अब समय का मान रखते हुए हमें आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना होगा, पर जाने से पहले आपको सुनवाना चाहेंगे एक और गीत।

आज ही इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज जो भी रेसिपी, जो भी व्यंजन आपको बताए वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो साथियों, अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपने साथी जागृति भट्ट को कार्यक्रम दादी माँ की रसोई से जाने की अनुमति। नमस्कार।

0: भाई ने बोलू, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ की छाव में आपड़े रह हूँ या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल रह ये भी आपड़ा थकी कई आश लागे है।
1: हो भाई, अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा।
0: प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं, लेकिन आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
2: हो बे, प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। हो बे,
0: आज नाना ना कदम है ये अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
2: वागड़ रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

बागर रेडियो 90.8 एफएम प्रस्तुत करता है जनता जनार्दन का जनता के लिए कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। जी हां साथियों, भारतीय संविधान से जुड़ी तमाम जानकारियों को समुदाय तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग संविधान की विकास गाथा को जानें और उसके उद्देश्यों को समझें।

सबसे बड़े लोकतंत्र हैं हम, विधि विधान से हमारा नाता है, देशभक्ति का रंग भर कर देखो मन में, झंडे के तीन रंगों में संविधान लहराता है।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि कार्यक्रम में हमारी बहुत अच्छी बातें चल रही थी जागृति जी, पिछले रविवार को संविधान बोध और संविधानिक नैतिकता में हमने ढेर सारी बातों को जाना था। हमने कार्यक्रम के माध्यम से जाना था तानाशाही को रोकने का प्रयास, केंद्र राज्य विभाजन और लोक सेवा व्यवस्था के बारे में। संविधानिक नैतिकता का सामान्य अर्थ भी हमने जान लिया था। यही आज रविवार विशेष कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में हमारी बातचीत होने वाली है संविधानिक प्रासंगिकता के बारे में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, भारत का संविधान इतने समय बाद भी प्रासंगिक बना हुआ है, क्योंकि अंजलि संविधान निर्माता ये जानते थे कि संविधान के लागू हो जाने के बाद भी हमारे देश में सामाजिक विधानों जिनमें भेदभाव, छुआछूत, असमानता और हिंसा के कई रूप मौजूद हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: उसका ज्यादा प्रभाव रहेगा और संवैधानिक विधानों की मौजूदगी बहुत कमजोर रहेगी, क्योंकि समाज आने वाले समय में उन्हीं राजनीतिक दलों को शासन का अधिकार देगा जो सामाजिक विधानों को बनाए रखने के लिए तैयार रहेंगे। श्रोताओं, शायद इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने संविधान में कई छोटी छोटी बातों का उल्लेख किया था, ताकि आने वाली सरकारें संविधान को पूरी तरह से खत्म न कर दें। यह भी एक वजह है जिसके चलते भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन गया।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि वर्तमान में हमारे देश सांप्रदायिक, जातिवादी और तमाम तरह की प्रतिगामी व्यवस्थाओं के बीच उलझा हुआ है। उसे बेहतर जीवन देने के लिए यह जरूरी है कि देश के नागरिकों में समुचित ढंग से संवैधानिक नैतिकता का विकास किया जाए। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक श्रेष्ठ संविधान का निर्माण किया है, उसे लागू भी कर दिया गया, लेकिन समस्या यह हुई कि देश के नागरिकों को संविधान संस्कार नहीं दिए गए। शिक्षण संस्थाएं तो शुरू कर दी गई, लेकिन नागरिक शालाओं की स्थापना और उनका संचालन नहीं किया गया। इसी उपेक्षा की वजह से आज देश संविधान से विमुख नजर आता है।
1: जी हाँ, साथ ही श्रोताओं, संवैधानिक मूल्यों का संदर्भ अगर बात करें तो कोई भी परिवर्तन ऐसा होना चाहिए जो समाज को समता मूलक, मानवीय और न्याय मूलक बनाए, करुणा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विश्वास रखने वाला बनाए। साथ ही अंजलि, यह तभी हो सकेगा जब हम अपने जीवन में सकारात्मक मूल्यों को शामिल करेंगे। यदि समाज का हर व्यक्ति मूल्यों को व्यवहार में शामिल करेगा तो पूरे समाज के व्यवहार में स्थायी बदलाव आ सकता है।
0: जी,
1: इन मूल्यों का स्पष्ट जुड़ाव संवैधानिक मूल्यों से होता है। श्रोताओं, संवैधानिक मूल्य केवल भाषण या प्रवचन के विषय नहीं है, बल्कि उनकी संवैधानिकता भी है। नागरिकों या राज्य के पास उन्हें अस्वीकार करने या खारिज करने का विकल्प नहीं होता है। केवल कानून या नीति बन जाने से बदलाव नहीं आते, यदि आ भी गए तो ऐसे बदलाव स्थायी नहीं होते।
0: जी बिल्कुल, यही दोस्तों अब बात आती है कि क्या है संवैधानिक मूल्य। यानी कि साथियों, संवैधानिक मूल्य कोई अमूर्त विचार नहीं है।
1: जी हाँ,
0: उनका एक स्पष्ट विधानिक स्वरूप होता है। हमारे संविधान की उद्देशिका में स्पष्ट रूप से 7 मूल्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें जागृति जी, पहला मूल्य है पंथ निरपेक्षता, दूसरा मूल्य है लोकतंत्र, तीसरा मूल्य है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय।
1: जी हाँ,
0: चौथा मूल्य बताता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के बारे में। पांचवा मूल्य बताता है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। छठा मूल्य बताता है व्यक्ति की गरिमा और सातवां मूल्य है बंधुता।
1: बिल्कुल, इसी के साथ संवैधानिक मूल्यों के महत्व के बारे में बात करें तो अंजलि, संवैधानिक होने के कारण इन मूल्यों की सार्वभौमिकता भी है और अनिवार्यता भी है। समाज जिन मूल्यों को अपनाता है उनसे ही उसके चरित्र, स्वभाव और विश्वास का निर्माण होता है। जब समाज अहिंसा, करुणा, समानता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा और न्याय सरीखे मूल्यों को अपनी संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था का आधार

0: दृष्टिकोण का क्या अर्थ होता है? कहना चाहेंगी कि संविधान आधारित दृष्टिकोण को अपनाने का मतलब ये है जागृति जी कि संवैधानिक मूल्यों और प्रावधानों को जानते हुए उन्हें अपने नजरिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनाना।
1: जी हाँ,
0: संविधान में दर्ज मूलभूत अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों, मूल कर्तव्यों, शासन व्यवस्थाओं के तरीकों और न्यायिक विधायी पद्धति को जानना और अपनी रणनीति में शामिल करना। बच्चों के अधिकारों तथा शोषण से मुक्ति का सपना भारत के समाज ने उपनिवेशवाद से मुक्ति के समय ही देख लिया था।
1: जी हाँ।
0: किंतु उस सपने को फैलने से रोकने की कोशिश बार बार की गई, कभी जातिवाद की बारूद से तो कभी सांप्रदायिकता के जरिए, कभी असमान विकास की प्रक्रियाओं के जरिए तो कभी संसाधनों के असमान वितरण के जरिए तो कभी स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, रोजगार की अकाल पैदा करके इसे रोका गया।
1: बिल्कुल। तो अंजलि, जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में, तो ये बातें हम आगे भी करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी बिल्कुल।

0: तो साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में।
1: जैसा कि हम बात कर रहे थे संविधान बोध और संवैधानिक नैतिकता को लेकर,
0: हमने जाना संवैधानिक प्रासंगिकता के बारे में, संवैधानिक मूल्य के संदर्भ के बारे में, साथ ही क्या है संवैधानिक मूल्य, संवैधानिक मूल्यों के महत्व के बारे में और संविधान आधारित दृष्टिकोण के अर्थ के बारे में।
1: जी,
0: यही अगर सबके संविधान के बारे में बात करें तो श्रोता साथियों, हमें सोच बदलनी होगी कि संविधान को जानना केवल कुछ सत्ताधारी लोगों की जिम्मेदारी है। संविधान को अपने जीवन का मूल अंग बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। हर नागरिक को संविधान और उसके प्रावधानों के बारे में जरूरी जानकारी रखनी चाहिए और सत्ता से ये पूछना चाहिए कि विकास की नीतियाँ और प्रक्रियाओं पर काम करते हुए संविधान को आधार बनाया जा रहा है अथवा नहीं।
2: जी बिल्कुल। इसी के साथ जागृति जी, हम देखते हैं कि इसी के साथ अब वक्त आ गया था कि हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बदलाव और विकास की प्रक्रिया में संविधान आधारित दृष्टिकोण को अपनाएं। हमारा संविधान समाज और राज्य के बीच समन्वय और व्यवस्था के संचालन के लिए कुछ बुनियादी सिद्धांत प्रतिपादित करता है।
0: जी हाँ।
2: इन सिद्धांतों के क्रियान्वयन में नागरिकों की भूमिका सबसे अहम है। अब जागृति जी, समस्या यह है कि आजादी के बाद देश में नागरिकता के पाठ को लेकर शिक्षण प्रशिक्षण ही नहीं हुआ।
0: बिल्कुल। और अंजलि, इसके पीछे दो वजह हो सकती है। एक तो ये कि जाति, लिंग, आर्थिक वर्ग और क्षेत्र आधारित विभाजन ने राष्ट्र को संविधान पर एकजुट न होने दिया। दूसरा ये कि हमारे यहाँ नागरिकता को महत्वपूर्ण माना ही नहीं गया, क्योंकि नागरिकता से परे हम धर्म, जाति और लैंगिक हितों में उलझे रहे। आज भी अगर हम संविधान को सही ढंग से समझना, महसूस करना शुरू करें तो सजग नागरिकता की तरफ जरूरी कदम बढ़ाया जा सकता है।
2: जी बिल्कुल। यही जागृति जी, अब बात आती है संविधानिक चेतना और बुद्धिमत्ता की। तो साथियों, संविधानिक चेतना का अर्थ है निजी, सामाजिक और व्यवस्थागत जीवन में संविधान के मूल्यों का मौजूद होना, उनका पालन किया जाना। इसका अर्थ है कि एक ऐसी नजर विकसित होना जो यह देख सके कि कब, कहां, कैसे और क्यों न्याय, समता, स्वतंत्रता, गरिमा, बंधुता के मूल्यों की उपेक्षा होती है।
0: जी हाँ।
2: यदि यह चेतना विकसित हो सके तो हम देश के लोगों में आर्थिक असमानता और बहुसंख्यक आबादी के साथ होने वाले अमानवीय शोषण को देखने और उसका विरोध करने की क्षमता पा लेंगे।
0: बिल्कुल।
2: संवैधानिक चेतना का सीधा जुड़ाव राजनीतिक लोकतंत्र की मजबूती से भी है। यह चेतना लोगों को समझा सकती है कि उन्हें जाति, धर्म और वैमनस्यता को आधार बनाकर अपने प्रतिनिधि और सरकार को नहीं चुनना है।
0: जी हाँ। इसी के साथ अंजलि, यदि हम लोकतंत्र को केवल रूप में ही नहीं वरन यथार्थ में बनाए रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? श्रोता साथियों, इस पर मेरे विचार के अनुसार सबसे पहले हमें यह करना चाहिए कि अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम संवैधानिक रीतियों को दृढ़ता पूर्वक अपनाएं।
2: जी हाँ।
0: इसका अर्थ ये है कि क्रांति की निर्मम रीतियों का हम परित्याग करें। इसका अर्थ ये है कि हम सभी ने अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह की रीति का परित्याग करें। आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब कोई मार्ग न रहे तब तो इन संवैधानिक रीतियों को अपनाना बहुत कुछ न्यायपूर्ण हो सकता है।
2: जी बिल्कुल।
0: पर जब संवैधानिक रीतियों का मार्ग खुला हुआ है तब इन असंवैधानिक रीतियों को अपनाना कभी न्याय संगत नहीं हो सकता। ये रीतियाँ अराजकता के सूत्रपात के अतिरिक्त और कुछ नहीं है और जितनी जल्दी इनका परित्याग किया जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा है। ये शब्द थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के।
2: जी बिल्कुल। इसी के साथ हम देखते हैं कि शायद डॉक्टर अंबेडकर को यकीन था जागृति जी कि भारत के लोग, राजनीतिक दल और सरकारें संविधान को तुरंत अपना ही लेने वाले हैं। उनमें यह विश्वास कहां से आया होगा, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है।
0: जी।
2: शायद जागृति जी, उन्होंने सोचा होगा कि स्वतंत्र भारत संवैधानिक चेतना और बुद्धिमत्ता को अपना लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी यह माना जाता है कि संविधान को धारण करना केवल सरकार और न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आज़ादी के 75 साल व्यर्थ हो गए। हमारी बुनियादी समझ यह भी है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्ति के साथ ही भारत के एकीकरण की शुरुआत हुई थी। इसके पहले भारतीय उपमहाद्वीप की भूमि छोटे, बड़े और बहुत बड़े साम्राज्यों में विभाजित थी। उसमें भाषाई विविधता थी, राज्य व्यवस्थाओं में विविधता थी, सांस्कृतिक विविधता थी, सामाजिक विविधताएं और धार्मिक विविधताएं भी थी। भारत का एकीकरण विविधताओं के सम्मान और उनके अस्तित्व के बने रहने की नैतिक शर्त पर हुआ है। इस विविधता को स्वीकार करना ही संवैधानिक बुद्धिमत्ता है।
0: जी हाँ। साथ ही अगर संवैधानिक चेतना और बुद्धिमता के गुण के बारे में अगर हम बात करें अंजलि, तो संवैधानिक चेतना और बुद्धिमता का सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है कि यह हर व्यक्ति, हर बच्चे, युवा और लैंगिक पहचान से जुड़े व्यक्ति में एक रूप में पाई जाती है, लेकिन समाज और सरकार इसे निष्क्रिय बनाए रखते हैं। यदि संवैधानिक मूल्यों को सबके द्वारा स्वीकार कर लिया जाए तो मजहबी, जातीय, नस्लीय आधारों पर होने वाले टकरावों को समाप्त किया जा सकता है।
3: जी बिल्कुल,
0: हर व्यक्ति को ये छूट होनी चाहिए कि वह अपना विचार सामने रख सके। सभी के विचारों को सुनना और समझना ही संवैधानिक बुद्धिमता का सूचक है। श्रोताओं, लोकतंत्र के मूल्यों को अपने जीवन के व्यवहार का आधार बनाना भी संवैधानिक बुद्धिमता का ही द्योतक है।
3: जी बिल्कुल, तो जागृति जी, जैसा कि आज कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रही हैं, आज हम कार्यक्रम के माध्यम से जान पाए संवैधानिक मूल्य का संदर्भ, क्या है संवैधानिक मूल्य, आखिरकार संवैधानिक मूल्यों का क्या महत्व है और संविधान आधारित दृष्टिकोण का क्या अर्थ है। ये बातें तो ढेर सारी हो गई हैं। अगले रविवार को हमारी श्रोता साथियों से फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ अनोखी बातों के साथ में।
0: जी हाँ साथियों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: सेहत नु राज हूँ है बोन,
5: असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात में शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवन, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपना वंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो, खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज।
0: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: आंगनवाड़ी जाई ने तारो नाम लकाओ, भारी पोग बहन तू जासे तीन कराओ,
7: सोराना नक काबजू, नाना राको वार, साफ सफाई राखजू, खाजू सब्जी दार,
6: भिंडा तुरिये आलड़ी, कोराने वालोर, रोपो खाओ सब्जिये, डीले आवे जोर,
7: सीरो दलियो राबड़ी, थूली सोका दाल, पांचवे महीने बाल ले आ खवानो आल,
6: अणी वातनु ध्यान राखो, आपणो जीवन सुरक्षित राखो।
8: अरे गोरी, इतने सुस्त क्यों दिख रही हो, कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
9: अरे दीदी, क्या करूं, कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
8: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है, जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा, पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए, इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
9: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
8: ये हुई ना बात गोरी।
0: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित।

एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपने साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति। स्वागत करती हूँ आज की सायंकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। श्रोताओं, बताना चाहूँगी कि स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। आज वार रविवार दिनांक 24 मई 2026 का दिन है। श्रोताओं, संध्याकालीन सभा की शुरुआत से पहले आइए जानते हैं आज के पुनः प्रसारण कार्यक्रमों की संक्षिप्त। सबसे पहले कार्यक्रम सुनेंगे भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम रुक करेंगे कार्यक्रम महापुरुषों की गाथा में, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 5:30 पर। इसी क्रम में अगला कार्यक्रम होगा हमारा प्रेरणादायी व शिक्षाप्रद कहानी से जुड़ा विशेष कार्यक्रम कथा कहानी, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 6 बजे प्रस्तुतकर्ता जागृति यानी कि मेरे साथ में। श्रोताओं, फिर आपको रूबरू करवाएंगे नन्हे मुन्ने बच्चों से जुड़ा विशेष कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। इसी कड़ी में हम रुक करेंगे विशेष कार्यक्रम हमारे मेहमान की ओर। इस कार्यक्रम में हम जानेंगे हमारे मेहमानों के जीवन परिचय को, और इस कार्यक्रम को लेकर आने वाली है हमारी रेडियो साथी आरजे अंजलि पाराशर, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। श्रोताओं, जैसे कि कार्यक्रमों की रूपरेखा मैं आपको बता ही रही हूँ, इसी कड़ी में अगला कार्यक्रम होगा 7:30 पर गांधी जी को पाने का एक प्रयास कार्यक्रम हिंद स्वराज। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। इस कार्यक्रम को श्रोताओं आप सुन पाएंगे ठीक 8:30 पर। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट। इन कार्यक्रमों के बाद हम रुख करेंगे गजलों की ओर और सुनेंगे कुछ प्यार भरी गजलों को 9 से 10 बजे के बीच में। तो श्रोताओं, यह तो थी हमारे आज के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब सुनते हैं आज की सभा की शुरुआत में कार्यक्रम आराधना।

जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वो सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। वस्तुतः मनुष्य के जीवन में दुर्जनता जन्म ही तब लेती है जब उसके अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। ये आत्मविश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है, तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। किंतु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, मन की स्थिति, जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है। और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयं विचार कीजिए।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: संघर्ष के बीच एक एहसास जो उन्हें मजबूत बनाता रहा, ये है महापुरुषों की अनकही प्रेम का।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
1: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। जागृति जी, आज कार्यक्रम में हमारी बातचीत का विषय है वीर सावरकर जी के जीवन परिचय को लेकर। साथियों, भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिनका जीवन केवल उनका अपना जीवन नहीं होता बल्कि पूरे राष्ट्र की चेतना बन जाता है। ऐसे महान व्यक्ति थे वीर सावरकर, जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष, साहस, त्याग, राष्ट्रभक्ति और अडिग संकल्प की अद्भुत कहानी लिखी। उन्होंने केवल अंग्रेजों से स्वतंत्रता की कहानी नहीं लड़ी जागृति जी, बल्कि अपने विचारों, लेखनी और संगठन की शक्ति से लोगों के मन में देशभक्ति की ऐसी लो जलाई जो आज भी प्रेरणा देती है।
0: बिल्कुल अंजलि, और हम कह सकते हैं कि लोग प्रेम से इन्हें वीर सावरकर कहते हैं। वे केवल एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे बल्कि महान लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार, कवि और राष्ट्रभक्त भी थे। उनका पूरा जीवन देशभक्ति, साहस, संघर्ष और त्याग का प्रतीक रहा। उन्होंने अपने विचारों और कार्यों से भारतीय समाज को नई दिशा देने का प्रयास किया।
1: बिल्कुल,
0: अगर वीर सावरकर जी के बारे में आपको बताएं तो वीर सावरकर जी का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर तथा माता का नाम राधामाई था। बचपन से ही वे अत्यंत बुद्धिमान थे अंजलि, साहसी थे और देशभक्त थे। जब वे छोटे थे तब उनके माता पिता का निधन हो गया, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन कठिन परिस्थितियों ने उनके हौसलों को कमजोर नहीं किया। बचपन से ही सावरकर जी को इतिहास पढ़ने और वीरों की कहानियां सुनने का बहुत शौक था। वे शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धाओं से अत्यधिक प्रभावित थे। यही कारण था कि उनके मन में देश को स्वतंत्र कराने की भावना बहुत जल्दी जाग उठी।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा, वे केवल पढ़ाई में ही अच्छे नहीं थे बल्कि समाज और देश की स्थिति को भी गहराई से समझते थे। जब वे छोटे थे तभी उन्होंने देश में अंग्रेजों के अत्याचारों की कहानियां सुनी। इन घटनाओं ने उनके मन में देशभक्ति की भावना को और मजबूत कर दिया। बहुत कम उम्र में उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि वे अपने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए जीवन समर्पित करेंगे। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि विद्यालय के दिनों से ही वीर सावरकर जी में संगठन की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने अपने साथियों के साथ मित्र मेला नामक संगठन बनाया, जिसका उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति और आत्मसम्मान की भावना जगाना था। बाद में यही संगठन जागृति जी अभिनव भारत के रूप में प्रसिद्ध हुआ।
0: बिल्कुल,
1: उनके भाषणों में इतनी ऊर्जा होती थी कि युवा उनके विचारों से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने लगे। वे मानते थे कि केवल प्रार्थना और विनती से अंग्रेज भारत नहीं छोड़ेंगे बल्कि उनके लिए साहस और संघर्ष की आवश्यकता है। उनकी सोच उस समय के युवाओं के लिए नई दिशा लेकर आई। वे चाहते थे श्रोता साथियों कि भारत का हर नागरिक आत्मनिर्भर, जागरूक और राष्ट्र प्रेम से भरा हुआ हो।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि वीर सावरकर जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नासिक में प्राप्त की थी और बाद में पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ने गए थे। श्रोता साथियों, कॉलेज जीवन में ही उन्होंने युवाओं को संगठित करना शुरू कर दिया।
1: बिल्कुल,
0: उन्होंने मित्र मेला नामक संगठन बनाया, जिसका उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाना था। बाद में यही संगठन अभिनव भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, उस समय भारत अंग्रेजों के गुलामों में झगड़ा हुआ था। अंग्रेज भारतीयों पर अत्याचार करते थे। ये सब देखकर अंजलि, सावरकर का हृदय क्रोध और पीड़ा से भर उठता था।
1: बिल्कुल,
0: उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे अपना जीवन देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर देंगे। वे विदेशी वस्तुओं का विरोध करते थे। उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाने का अभियान भी चलाया। ये कार्य उस समय बहुत साहस का काम माना जाता था।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों को कि वीर सावरकर जी का जो जीवन है वो साहस की मिसाल है। अंग्रेज सरकार उनके बढ़ते प्रभाव से घबरा गई थी। उन्हें गिरफ्तार कर भारत लाया जा रहा था। उसी दौरान उन्होंने समुद्र में जहाज से कूदकर भागने का साहसिक प्रयास किया।
0: बिल्कुल,
1: यह घटना आज भी इतिहास में अद्भुत साहस के रूप में याद की जाती है। हालांकि बाद में उन्हें फिर पकड़ लिया गया, लेकिन इस घटना ने यह साबित कर दिया कि उनमें स्वतंत्रता के लिए कितना जुनून था। अंग्रेज सरकार ने वीर सावरकर जी को दो दो आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्हें अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल में भेजा गया, जिसे काला पानी कहा जाता है। सेलुलर जेल का जीवन अत्यंत कठिन था। कैदियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। तेल निकालने वाले कोल्हू में बेल की तरह काम कराया जाता था। भोजन कम मिलता था और हर समय अपमान सहना पड़ता था, लेकिन वीर सावरकर जी का मनोबल कभी नहीं टूटा।
0: बिल्कुल,
1: जेल की दीवारों पर कील और पत्थरों से कविताएं लिखते उन्होंने अपने साथियों में भी साहस और आशा जगाई। कल्पना कीजिए श्रोता साथियों, एक व्यक्ति वर्षों तक कठोर यातनाएं सहता रहा, लेकिन उसके मन में देश प्रेम की ज्योति कभी बुझी नहीं। यही कारण है कि उन्हें वीर की उपाधि मिली थी।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि हमारी बातें चल रही है बहुत ही अच्छी कार्यक्रम महापुरुषों की गाथा में, तो ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। जैसा कि जागृति जी गीत से पहले हमने जाना था कि किस तरीके से काला पानी की कठोर सजा वीर सावरकर जी को मिली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने यातनाएं सही और अपने मन में देश प्रेम की ज्योति को कभी बुझने नहीं दिया। यही बात करें श्रोता साथियों समाज सुधारक के रूप में उनके योगदान की, तो बहुत से लोग वीर सावरकर जी को केवल क्रांतिकारी के रूप में जानते हैं, लेकिन वे एक बड़े समाज सुधारक भी थे। वे छुआछूत और जाति भेदभाव के खिलाफ थे। उनका मानना था कि जब तक समाज एकजुट नहीं होगा तब तक राष्ट्र मजबूत नहीं बन सकता।
1: बिल्कुल।
0: उन्होंने मंदिरों में भी सभी जातियों के लोगों के प्रवेश का समर्थन किया। वे चाहते थे कि समाज में समानता और आत्मसम्मान की भावना बढ़े। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण पर जोर दिया। उनके विचारों में आधुनिकता और सामाजिक सुधार की स्पष्ट झलक दिखाई देती थी।
1: बिल्कुल अंजलि। और यही अगर उनकी लंदन यात्रा और क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं, तो 1906 में वीर सावरकर कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने इंडिया हाउस में रहकर भारतीय छात्रों को क्रांति के लिए प्रेरित किया।
0: बिल्कुल।
1: उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ अनेक लेख लिखे और युवाओं में स्वतंत्रता की आग जगाई। लंदन में रहते हुए उन्होंने 1857 की क्रांति पर एक पुस्तक लिखी, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इस पुस्तक में उन्होंने 1857 के विद्रोह को केवल सैनिक विद्रोह नहीं बल्कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बताया।
0: बिल्कुल।
1: अंग्रेज सरकार ने इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि इससे लोगों में देशभक्ति की भावना बढ़ रही थी।
0: बिल्कुल।
1: श्रोताओं, वीर सावरकर जी का मानना था

0: विश्वास कर देती है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि वीर सावरकर जी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। विक्रांतिकारी थे, लेखक थे, विचारक थे, समाज सुधारक थे और एक महान राष्ट्रभक्त थे।
1: बिल्कुल,
0: उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानना। उन्होंने अपनापन, यातना और संघर्ष सब कुछ सहा, लेकिन अपने उद्देश्य से कभी पीछे नहीं हटे। वे मानते थे जागृति जी कि देशभक्ति केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से दिखाई देती है। उनका पूरा जीवन इसी विचार का उदाहरण है।
1: बिल्कुल अंजलि, और जैसे कि वीर सावरकर जी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था, वे निडर थे, आत्मविश्वासी थे और दृढ़ निश्चय थे। उन्होंने जीवन में अनेक कठिनाइयां झेली लेकिन कभी हार नहीं मानी।
0: बिल्कुल,
1: उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि यदि मन में देश के प्रति प्रेम और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती।
0: बिल्कुल,
1: वे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे। कहा गया है कि हौसले बुलंद हो तो मुश्किलें रास्ता नहीं रोक सकती। तो श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि इनका जीवन त्याग, संघर्ष, साहस और राष्ट्रभक्ति की अमर गाथा है।
0: बिल्कुल,
1: उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत माता की सेवा में समर्पित कर दिया। काला पानी की कठोर यातनाएं भी उनके इरादे को कमजोर नहीं कर पाई।
0: बिल्कुल,
1: वे एक ऐसे महानायक थे जिन्होंने अपने विचारों और कर्मों से लाखों लोगों को प्रेरित किया। आज के युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेकर देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझना होगा। हमें याद रखना चाहिए कि स्वतंत्रता हमें आसानी से नहीं मिली बल्कि इसके लिए अनेक वीरों ने अपना सर्वस्व बलिदान किया है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए हम कह सकते हैं कि देशभक्ति केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। वीर सावरकर जैसे महान क्रांतिकारी सदैव भारतवासियों के हृदय में अमर रहेंगे।
0: बिल्कुल जागृति जी, आज जब समाज में स्वार्थ, विभाजन और निराशा बढ़ती दिखाई देती है तब वीर सावरकर जी का जीवन हमें एकता, साहस और आत्मसम्मान का संदेश देता है। उनकी कहानियां युवाओं को यह सिखाती है कि यदि मन में दृढ़ संकल्प हो तो कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी पार किया जा सकता है। वे हमें यह भी सिखाते हैं कि राष्ट्र प्रेम केवल भाषणों तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि समाज और देश की जिम्मेदारी निभाने में भी दिखाई देना चाहिए। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि वीर सावरकर जी का जीवन भारत के इतिहास का एक उज्जवल अध्याय है।
1: बिल्कुल,
0: उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण देश के लिए समर्पित किया। उनका संघर्ष केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था बल्कि समाज में जागरूकता, आत्मसम्मान और एकता लाने के लिए भी था। महापुरुषों की प्रेम गाथा में वीर सावर जी का नाम इसलिए अमर है क्योंकि उनका प्रेम किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि अपनी मातृभूमि से था। उन्होंने अपने सुख, आराम और व्यक्तिगत जीवन को त्याग कर राष्ट्र सेवा का मार्ग चुना था।
1: बिल्कुल अंजलि, तो बस आज आवश्यकता इस बात की है कि युवा केवल वीर सावरकर जी के बारे में पढ़े नहीं बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाए।
0: बिल्कुल,
1: यदि हर नागरिक ईमानदारी, साहस और देशभक्ति के मार्ग पर चलेगा तो भारत और भी शक्तिशाली और महान राष्ट्र बन सकता है।
0: जी हाँ,
1: तो श्रोता साथियों, आपसे अंत में यही कहना चाहेंगे कि जो देश के लिए जीता है वही इतिहास में अमर हो जाता है। वीर सावर जी का जीवन हमें राष्ट्र प्रेम, साहस और संघर्ष की प्रेरणा देता रहेगा।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो गई हैं और अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद है कि जो बातें रही कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ।
0: आपको हमारा आज के कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: तो श्रोता साथियों, फिर मिलेंगे एक नए महापुरुषों की प्रेम गाथा में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी जागृति भट्ट
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर को।
0: नमस्कार।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा था की दोस्ती करवी है।
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
3: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
1: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
3: होवे जयवरे सब सोरा भरेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
3: वाघ रेडियो वाग्धरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाक रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज वार रविवार का दिन है और आज ही के दिन हम प्रेरणादायी शिक्षा प्रद कहानी को लेकर हाजिर होते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी का शीर्षक है हमारी आय को हम कैसे संभालें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य अपने जीवन को सुखी और सुरक्षित बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो जाए, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाए, भविष्य सुरक्षित हो जाए। इन सभी इच्छाओं को पूरा करने में आय का बहुत बड़ा महत्व होता है। लेकिन श्रोताओं, केवल आय अर्जित करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे सही ढंग से संभालना और उपयोग करना भी उतना ही जरूरी है। यदि व्यक्ति अपनी आय को समझदारी से खर्च करे, बचत की आदत अपनाए और भविष्य की योजना बनाए तो सीमित आय में भी जीवन सुखमय बन सकता है। तो दोस्तों आज की हमारी कहानी है हमारी आय को हम कैसे संभालें। लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम कथा कहानी में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

क्रोध और लोभ मैं दज कर जा सकता हूं, तुझको चाहूं भी तो मैं कैसे भुला सकता हूं। तेरा प्यार भी एक बंधन है, तू ही बता।

दोस्तों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि मैंने कहा था कि आज बार रविवार का दिन है और आज के दिन हम प्रेरणादायी शिक्षा प्रद कहानी को लेकर हाजिर होते हैं। तो जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहानी का शीर्षक भी बताया था कि आज कहानी सुनाने वाली हूँ, उस कहानी का शीर्षक है हमारी आय को हम कैसे संभालें। तो दोस्तों, आज के समय में बढ़ती महंगाई, दिखावे की प्रवृत्ति, अनियोजित खर्चों के कारण लोग आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसलिए जानना बहुत जरूरी हो गया है कि हम अपनी आय को किस प्रकार से संभालें ताकि वर्तमान के साथ भविष्य भी सुरक्षित रह सके। कहा भी गया है कि आय का सही सम्मान करना ही भविष्य को महान बनाना होता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती इस तरह से, जैसे कि एक गांव है। गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। खेतों में हल्की धूप फैल रही थी और पेड़ों पर बैठे पक्षी मधुर आवाज में चहचहा रहे थे। उसी गाँव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस घर में जो लोग रहते थे उसमें नाम था रमेश और उसकी पत्नी सीता और उनका बेटा मोहन। रमेश मेहनती किसान था। वो सुबह से शाम तक खेतों में काम करता रहता था, लेकिन महीने के अंत तक उसके पास पैसे नहीं बचते थे। सीता ने कई बार पूछा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे पास बचत क्यों नहीं होती। रमेश मुस्कुराकर कह देता दोस्तों कि कमाई ही इतनी कम है कि क्या बचाए। लेकिन सच यह था कि कमाई कम होने से ज्यादा समस्या पैसों को सही ढंग से न संभाल पाने की थी। रमेश जब भी बाजार जाता, जरूरत से ज्यादा सामान खरीद लाता। कभी नए कपड़े ले आता, कभी महंगे मोबाइल का शौक था, तो कभी दोस्तों के साथ बेवजह खर्च हो जाते थे। घर में कई बार ऐसी स्थिति आ जाती थी कि जरूरी चीजों के लिए पैसे ही नहीं बचते थे। स्कूल की फीस भरने में देर हो जाती थी, दवाई खरीदने में परेशानी होती थी और कभी कभी उधार भी लेना पड़ता था। एक दिन मोहन ने उदास होकर कहा, पिताजी, मेरे स्कूल में सभी बच्चों के पास किताबें हैं, लेकिन मेरी पुरानी किताबें फट गई है। रमेश के पास उस समय पैसे नहीं थे दोस्तों, वो अंदर से टूट गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि केवल कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि कमाई को संभालना भी उतना ही जरूरी है। कहा गया है दोस्तों कि आय वही सफल कहलाती है जो भविष्य के काम आती है। कुछ दिनों बाद गाँव में एक बुजुर्ग शिक्षक आए, उनका नाम था हरिदास जी। वे लोगों को जीवन जीने की सही कला सिखा रहे थे। उन्होंने गाँव वालों से पूछा, बताओ सबसे बड़ी समस्या क्या है। किसी ने कहा बेरोजगारी, किसी ने कहा महंगाई। तभी दोस्तों रमेश बोला कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन पैसे हमारे टिकते नहीं है। हरिदास जी मुस्कुराए और बोले, श्रोताओं, कि पैसा पानी की तरह है, यदि उसे सही बर्तन में न रखा जाए तो वो बह जाता है। दोस्तों, ये बात रमेश के दिल को छू गई। हरिदास जी ने सभी को समझाया कि सबसे पहले अपनी आय और खर्च का हिसाब लिखो। उन्होंने मिट्टी पर एक सीधी रेखा खींची और बोले, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। उन्होंने रमेश से कहा कि वह महीने की कुल कमाई लिखे और फिर जरूरी खर्च अलग करे, घर का राशन, बच्चों की पढ़ाई, दवाई, खेती का खर्च और बचत। दोस्तों, इस तरह से रमेश ने जब पहली बार ऐसा किया तो उसे पता चला कि उसकी आधी कमाई तो बेवजह के खर्चों में ही चली जाती थी। और कहा भी गया है कि जो खर्चों का हिसाब बनाता है वही भविष्य में सुरक्षित रह पाता है। दोस्तों, हरिदास जी ने एक मिट्टी की गुल्लक दी और बोले कि हर दिन थोड़ा थोड़ा बचाओ। रमेश हंस पड़ा, इतने थोड़े पैसों से क्या होगा। हरिदास जी बोले, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। रमेश ने रोज थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया। सीता भी घर के खर्चों में सावधानी बरतने लगी। धीरे धीरे कुछ महीनों में अच्छी बचत हो गई। दोस्तों, एक दिन अचानक सीता बीमार पड़ गई, यानी कि रमेश की पत्नी बीमार पड़ गई। इस बार रमेश को किसी से उधार नहीं लेना पड़ा, उसने अपनी बचत से इलाज कराया। उस दिन उसे समझ आया कि बचत मुसीबत के समय सबसे बड़ा सहारा होती है। गांव में एक शादी थी, सभी लोग नए कपड़े पहनकर आए थे। रमेश भी महंगे कपड़े खरीदने की सोच रहा था, लेकिन फिर उसे हरिदास जी की बात याद आ गई कि दिखावा कुछ पल की खुशी दे सकता है, लेकिन समझदारी पूरी जिंदगी की शांति देती है। उसने जरूरत के अनुसार ही खर्च किया। लोग पहले उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन बाद में वही लोग उसकी समझदारी की तारीफ करने लगे। कहा भी क्या है कि दिखावे में धन मत गवाओ, समझदारी से जीवन सजाओ। जाने की श्रोता साथियों, रमेश ने मोहन को भी समझाना शुरू किया कि पैसे मेहनत से आते हैं। मोहन अब बेवजह चीजों की जिद नहीं करता था। वो अपनी पुरानी कॉपियों के खाली पन्नों का उपयोग करता था और बिजली पानी भी बचाने लगा था। धीरे धीरे पूरा परिवार जिम्मेदार बन गया। हरिदास जी ने कहा, जिस घर के बच्चे पैसों की कीमत समझते हैं, उस घर में कभी गरीबी लंबे समय तक नहीं रहती है। कुछ समय बाद रमेश के पास अच्छी बचत हो गई। पहले वो सोचता था कि पैसा बस खर्च करने के लिए होता है, लेकिन हरिदास जी ने उसे सलाह दी कि वो अपनी बचत का सही उपयोग करें।
रमेश ने कुछ पैसों से अच्छे बीज खरीदे, खेत में नई तकनीक अपनाई, उसकी जो फसल थी वो पहले से बेहतर हुई और आय भी बढ़ गई। दोस्तों से समझ आया कि पैसा केवल बचाने के लिए नहीं बल्कि सही जगह लगाने के लिए भी होता है। एक साल बाद गांव में सूखा पड़ गया, कई किसान परेशान हो गए, लेकिन रमेश ने पहले से बचत और योजना बनाई थी। उसने अपने परिवार को संभाला और दूसरों की भी मदद की। गाँव वाले हैरान थे कि जो रमेश पहले उधार मांगता था वही आज दूसरों का सहारा बन गया है। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, कमाई बड़ी नहीं होती, सोच छोटी होती है। एक शाम रमेश अपने बेटे के साथ खेत में बैठा हुआ था। दोस्तों सूर्य धीरे धीरे ढल रहा था। उसके बेटे मोहन ने पूछा, पिताजी क्या अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा कमाई जरूरी है? तभी रमेश ने प्यार से कहा कि नहीं बेटा, अमीर वो नहीं जिसके पास बहुत पैसा हो, अमीर तो वो है जो अपनी आय को समझदारी से संभालना जानता हो। उस दिन मोहन ने अपने पिता की आंखों में आत्मविश्वास देखा। तो दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि आय को संभालना केवल पैसे बचाने का नाम नहीं है, यह एक आदत है। सोच समझकर खर्च करना, जरूरत और चाहत में फर्क समझना, नियमित बचत करना, भविष्य के लिए योजना बनाना, दिखावे से दूर रहना, सही निवेश करना। यदि हम अपनी कमाई को सही दिशा दें तो छोटी आय भी बड़ा सहारा बन सकती है। और कहा भी गया है कि कमाई चाहे छोटी हो या बड़ी, समझदारी से ही बनती है जिंदगी खड़ी। बचत, योजना और सही विचार, यही बनाते हैं जीवन शानदार। दोस्तों जीवन में पैसा कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे संभालना। कई लोग बड़ी आय होने के बावजूद परेशान रहते हैं, जबकि कुछ लोग सीमित कमाई में भी खुशहाल जीवन जीते हैं। फर्क केवल सोच और प्रबंधन का होता है। दोस्तों यदि आज से हम अपनी आय का सम्मान करना सीख जाएं, तो भविष्य सुरक्षित और खुशहाल बन सकता है, क्योंकि धन केवल जेब में नहीं समझदारी में बसता है। तो ये थी दोस्तों कहानी, और कुछ छोटी मोटी बातें रह गई हैं आपसे, वो हम जरूर करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि हमारी बहुत ही अच्छी कहानी चल रही थी और मैंने आपको कहानी के साथ शिक्षा भी दी थी, बताई थी कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कहानी का शीर्षक था कि हमारी आय को हम कैसे संभाल सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ बातें हैं जो रह गई है आपसे, वो आपको बताना चाहेंगे कि बचत आर्थिक सुरक्षा का सबसे मजबूत आधार है। जीवन में कब कौन सी समस्या आ जाए ये कोई नहीं जानता, इसलिए हर व्यक्ति को अपनी आय का कुछ भाग बचाकर रखना चाहिए। छोटी छोटी बचत भविष्य में बहुत बड़ी सहायता बन जाती है दोस्तों। यदि व्यक्ति नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी बचत करे तो वो भविष्य में बड़े खर्चों को आसानी से संभाल सकता है। दोस्तों, बचत केवल धन इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास सुरक्षा की भावना भी देती है। जिन लोगों के पास बचत होती है वे कठिन समय में घबराते नहीं है। और कहा गया है दोस्तों कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बचत से भविष्य संवरता है। तो आप लोग भी अपनी आदतों में सुधार ले आइए, अगर आप में ऐसी आदतें हैं तो। जैसे कि आज के आधुनिक युग में लोग दिखावे के कारण अनावश्यक खर्च करने लगे हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं, मोबाइल का शौक रखते हैं, बाहरी चमक दमक के पीछे लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं। श्रोताओं, फिजूल खर्ची व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमजोर बना देती है। कई लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपनी क्षमता से अधिक खर्च करते हैं, जिससे बाद में उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। समझदार व्यक्ति वही है जो जरूरत और इच्छा के बीच का अंतर समझे। आवश्यकता की वस्तुओं पर खर्च करना उचित है, लेकिन केवल दिखावे के लिए धन खर्च करना गलत है। ये आपसे कहना चाहेंगे दोस्तों कि आय को संभालना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कला है। मेहनत से कमाए गए धन का सही उपयोग ही जीवन को सुखी और सुरक्षित बनाता है। यदि व्यक्ति बचत करे, फिजूल खर्चे से बचे और भविष्य की योजना बनाए तो सीमित आय में भी खुशहाल जीवन जी सकता है। धन का सही प्रबंधन केवल आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं बनाता, बल्कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी देता है। ये हमें अपनी आय का सम्मान करना होगा और उसे समझदारी से उपयोग करना होगा। आपसे ये कहना चाहेंगे कि आय को सही दिशा में लगाएं, सुरक्षित और सुखद भविष्य को पाएं। बचत, मेहनत और सही विचार यही बनाते हैं जीवन को शानदार। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आपके साथ आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी, क्योंकि समय और चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा जरूर लूंगी, पर जाते जाते आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आपको पता बताना चाहूंगी, ताकि आप राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है श्रोता साथियों, कार्यक्रम कथा कहानी वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए श्रोता साथियों, आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नई प्रेरणादायी शिक्षा प्रत्याने के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी जागृति भट्ट को कार्यक्रम कथा कहानी से जाने की अनुमति। नमस्कार। साथ ही आप सभी को छोड़े चलती हूँ इस गीत के साथ में।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: जागृति बो, आपके कार्य सोचू है, अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है।
2: नाना अंजलि बोन हूँ था का।
1: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
2: ओ अंजलि बोन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
2: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा की नर ने खुल्लो नीर राखवो, बारिश ने पानी नो संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नो जीवन सफल थी सागा।
1: होवे होवे जागृतिपूर्ण, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नो मोल आपड़े जानो।
3: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित है।

0: हेलो बच्चों, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दीदी मनीषा दीदी। आ गई हूँ बच्चों बात नन्हे दिलों की को लेकर नई नई कहानियों के साथ में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में मैं जब भी हाजिर होती हूँ तो कार्यक्रम के माध्यम से प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाती हूँ आपको, जो आपके जीवन में आपको नई नई सीख देते हैं। तो बच्चों आज भी कार्यक्रम के माध्यम से मैं बहुत ही प्यारी कहानियों को लेकर हाजिर हुई हूँ, तो ये कहानियाँ तो मैं आपको अवश्य सुनाऊंगी। लेकिन कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं पहले कार्यक्रम का यह गीत। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM के कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में।
1: चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

0: आया बंदर भी आया छुन छुन करती आई चिड़िया।
1: बच्चों इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। जैसा कि बच्चों मैंने गीत से पहले कहा था कि मैं बहुत ही प्यारी कहानियों को लेकर हाजिर हुई हूँ। आज हमारी पहली कहानी है बच्चों ईमानदार मोहन और जादुई बीज। जी हाँ बच्चों, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक बच्चा रहता था। मोहन बहुत सीधा मेहनती और दयालु था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे लेकिन उन्होंने मोहन को अच्छे संस्कार दिए थे। वे हमेशा कहते, बेटा इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका अच्छा चरित्र है। मोहन यह बात मन से मानता था। वह सबकी मदद करता, सच बोलता और मेहनत से कभी नहीं हटता। गांव के लोग भी उसे प्यार करते थे। गांव के पास एक बड़ा बगीचा था बच्चों, उसमें तरह तरह के पेड़ फूल और फल लगे थे। बच्चे वहाँ खेलते थे। मोहन भी रोज स्कूल से लौटते समय वहाँ जाता और पेड़ों को पानी देता। उसे पेड़ पौधों से बहुत प्रेम था। एक दिन वह बगीचे में गया तो उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई दिए। बाबा थके हुए थे और एक पेड़ के नीचे बैठे थे। मोहन तुरंत उसके पास गया और बोला, बाबा क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? बाबा मुस्कुरा कर बोले, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है। मोहन दौड़कर घर गया, लोटे में पानी लाया और बाबा को पिलाया। फिर अपने टिफिन की बची हुई रोटी भी उन्हें दी। बाबा बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी झोली से एक छोटा सा बीज निकाला और मोहन को देते हुए बोले, ये एक साधारण बीज नहीं है, इसे अपने घर के आंगन में बो देना। लेकिन याद रखना, यह बीज केवल सच्चाई, मेहनत और धैर्य से ही फल देगा। मोहन ने आदर से बीज ले लिया। घर आकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा, बेटा चाहे बीज जादुई हो या साधारण, अक्सर मेहनत लगाएंगे तो अच्छा ही होगा। मोहन ने अगले दिन आंगन की मिट्टी साफ की, बीज बोया और रोज उसे पानी देने लगा। वह सुबह उठकर पौधों से बातें भी करता, जल्दी बड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते बीते, लेकिन कुछ नहीं होगा। पड़ोस के बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। वे कहते, तुम्हारा जादुई बीज तो सो गया। मोहन थोड़ा दुखी हुआ लेकिन उसने पानी देना बंद नहीं किया। वह सोचता, हर चीज को समय लगता है। एक सुबह उसने देखा कि मिट्टी से एक छोटी सी कोपल बाहर आई है। मोहन खुशी से उछल उठा। उसने माँ को बुलाया। माँ बोली, देखा बेटा, देरी का फल मीठा होता है। अब मोहन और लगन से पौधों की देखभाल करने लगा। धीरे धीरे पौधा बड़ा होकर पेड़ बन गया। लेकिन वह साधारण पेड़ नहीं था। उसके पत्ते चमकते थे और उसकी शाखाएं बहुत सुंदर थीं। कुछ महीनों बाद उस पेड़ पर सुनहरे रंग के फल लग गए। गांव वाले हैरान रह गए। ऐसा पेड़ उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। गांव का लालची सेठ यह देखकर मोहन के पास आया और उससे बोला, यह पेड़ मुझे बेच दो, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। मोहन ने विनम्रता से कहा, यह पेड़ पैसे कमाने के लिए नहीं, यह तो सबके काम आने के लिए है। उसने पेड़ के फल तोड़कर गांव के बच्चों, बुजुर्गों और जरूरतमंदों में बांट दिए। जो भी फल खाता उसके चेहरे पर खुशी आ जाती। कहते थे कि फल खाने से मन प्रसन्न होता है और शरीर में भी ताकत आती है। अब मोहन का नाम पूरे गांव में फैल गया। लोग कहते, यह बच्चा सच में बड़ा नेक है। एक दिन तेज आंधी आई, कई पेड़ गिर गए। मोहन चिंतित होकर अपने पेड़ के पास पहुँचा। उसने देखा कि पेड़ झुका जरूर है पर गिरा नहीं है। उसकी जड़ें बहुत मजबूत थी। मोहन समझ गया, जैसे पेड़ की जड़ें मजबूत हो तो वह आंधी में भी खड़ा रहता है। वैसे ही अच्छे संस्कारी इंसान हर मुश्किल में संभालते हैं। कुछ समय बाद वही बूढ़े बाबा फिर से गांव आए। मोहन उन्हें पहचान गया और आदर से घर ले गया। बाबा पेड़ को देख कर प्रसन्न हुए और बोले, बेटा यह पेड़ मेरी जादू से नहीं, तुम्हारी अच्छाई से बड़ा हुआ है। बीज तो सिर्फ परीक्षा था, असली जादू तुम्हारी ईमानदारी, मेहनत और दया में है। मोहन यह सुनकर मुस्कुराया। उसने समझ लिया कि जीवन में चमत्कार बाहर नहीं, हमारे गुणों में छिपे होते हैं। बाबा ने जाते जाते कहा, जहाँ भी अच्छे बच्चे होते हैं वहाँ खुशियाँ अपने आप उगती हैं। उस दिन से मोहन और भी विनम्र हो गया। उसने गाँव के बच्चों को पेड़ लगाना सिखाया। सबने मिलकर गांव को हरा भरा बना दिया। अब हर घर के सामने पौधे थे, हर गली में हरियाली थी और हर लोगों के दिलों में प्रेम था। मोहन अक्सर बच्चों से कहता, अगर तुम रोज थोड़ा अच्छा काम करोगी तो एक दिन तुम्हारा जीवन फलदार पेड़ बन जाएगा। बच्चे उसकी बातें ध्यान से सुनते और अच्छे काम करने की कोशिश करते। धीरे धीरे गांव बदलने लगा, लोग झगड़े कम करने लगे, सफाई रखने लगे, पेड़ लगाने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। सब कहते थे कि यह बदलाव मोहन की सोच से आया है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और मेहनत का फल जरूर मिलता है। धैर्य रखने वाले को सफलता जरूर मिलती है। अच्छाई बांटने से बढ़ती है बच्चों। अच्छे संस्कार इंसान की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। छोटा बच्चा भी बड़ा बदलाव ला सकता है। इसलिए बच्चों, हमेशा याद रखें, असली जादू किसी वस्तु में नहीं, आपके अच्छे कर्मों में होता है। आशा करती हूँ कि बच्चों, ये कहानी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। आगे भी मैं आपको एक और प्यारी सी कहानी सुनाऊंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में।

बच्चे इस प्यारे से गीत के बाद में एक बार फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की ओर। जैसा कि बच्चों मैंने गीत से पहले एक प्यारी सी कहानी आपको सुनाई थी, अब यही एक और प्यारी सी कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है मीना और बोलता हुआ बीज। जी हाँ बच्चों, एक छोटे से गांव में मीना नाम की एक बच्ची रहती थी। वो बहुत जिज्ञासु थी, उसे हर चीज के बारे में जानना अच्छा लगता था। पेड़ कैसे बढ़ते हैं, बारिश क्यों होती है, फूल सुबह क्यों खिलते हैं। मीना की दादी अक्सर कहती थी, जिस बच्चे के मन में सवाल होते हैं उसके जीवन में उजाला होता है। एक दिन मीना अपने आंगन में खेल रही थी, तभी उसे मिट्टी में एक चमकता हुआ छोटा सा बीज मिला। वह बहुत सुंदर था। उसने उसे उठाया और ध्यान से देखा, तभी उसे लगा जैसे कोई धीमी आवाज आई, मुझे बो दो, मुझे बो दो। वह बहुत सुंदर था। उसने उसे उठाया और ध्यान से देखा, तभी उसे लगा जैसे कोई धीमी सी आवाज आई, मुझे बो दो, मुझे बो दो। बच्चों मीना चौंक गई। उसने इधर उधर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई। अब मीना समझ गई कि आवाज उसी बीज से आ रही है। वो दौड़कर दादी के पास गई और बोली, दादी यह बीज बोलता है। दादी मुस्कुराई और बोली, हर बीज बोलता है बेटा, बस उसकी आवाज सुनने के लिए धैर्य चाहिए। मीना ने उसी समय आंगन में छोटी सी जगह साफ की, मिट्टी खोदी और बीज बो दिया। रोज उसे पानी देती, उसके पास बैठती और कहती, जल्दी बड़े हो जाओ। लेकिन कई दिन बीत गए पर कुछ नहीं हुआ। मीना थोड़ा उदास हुई। उसने कहा, शायद यह सचमुच जादुई बीज नहीं था। दादी बोली, जो चीजें धीरे बढ़ती हैं वही लंबे समय तक खुशियां देती हैं। मीना ने फिर से उम्मीद नहीं छोड़ी। कुछ दिन बाद मिट्टी से एक छोटी सी हरी कोपल निकली। मीना खुशी से उछल पड़ी। वो रोज उसकी देखभाल करने लगी। धीरे धीरे पौधा बड़ा होने लगा। उसकी पत्तियां चमकदार थीं और उस पर रंग बिरंगे फूल खिलने लगे और फूलों की खुशबू पूरे घर में फैल जाती। अब पड़ोसी भी उसे देखकर आने लगे। सब कहते, मीना का पौधा कितना सुंदर है। लेकिन एक दिन तेज धूप पड़ी, पौधा मुरझाने लगा। मीना घबरा गई। उसने पानी डाल दिया पर पौधा फिर भी उदास था। दादी ने कहा, हर समस्या का हल सिर्फ जल्दी करना नहीं होता, सही तरीका ढूंढना होता है। उन्होंने पौधे के ऊपर पुराना कपड़ा बांध कर छाया कर दी। थोड़ी देर

0: गया। गांव की बच्ची मीना से पूछती, तुम्हारा राज क्या है? मीना हंसकर कहती, प्यार, धैर्य और रोज की थोड़ी मेहनत। एक दिन स्कूल में पर्यावरण दिवस मनाया गया बच्चों। शिक्षक ने कहा, जिस बच्चे ने सबसे अच्छा काम किया है उसे सम्मान मिलेगा। सब बच्चों ने एक साथ कहा, मीना को दीजिए। मीना को मंच पर बुलाया गया, उसे पौधा और प्रमाण पत्र दिया गया। शिक्षक बोले, मीना ने हमें सिखाया है कि छोटा हाथ भी बड़ा बदलाव ला सकता है। मीना खुश थी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि अब गांव के कई घरों में पौधे लग चुके थे। उस रात उसने अपने पहले पौधे को देखा और मुस्कुराई। उसे लगा जैसे वह पुरानी आवाज फिर आई, धन्यवाद मुझे बोने के लिए। मीना समझ गई कि असली जादू बीज में नहीं, देखभाल करने वाले दिल में होता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, धैर्य रखने वाले को सुंदर परिणाम मिलता है। मेहनत के साथ समझदारी भी जरूरी है। प्रकृति से प्रेम करना बच्चों अच्छी आदत है। छोटी शुरुआत बड़ा बदलाव ला सकती है। और बच्चों, जो अच्छा काम करता है वह दूसरों को भी प्रेरित करता है। आशा करते हो कि बच्चों, आपको ये प्यारी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। अब समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आइए सुनते हैं इस गीत को।
1: लकड़ी की काठी काठी पे उड़ा, घोड़े की दुम पे जुमा रहा तोड़ा।

बच्चों, इस प्यारे से गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम पत नन्हे दिलों की से विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो बच्चों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपने साथी मनीषा पटेल को बात नन्हे दिलों की से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ में बाय बाय बच्चों।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

साथियों, समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जी हाँ श्रोता साथियों, भाग्य भी उसका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारे मेहमान में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 एफएम पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम हमारे मेहमान में हम हर रविवार को कार्यक्रम के माध्यम से एक नई शख्सियत को जोड़ते हैं, तो आज भी हमारे बीच में नए मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उनके जीवन के कुछ अनुभवों को, फिर आगे हम हमारी बातें जारी रखेंगे। सर नमस्कार।
1: नमस्ते मैम।
0: सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे वागड़ रेडियो परिवार में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर जैसा कि आप हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमान से जुड़ रहे हैं, जो कि हर रविवार को विशेष अतिथियों के साथ हमारा कार्यक्रम रहता है, तो सर आज कार्यक्रम के माध्यम से सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगी।
1: जी मैम, मेरा नाम रमेश चंद्र पाटीदार है और मैं डूंगरपुर जिले से बिलोंग करता हूं। वर्तमान में मैं बांसवाड़ा शहर का ट्रैफिक इंचार्ज हूं और लोगों को ट्रैफिक के बारे में काफी नियमों के बारे में जानकारी दे रहा हूं और यातायात व्यवस्था सुधारने का कार्य कर रहा हूं।
0: जी बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आप एक ट्रैफिक इंचार्ज हैं, तो सबसे पहले मैं आपके जीवन के परिचय के बारे में जानना चाहूंगी कि आपका जो बचपन है वो किस कदर बीता।
1: जी मैम, बहुत ही रोचक प्रश्न पूछा आपने, बचपन की याद दिला दी है।
0: जी जी।
1: तो निश्चित तौर से हमारा बचपन बहुत ही अभावों में बीता है। मेरा गांव नौगांवा है, जो डूंगरपुर जिले में है।
0: जी बिल्कुल।
1: और बिल्कुल रोड से कटा हुआ, वहाँ ना कोई लाइट की सुविधा ना ही कोई रोड की सुविधा, ऐसी स्थितियों में भी हमने अभावों में हम रहे।
0: जी जी।
1: मैंने BSc किया, तब तक मैंने लालटेन में और दीपक में पढ़ाई की है।
0: जी बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आपका जो बचपन है वो बहुत ही अभावों में बीता, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब हमें पूरी तरीके की सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तब हम हमारे जीवन की जो स्थिति होती है उसे ही अपना कर बैठ जाते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आपका जो बचपन है वो बड़े ही अभाव में बीता, आपने लालटेन और उनके बीच में पढ़ाइयाँ की है, तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका ये जो शिक्षा का क्षेत्र था उसमें क्या क्या ऐसे संघर्ष रहे, जो आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों को बताइए, ताकि वो भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार से किसी भी परिस्थिति को लेकर हताश न होए और जीवन में निरंतर आगे ही बढ़ते रहे।
1: जी मैम, एक्चुअली में बचपन से हम पढ़े, हमारे गांव में पहले दूसरी तीसरी क्लास थी, हम चौथी क्लास भी बाहर बचपन में पढ़ने जाते थे।
0: जी बिल्कुल।
1: और इसके बाद हम दूरस्थ जाते थे, बरसात के मौसम हम कई दफे पानी में गिरते थे, बस्ते भी भीग जाते थे।
0: जी जी।
1: फिर भी स्कूल में जाके दरी पे बैठते थे, दरी भीग जाती थी, ऐसे अभाव थे। उसके बाद भी हम पढ़ के आते थे और हमारे ना तो घरों में लाइटें थी।
0: जी जी।
1: ये भी आपको मैंने पहले बता दिया, अवगत कराया है। तो ऐसी स्थितियों में हम आगे बढ़ना है तो निश्चित तौर से पढ़ना है, ये मन में ठान लेते हैं और आगे बढ़ना ये तय हो तो निश्चित तौर से अपन आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप किसी अभाव को देखते हो, उस अभाव के साथ तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, तो वो व्यक्ति का विकास रुक जाता है।
0: जी बिल्कुल। सर आपने बहुत सही बात कही है, क्योंकि हम देखते हैं कि अधिकतर हम मनुष्य जो होते हैं उनकी प्रवृत्ति होती है कि अगर किसी एक जो इंसान है उनके साथ में, जो उनका फ्रेंड ही मान लेते हैं हम, अगर उसके पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, तो वो अपने घर पर आकर उन सारी चीजों का जिक्र करने लगता है कि मैं कैसे पढ़ाई करूं, मेरे पास तो न तो टेबल कुर्सी है, न ही अपने घर पर ढंग से लाइट आती है, न ही हमारे पास पंखा है। तो ऐसे में माता पिता जो होते हैं वो भी बच्चे की उस बात को मान लेते हैं कि हाँ, हमारा बच्चा आखिरकार सही तो कह रहा है ना, हमारे पास क्या ऐसी सुविधाएं हैं जो हम उसे दे रहे हैं जो आगे बढ़ा सकती है। तो ये जो सारी चीजें जब माता पिता और बच्चे दोनों ही अपने मन में डाल लेते हैं, तो वो किसी भी प्रकार से अपनी स्थिति को छोड़कर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वही स्थिति में वो रह जाते हैं। तो सर अब यही मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी जो शिक्षा का क्षेत्र, जैसा कि आपने बताया कि अभाव है लेकिन फिर भी आप उसमें आगे बढ़े, तो बचपन से ही आपकी जो हॉबीज थी वो यही थी कि आपको आगे जाकर किसी सरकारी पद पर ही जाना है, या आप अपने जीवन में कुछ और बनना चाहते थे?
1: मैम, दो बातें तो दोनों थी, लेकिन एक्चुअली हम BSc निकले।
0: जी जी।
1: और निकलते ही हमारे साथी कुछ पुलिस में फॉर्म भर रहे थे, तो उसमें कोई एग्जाम नहीं होते थे।
0: जी बिल्कुल।
1: तो सीधा ही लेते थे, हमने पुलिस लाइन नंबर में फॉर्म भर दिया, दूसरे दिन हमारी दौड़ वगैरह हो गई और शाम को हमारा सिलेक्शन हो गया। तो इस कारण से क्या एक्चुअल में हम कुछ आगे नहीं कर पाए पुलिस में आने के बाद, बाकी इच्छाएं तो कहीं ना कहीं आगे उच्च पद की प्राप्त करने की थी, जो कांस्टेबल में आने से दबी है।
0: जी बिल्कुल,
1: ये निश्चित तौर से है। और आपने एक प्रश्न कहा है कि किसी लोगों की सुविधा बहुत ज्यादा है घर में या नहीं है, अभाव है, तो बच्चों को क्या सुविधा दे सकते हैं? तो बच्चों में जिसको लगन है पढ़ना है, वो तो इन बिना टेबल कुर्सी के भी पढ़ सकता है, बिना पंखे के भी पढ़ सकते हैं, और उसको सुविधा देने। कई लोग ऐसे हमने सुना भी है कि बच्चों रोड की लाइट के खंभे के नीचे भी पढ़ करके अधिकारी बने हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: तो जिसमें ललक है वो तो कहीं ना कहीं रास्ता निकाल लेगा। साधनों का अभाव किसी की उन्नति में बाधक नहीं होना चाहिए, ये दृढ़ निश्चित हो तो निश्चित तौर से आगे बढ़ेगा।
0: जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हमारे युवा साथियों को आज कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छा संदेश मिल रहा है कि हमारी जो भी स्थिति है उसमें हम अपनी लगन को, हमारा जो लक्ष्य है उसे सबसे पहले निर्धारित करें और उस लक्ष्य पर ही अगर हम अमल करते हैं दृढ़ निश्चय करके तो अवश्य हम उस तक पहुँच पाते हैं। तो सर जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छी चल रही है, इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारी जो युवा अवस्था होती है, हमारा जब बचपन होता है तब हमारी खेलने कूदने की इच्छा बहुत ज्यादा करती है। हम देखते हैं कि आज हम क्रिकेट खेल ले, वॉलीबॉल खेल ले, तो ऐसे में मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको कौन सा खेल पसंद था, क्या अब की जो प्रगति है उसमें कभी आपके जो खेलने की चीजें हैं वो कभी बाधक बनी?
1: गाँव में ऐसी कोई सुविधा उस समय नहीं थी। आज जो क्रिकेट वगैरह की और दूसरे खेलों की बात कर रहे हैं, गाँव में हमारे प्रचलित थे गिल्ली डंडे।
0: जी बिल्कुल।
1: इसके अलावा हमारे पास गीडा डोट थी जो संक्रांति से 15 दिन 20 दिन पहले शुरू करते थे, गाँव की गलियों में खेलते थे।
0: जी बिल्कुल।
1: ये बहुत ही बढ़िया थे, ये दो गेम हमें बहुत ही प्यारे लगते थे और इसी के आधार पर हम खेलने का मन करते थे, उसी में ज्यादा रुचि थी। बाद में भविष्य में तो हम वैसे में रनर भी रहा दौड़ वगैरह में, इसके बाद में जुड़ो रहा, पुलिस विभाग में भी उस समय में मैंने मेडल प्राप्त किए।
0: जी बिल्कुल।
1: लेकिन अब एज 55-56 की ओर ही मैं लगभग 15-20 साल से इन खेलों से दूर हो चुका हूँ।
0: जी बिल्कुल। तो सर जैसा कि हम कह सकते हैं कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम खेल कूद में रह जाते हैं, पढ़ाई को महत्व नहीं देते हैं, तो हम खेल कूद के साथ अपनी इच्छाओं को अच्छे से जीते हुए भी पढ़ाई कर सकते हैं। सर जैसा कि आपके परिचय में आपने हमें बताया था कि आप ट्रैफिक इंचार्ज है, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बहुत से ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं, हम देखते हैं कि आए दिन अखबार में हमें कम से कम 5-7 खबरें ऐसी मिली जाती हैं कि जहां पर बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं कह सकते हैं कि नियमों का पालन न करने के कारण होती है, तो ऐसे में आप हमारे उन श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे?
1: जी मैम, ट्रैफिक के बारे में मैं निश्चित तौर से कहूंगा, एक बड़ा ही दुखद विषय है। अकाल मौत एक्सीडेंट में होना
0: जी
1: किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़े सदमे से कोई कम नहीं है, क्योंकि जिसके परिवार में कोई एक्सीडेंट हुआ है, घायल हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है या मौत हुई है, वो ही उसकी पीड़ा ज्यादा बयां कर सकता है।
0: जी बिल्कुल।
1: मेरा 30-35 साल से पुलिस में हूँ, मैं अक्सर ये देखता हूँ कि ये जो वाहन चालक है वो ट्रैफिक नियमों का कहीं पालन नहीं करते हैं, इसी कारण से एक्सीडेंट होता है। सडनली कोई एक्सीडेंट होना मैं नहीं मानता, क्योंकि ट्रैफिक में निश्चित तौर से जो वाहन चालक हैं वो सबसे पहले अगर जैसे मोटरसाइकिल है तो वो हेलमेट का प्रयोग करें, तो निश्चित तौर से वो गिर भी जाएगा तो अपनी जान बचाएगा, क्योंकि हेड इंजरी से मौत होने का ज्यादा चांस रहता है। तो हेलमेट निश्चित तौर से पहने, फोर व्हीलर है तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें। अच्छा, वाहन चलाने के लिए 18 साल से अधिक की उम्र का ही व्यक्ति चला सकता है, इसका निर्धारित लाइसेंस 18 साल बाद ही प्राप्त होता है DTO से। तो निश्चित तौर जो 18 साल से कम के बालक हैं, अभिभावक जो हैं वो गलती एक करते हैं, 18 साल से कम के बच्चों को अपनी व्हीकल दे देते हैं और उनको बड़ी बड़ी महंगी आजकल बाइकें देते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: जबकि बच्चा जिद्दी है, मैं मानता हूँ, जिद करके लेते हैं तो उनकी जिद को

0: कहीं शमन करना चाहिए, अन्यथा एक दिन आपके घर में भी वही एक्सीडेंट का मातम आएगा। तो मेरा ये कहना है कि जो यातायात के नियम है उनको निश्चित तौर से माने, सड़क पर आप रॉन्ग साइड नहीं चले, निर्धारित जो गति है उससे वाहन को तेज न चलाएं, सीट बेल्ट का प्रयोग करना ही है। इसके अलावा आप जैसे बड़ी गाड़ियां हैं, कोई परिवहन वाहन है, उसमें क्षमता से अधिक सवारियां न बिठाएं, तेज गति से वाहन न चलाएं। वाहन चलाते समय कहीं लोग शराब का सेवन करते हैं, ये बहुत ही घातक है, उसके खुद के लिए भी घातक है और सामने से सही चलने वाले के लिए भी घातक है।
1: जी बिल्कुल,
0: शराब पीकर जो वाहन चलाते हैं उनकी गाड़ी भी जब्त करते हैं, वो शराब वाला मामला वास्तव में बहुत ही डेंजर है। इसके अलावा व्हीकल जो है एमवी एक्ट में है, उन एमवी एक्टों में बहुत सारे जो प्रावधान है उनका अगर पालन किया जाए तो निश्चित तौर से दुर्घटनाओं में अपन कमी ला सकते हैं। वाहनों में जो फिटनेस वगैरह है ये देखनी चाहिए, आरसी बीमा निश्चित तौर से करवाया जाना चाहिए।
1: जी जी बिल्कुल।
0: अपने जैसे शहरों में क्या करते हैं, अपना वाहन है वो कहीं कहीं डामर रोड पे खड़ा कर देते हैं, जहाँ दुकान मिली वहाँ खड़ा कर दिया चले जाते हैं, पीछे से कोई स्पीड से आता है तो टक्कर होती है, घायल होता है। तो कृपया शहरों के लिए मैं बताता हूँ कि कोई भी वाहन सड़क पर खड़ा नहीं करें, पार्किंग स्थल पर करें, दुकानों के सामने तरतीब से वाहन लगावें, रॉन्ग साइड कभी नहीं चलें। वाहन चलाते समय एक मोबाइल का प्रयोग करते हैं, जैसे ही घंटी बजती है तो वो मोबाइल उठाता है, तो निश्चित तौर से वो स्वयं भी गिरता है या सामने वाले के साथ भी टक्कर मारता है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो ये जो एक मोबाइल है, शराब पी के चलाना, ये एक्सीडेंट के कहीं न कहीं बड़े कारण हैं। और रॉन्ग साइड चलना ये बड़े हैं, तेज चलना, तो इसके ऊपर अगर अंकुश लगाया तो मैं उसी के ऊपर अंकुश लगाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और लोगों के जो जीवन मौतें हैं उन मौतों के आंकड़ों को कम करने के प्रयास कर रहे हैं। विभाग, पुलिस विभाग भी इसमें लगा हुआ है, परिवहन विभाग भी इसमें लगा हुआ है, फिर भी लोगों में कुछ जागरूकता की कमी है। हम निश्चित तौर से विद्यालयों में भी इस संबंध में सेमिनार कर रहे हैं। मेरे स्वयं के द्वारा भी अभी प्रतापपुर में गया था, वहाँ विद्यालय में हमने नेल्सन स्कूल है उसमें हमने निश्चित तौर से बालकों के साथ संवाद किया था। और इसके अलावा मैं घाटोल गया, कल मैं कुशलगढ़ जाके आया, लोगों को अवेयरनेस और ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी अवेलेबल करा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल सर। जी बिल्कुल सर, आपने बहुत सही कहा। हम देख रहे हैं कि आए दिन ये जो दुर्घटनाएं होती हैं वो बहुत सी बार हमारी ना समझी की वजह से हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो ये नियम बनाए गए हैं ट्रैफिक वाले, वो हमारे मनुष्य के लिए उसके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। ऐसे में हम बहुत सी बार अपनी लापरवाही के कारण, जल्दबाजी के कारण ऐसे कुछ कृत्य कर देते हैं। और खासकर अभी हम देखते हैं सर कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि जोशीली हो गई है। आजकल उन्हें अलग अलग स्टंट करने होते हैं, अपने आप को कुछ अलग साबित करने के लिए वो कुछ भी सरेआम करते रहते हैं। तो ऐसे युवाओं को आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: आपने एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न उठाया मैम। आज जो युवा है आज वो कुछ ग्रुप बनाते हैं, अपनी बाइक महंगी माता पिताओं से दबाव डालकर खरीदते हैं और इसके बाद उनको बहुत ही तेज गति से चलाना इनका शौक बन गया है और एक दूसरे की कंपटीशन में इनके ही व्यक्ति कहीं न कहीं आपस में टकरा के गिरने से मौतें हो रही है, जो अकाल मौतें हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: ये जो स्टैंड करने वाले जो बालक है वो कहीं न कहीं कॉलेज स्तर के लोग हैं या कॉलेज कर चुके हैं या कुछ बेरोजगार हैं या कहीं अहमदाबाद वगैरह में जो अपना बिजनेस करते हैं और वापस घर आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैम बिल्कुल यहाँ पावर बाइक हम जब्त करने की पूरी कार्रवाई करते हैं और इनको समझाइश करते हैं, शराब पीकर ना चलाएं, स्टैंड ना करें और इसके अलावा भी हम नियमानुसार उनके गाड़ियां हैं वो जब्त करने के बाद कोर्ट से छुड़ाने के लिए कहते हैं। प्रयास काफी है लेकिन फिर भी इन युवाओं में एक क्रेज बन गया है, कुछ ग्रुप बना रखे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि युवा जो आज भारत के एक तरह से राष्ट्र निर्माता है और जब भारत का राष्ट्र निर्माता ही युवा अपना अकाल मौत कर लेता है हाथों से अपनी ही गलती से, तो एक दुखद विषय है। इस पर इन युवाओं को भी सोचना चाहिए और इस प्रकार के स्टैंड से बाहर जाना चाहिए।
1: जी बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात कही है, यही मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि माता पिता बच्चों को इन सारे संस्कारों को देने में बचपन से ही क्या ऐसी चीजों को अपना सकते हैं। हम देखते हैं कि माँ बाप का इस चीज में बहुत ज्यादा अहम रोल होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बचपन से ही जिस तरीके से हम बच्चों को जिस स्थिति में ढालते हैं, जो वो हमारे आसपास के वातावरण में देखते हैं, वही आगे चलकर करते हैं। तो माता पिता इस चीज में कैसे अपनी भूमिका निभा सकते हैं?
0: जी मैम, एक्चुअल में होता यही है कि आज के बच्चे ऐसे हो गए हैं कि एक दूसरे के शौक क्या ना तौर पर माता पिता के ऊपर दबाव डालकर वाहन लाते हैं और एक दूसरे को कंपटीशन में देखना चाहते हैं। बहुत ही गलत धारणा हो चुकी है। माँ बाप का ये फर्ज होना चाहिए कि सख्ती से मना करते हैं और उनको वाहन ना दे। 18 साल का अगर उम्र नहीं हुई है तो उन बच्चों को वाहन कतई ना दें।
1: जी बिल्कुल।
0: इसके अलावा अगर 18 साल हो गई है तो उतने बच्चों का लाइसेंस बनवा लें, वाहन का बीमा करके ही वाहन दें। बच्चे को घर से निकले तो हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करें, नहीं पहनता तो स्वयं अगर पुलिस को मिलके इसका चालान करवाएं या गाड़ी जब्त करवाएंगे और आगे आएंगे तो ही इनको बचाया जा सकता है। आज तो हम कोई चालान बनाते हैं हेलमेट का, मैं शहर में हमें उच्च अधिकारियों द्वारा कहा गया, आज हमारे महानिरीक्षक पुलिस लेडीज हैं एस परिमला जी, उनके सख्त निर्देश हैं कि 100% संभाग मुख्यालय होने पर 100% हेलमेट का प्रयोग करेंगे। तो उसी दिशा में मैं कार्य कर रहा हूँ, बिना नंबर वाहन नहीं होना चाहिए शहर में। तो इस पर हम काम कर रहे हैं, तो आज सिफारिश करते हैं जो उच्च पद पे बैठे हैं, चाहे वो कहीं ना कहीं अपने आप को उच्च समझ रहे हैं या कहीं राजनीति में हैं, तो ऐसे लोग सिफारिश करते हैं कि इसका हेलमेट छोड़ दीजिए साहब, आप मत बनाइए, कैसे बनाते हो देख लेंगे, ऐसी धमकियां देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों को प्रोत्साहित करके उनकी मौत को बुलाना देते हैं।
1: जी जी।
0: तो मैं इनसे ये निवेदन करूंगा, जो भी सिफारिश अगर करे तो निश्चित तौर से ये देखे कि वो कल उसको मौत को आप निमंत्रण दे रहे हैं। इस संबंध में मेरे भाई टीचर है, उसको एक बार चालान बन रहा था पुलिस का और मुझे सिफारिश की, मैंने उसको दो बार बचाया, तीसरी बार जब आया तो मैंने स्वयं कह दिया कि इसका चालान बनाइए, और उसका चालान बना। उसके बाद उसने हेलमेट का प्रयोग किया और दो बार गिरा, वो वाकई मिला मुझे और कहा चरण स्पर्श करके, भैया आपने अगर मेरा चालान नहीं बनाया होता तो मैं हेलमेट कभी नहीं पहनता और आज मैं बच गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी सिफारिश करता है, चाहे वो किसी भी पद पर हो, चाहे राजनेता हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो या कोई भी सामान्य प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, अगर कोई सिफारिश चालान के लिए करते हो, हेलमेट के लिए, सीट बेल्ट के लिए, नंबर प्लेट नहीं है उसके लिए सिफारिश करते हो, चालान बचाने के लिए 500,000 रुपया बचाने के लिए, तो मैं इनसे ये निवेदन करूंगा कि आप कहीं न कहीं इन रोड एक्सीडेंट में युवाओं की जान जोखिम में डालकर उनकी मौत को बुलावा दे रहे हैं।
1: जी बिल्कुल सर, आपने बहुत सही बात कही है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक बार हम हमारे बच्चों को बचा लेते हैं, दो बार बचा लेते हैं, निरंतर जान पहचान होने के कारण हम हमारे बच्चों को बचा लेते हैं, लेकिन वो एक ऐसी चीज है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर वही समझाइश अगर हम हमारे बच्चों से कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जो होते हैं या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता है, वो अच्छे से समझ जाएगा कि किस तरीके से उन्हें अपने नियमों का पालन करना है और अपनी जान को बचा कर रखना है।
0: जी मैम, इसमें एक मैं और शब्द कहूंगा, आज शहर में 4-व्हीलर और 2-व्हीलर वाले, अगर कोई रोगी वाहन जाता है, सायरन बज रहा है, उसको साइड देने के बजाय उससे और आगे चलता है, स्पीड करके और आगे चलता है, उसको साइड नहीं देता है। ऐसे लोगों से मैं निवेदन करूंगा, अगर कहीं पर भी किसी भी रास्ते पे, चाहे शहर हो, आम सड़क हो, हाईवे हो, अगर आपको सायरन बजता हुआ कोई गाड़ी रोकी की दिखती है या अग्निशमन की दिखती है, तो उनको तत्काल आपकी गाड़ी साइड में रोकें, ब्रेक करें और उनको आगे जाने का मौका दें। रोगी वाहन से किसी की जान बचाई जा सकती है, और अग्निशमन से कहीं आगे कोई अग्नि हो रही है, कहीं अग्निकांड हुआ है, कोई जान जल रही है या कोई नुकसान हो रहा है, तो उसको अतिशीघ्र बचाया जा सके। तो मेरा सबसे निवेदन है कि ये रोगी वाहनों को और अग्निशमन को तत्काल रास्ता दे साइड में खड़े करके।
1: जी बिल्कुल जी। तो सर, जैसा कि बातें हमारी कार्यक्रम में आपसे बहुत अच्छी चल रही है, इसी बीच हमारे टीम साथी कमलेश पुनकर जी भी आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे।
0: जी मैम।
2: जी सर
0: नमस्कार।
2: सर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है वागड़ रेडियो में। सर एक कार्यक्रम के बारे में, जैसे कि हमारा वागदरा संस्थान का विजन रहा है कि सच्चा बचपन, तो आजकल अधिकांश जो वाहन होते हैं 4-व्हीलर वाहन, वहां पर काली फिल्म की पट्टियां लगी होती हैं, और अवैध पट्टियां भी, अगर जैसे कि आपने पूर्व में भी वार्ता में बताया कि जो बड़े बड़े लोग अपने आप को कहते हैं तो अपने गाड़ी के आगे बोर्ड लगा देते हैं, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए कि वास्तव में यातायात के तौर पर आप प्रभारी हो बांसवाड़ा के, उस पर उस दिशा में क्या कार्यवाही वर्तमान में हो रही है।
0: बिल्कुल आपका सही कहना, जिनकी भी काली फिल्में हैं उसमें एक निर्धारित रखा है, रेशो है कि इतनी अंधापा वो उसका है, रेशो है, उस रेशो के अनुसार जो है तो उसको तो लगेगी। बाकी अगर ब्लैक ज़्यादा है निर्धारित रेशो, तो उनको हम तुरंत हटवाते हैं और उसका जुर्माना भी करते हैं। व्यक्ति के तहत 200 रुपया जुर्माना है, मौके पर ही जुर्माना करके मौके पर ही हटवा रहा हूँ। लेकिन कुछ बड़े लोग होते हैं, मेरी गाड़ी को कैसे हाथ मारा करके सिफारिशें कराते हैं, तो मैं कहीं दफ़े सिफारिश को अनसुना करता हूँ, तो हो सकता है मेरे नुकसान हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनकी जीवन को बचाने के लिए अनसुना करता हूं। और कहीं ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनका कभी चालान नहीं कटा और सिफारिश कराते हैं, मैं वहां तक पहुंचे, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि आप अपनी सिफारिशों को रोक लें और निर्धारित शुल्क आप जमा करें जो उस राजकोष में जाएगा, और आप भी इसी कारण से कि चालान कटता है तो आगे से आप यातायात नियमों का पालन करना शुरू कर देंगे, अन्यथा आप हर हमेशा ये कहेंगे मेरे जेब में तो सिफारिश का तुक्का पड़ा हुआ, एक का पड़ा हुआ है
1: जी जी।
0: और इसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए चलेंगे, तो मेरा यही निवेदन है आप लोगों से कि जो भी सिफारिश करवाता है और एक को बाहर निकालता है, वो कृपया स्वयं यातायात नियमों का पालन करें और एक को बाहर निकालने की प्रवृत्ति को बंद करें।
2: कार्यक्रम के अंत में सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप आज की इस चर्चा को लेकर हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम में क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: वाग्दरा संस्थान द्वारा एक तो मैंने सुना है जहाँ तक कि एक सच्ची खेती के बारे में, जो केमिकल मुक्त खेती करवाने के बारे में जोर देते हैं
1: जी जी।
0: और मिलेट्स जो बड़े अनाज हैं उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, देसी खाद से पुरानी पद्धति से खेती करने पर बहुत जोर देते हैं और किसानों को जागरूक कर रहे हैं। वाकई आपका कार्य बहुत तारीफ काफिल है। इसके बाद सच्चा स्वराज का भी आप जो कार्य कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों को नियमों का पालन कराना और उनको स्वराज के प्रति जागरूक करना, और एक सच्चा बचपन के बारे में मैंने सुना आपका कि जो 0 से 18 वर्ष के बालक हैं, निःशुल्क RTI के तहत शिक्षा प्राप्त करने के हैं, सरकारी योजना का जो लाभ है, उस समय आप इन बच्चों के बारे में सच्चा बचपन जो चला रहे हैं, 2-3 पॉइंट मैंने जो सुने हैं, वाकई बहुत ही सराहनीय कार्य है। क्योंकि आज का बचपन कहीं ना कहीं शहरों में किसी नशाखोरी में विलुप्त हो चुका है, तो उनको बचाना बहुत जरूरी है और उनके अभिभावक स्वयं भी इस ओर विशेष ध्यान दें और अपने बालकों को सही दिशा में प्रेरित करें। थोड़े सख्त हों, चाहे बच्चा जिद करे तो उस सख्ती के साथ उसके साथ पेश आना चाहिए
1: जी। बिल्कुल, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका अमूल्य कीमती समय आपने हमें और हमारे श्रोता साथियों को दिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी एंड कमलेश जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बांसवाड़ा वासियों को एक ही निवेदन करूँगा कि जो रोड एक्सीडेंट में मौतें हो रही हैं उसको कम करने के लिए यातायात नियमों का पालन करें और ट्रैफिक पुलिस बांसवाड़ा को सहयोग करें, सिफारिशें ना करावें। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: जैसा कि श्रोता साथियों, अभी हमारे कार्यक्रम में यातायात अधिकारी जुड़े हुए थे, जिनके माध्यम से हम बहुत अच्छी तरीके से जान पाए हैं कि अगर हमें हमारे जीवन को बचाकर रखना है, हमारे घर परिवार और देश के लिए कुछ करना है, तो हमें जो ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं उनका पालन अवश्य करना होगा। तो आशा करती हूँ कि आज कार्यक्रम में जो भी बातें रही हैं वो आपको जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम हमारे मेहमान से विदा लेने का। विदा तो जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

से गीत के साथ साथियों आज के कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम हमारे मेहमान वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वाकथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी अगले रविवार को एक नई शख्सियत के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पारेशर को कार्यक्रम हमारे मेहमान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: हाजिर है साथियों कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन में।
1: साथियों, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि हर मुश्किल के सामने गांधी जी के सत्य और धैर्य की तरह अड़िग खड़े रहो। गांधी जी का संदेश हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। सत्य बोलो, अहिंसा अपनाओ और मानवता को सबसे ऊपर रखो।

0: साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। जैसा कि कोशिश पिछले रविवार विशेष कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन सबके गांधी में हमने जाना था सांप्रदायिक सौहार्द के बारे में।
1: जी हाँ,
0: इसे में आगे आज हम कार्यक्रम के माध्यम से जाने। तो श्रोता साथियों, संसार के बड़े से बड़े धर्मों में हिंदू धर्म सबसे प्राचीन और इस्लाम सबसे अवाचीन है। इन दोनों धर्मों के मानने वाले लोग हिंदुस्तान में लगभग 1200-1300 वर्षों से साथ साथ रहते आए हैं।
1: बिल्कुल,
0: हिंद की भूमि पर हजारों वर्षों तक अलग अलग धर्मों के पालन करता और अलग अलग संस्कृतियों का बिरसा साथ लेकर लोग आते रहे हैं। उनमें से जो यहाँ आकर बस गए उन सबका यहाँ स्वागत हुआ है।
1: जी हाँ,
0: रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनका वर्णन इस प्रकार किया है कि यहाँ के मानव महासागरों में अनेक धर्मों और संस्कृतियों की नदियाँ आकर मिल गई हैं। तभी तो यहाँ अनेक प्रकार की विविधताओं के बीच एकता विकसित हुई है।
1: जी हाँ।
0: इस देश के लोगों ने मुस्लिमों को अपने ढंग से उपासना करने की सुविधा प्रदान कर दी। श्रोता साथियों, इस्लाम की एकेश्वरवाद की फिलोसोफी और सभी को समान दर्जा देने की आचार प्रणाली से भारत में भी बहुत से लोग आकर्षित हुए। हिंदुओं के जातिवाद, ऊंच नीच के भेदभाव और छुआछूत के रिवाज के कारण त्रसित लोगों को तो इस्लाम ने बहुत आकर्षित किया। हिंदी की स्थानीय आबादी में से बहुत सारे लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। मुस्लिम शासन काल के दरमियान बहुत सारे लोगों ने इस्लाम अंगीकार करके राज्य का आश्रय भी प्राप्त किया।
1: बिल्कुल,
0: आज हिंद में रहने वाले मुस्लिमों में से अधिकांश लोग मूल हिंदू थे।
1: जी हाँ जिले जी, साथियों ये तो बिल्कुल सत्य है कि इस देश पर कई ऐसे लोगों ने भी चढ़ाई की थी जो इस्लाम धर्म का पालन करते थे।
0: बिल्कुल,
1: यानी कि चढ़ाई करने वालों में से तो बहुत थी। धर्म प्रचार के बजाय हिंदुस्तान की संपत्ति लूटने में अधिक रुचि थी। उन्होंने श्रोता साथियों अंधाधुन लूट मचाई। हिंद के मंदिरों में से कईयों में अथाह संपत्ति थी। लुटेरों की दृष्टि उस पर पड़ी। उन्होंने सिर्फ हिंदू मंदिर ही लूटे सो नहीं, किसी मस्जिद में संपत्ति दिखी तो उसे भी लूट लिया। हम देखते हैं साथियों कि सबका एक ही धर्म था, यानी कि लूटपाट करना। बाद में आने वाले लुटेरों की टकराहट पहले आए लुटेरों के साथ हुई हो, ऐसी टकराहटों के बीच इस देश में श्रोता साथियों समन्वय की प्रक्रिया चलती रही।
0: बिल्कुल,
1: वहीं मध्ययुगीन संतों और सूफी फकीरों ने समन्वय की भावना को बहुत दृढ़ किया। हमारी संस्कृति की नींव में यही समन्वय है अंजलि जी। हमारे संगीत, कला, स्थापत्य, उत्सव, त्योहार, इन सभी क्षेत्रों में यह समन्वय स्पष्ट परिलक्षित होता है।
0: बिल्कुल,
1: उत्तर भारत का शास्त्रीय संगीत कुतुब मीनार और ताजमहल से लेकर अडालजा बावड़ी और सिदी सैयद की जाली तक का स्थापत्य इस समन्वय की गवाही देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमारी वेशभूषा और हमारी रसोई के व्यंजनों में श्रोता साथियों ये समन्वय साफ साफ दिखाई देता है। हम देखते हैं कि समन्वय की इस धारा को जबरदस्त आघात लगा अंग्रेजों के आगमन के कारण। समन्वय की प्रक्रिया रामकृष्ण परमहंस तक विकसित होती रही और वहीं दोस्तों रामकृष्ण विवेकानंद के पश्चात ये प्रक्रिया समाप्त हो गई।
0: बिल्कुल,
1: इतिहास में इसके उपरांत आए पश्चिमी लोग पश्चिम के आक्रांताओं में से किसी ने स्थायी तौर पर इस देश को अपना देश नहीं बनाया। यहाँ पर शासन करके वो लोग यहाँ की संपत्ति बटोर कर यूरोप ले गए। उनमें सबसे अंत में आए अंग्रेज, साथ ही उन्होंने साम दाम दंड और भेद से देश के अधिकांश भाग पर कब्जा जमाया। वहीं अंग्रेजों के विरुद्ध अंतिम महायुद्ध में इस देश के हिंदू सेनापति और सैनिक कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। वैसे अंग्रेजों की सेना में भी बहुत भारतीय थे श्रोता साथियों, पर 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम एक नेतृत्व के अधीन लड़ रहे थे।
0: बिल्कुल कशिश, यह एकता देखकर अंग्रेज चौंक उठे। भारत पर अपने शासन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उन्होंने इन दोनों कौमों के बीच विघटन डालने की नीति अपनाई।
1: बिल्कुल,
0: ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन के बाद ब्रिटिश सरकार ने शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली। उसके बाद बहुत बड़ी मात्रा में उसने भेद नीति चालू की। शुरुआत में लगभग 25 वर्षों तक उसने मुसलमानों की उपेक्षा की और हिंदुओं को सहलाया। हिंदू पढ़ने में आगे निकल गए, वे राजनीतिक संगठन बनाने लगे और 1885 में हिंदी राष्ट्र महासभा की स्थापना हुई और उनके मंच से स्वतंत्रता की मांग की थोड़ी थोड़ी भनक आने लगी। तब से अंग्रेज सरकार मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ खड़ा करने लगी। मुसलमानों का हाथ पकड़कर वे हिंदुओं के प्रति चौकन्ने होकर चलने लगे। अंग्रेज शासकों ने ही मुसलमान नेताओं के मन में अलग अलग मतदाता मंडल के विचार बीच बोए। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के लिए इतिहास की प्रस्तुति अलग अलग ढंग से की। एक तरफ उन्होंने औरंगजेब को रोजाना हिंदुओं से सिर काटने वाला बताया।
1: बिल्कुल,
0: दूसरी तरफ शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों के लिए जमीनें दी थी और शिवाजी की सेना में मुस्लिम अधिकारी थे। यह बात छिपाई। अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुस्लिम संप्रदाय का एक अड्डा बना दिया। अंग्रेज शिक्षाशास्त्रियों की ही प्रेरणा से शिमला में विराजमान वायसराय के आशीर्वाद से 1906 में ढाका में अखिल भारत मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। वर्षों बाद इस इतिहास का अनावरण करते हुए मौलाना शौकत अली ने लिंग की स्थापना को कमांड परफॉर्मेंस यानी कि अंग्रेजों के आदेश से हुई क्रियान्वित के रूप में वर्णित किया। श्रोता साथियों, उस समय लिंग सिर्फ बड़े बड़े नवाबों और जमींदारों का ही प्रतिनिधित्व करती थी। इन सबको अंग्रेज सरकार माई बाप का आश्रय देती थी।
1: जी हाँ जी जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी बहुत अच्छी चल रही है, ये बातें आगे और भी हम करेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: दोस्तों इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि दोस्तों सबकी गांधी सांप्रदायिक सौहार्द के प्रकरण को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: गीत से पहले बहुत अच्छी बातें चल रही थी श्रोता साथियों। अब इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं तो श्रोता साथियों 1858 के पश्चात कौमी संवादहीनता के नाटक में अंग्रेज शासकों की खलनायक जैसी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बन गई। उसके बाद वाले दशकों में हिंदू और मुसलमानों ने एकता के प्रयास की अंजलि दी।
1: बिल्कुल
0: हम देखते हैं कि दुर्भाग्य से वे प्रयास हृदय की गहराई के बजाय राजनीतिक टेबल पर सौदेबाजी जैसे अधिक रहे। दोस्तों इस सौदेबाजी में अंग्रेजों ने दो बिल्लियों की लड़ाई के बीच बंदर का ही पात्र निभाया।
1: बिल्कुल
0: बीच बीच में राष्ट्रीय भावना वाले लोगों ने हिंदू मुस्लिम दोनों कौमों को पास लाने के प्रयास किए। बहुत सारी चर्चाएं हुई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन एक ही नगर में और पास पास की तिथियों में ही आयोजित किए गए। दोनों संस्थाओं के नेताओं ने एक दूसरे के मंच से भाषण दिया। साथियों जहां किसी ठोस समाधान की बात आती तभी अंग्रेज सरकार मुस्लिम नेताओं की मांगों से थोड़ा अधिक देने का लालच देकर उन्हें अधिक मांगों के लिए प्रेरित कर देती।
1: बिल्कुल
0: इस पूरे खेल के दरमियान अंजलि जी सामान्य प्रजा में मुस्लिम लीग का प्रवेश अधिक नहीं था। कांग्रेस भी सभी धर्मों के मध्यम वर्ग की ही प्रतिनिधि थी। हम देखते हैं कि मुस्लिम जनता तो राजनीति से बहुत कम प्रभावित रहती थी। उन पर मुख्य प्रभाव अलबत्ता मुस्लिम नेतागिरी में अनेक राष्ट्रवादी मुस्लिम भी थे, उनमें से बहुत से एक साथ सदस्य रहे थे। हम देखते हैं कि राष्ट्रवादी मुस्लिमों का मुस्लिम जनता पर प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। कांग्रेस के अग्रणियों में थोड़े कट्टरपंथी हिंदू भी थे पर वे बहुत कम संख्या में थे। वहीं हिंदू जनता पर तो सामान्य रूप से राष्ट्रवादी नेताओं का ही प्रभाव था।
1: बिल्कुल इसी के साथ श्रोता साथियों बताना चाहेंगे कि गांधी जी ने जब हिंदुस्तान की राजनीति में प्रवेश किया तब देश की दशा जैसा कि हमने पहले जाना वैसी ही थी। मुस्लिमों के लिए अलग मतदान मंडल वर्षों पहले ही स्वीकृत हो चुका था। मुस्लिम लीग का नेतृत्व एक अल्प समुदाय तक सीमित था। उनमें भी राष्ट्रवादी और कौमवादी विचारधारा वाले लोगों का चिंतन अलग अलग था। कांग्रेस का नेतृत्व कशिश मुख्य रूप से गरम दल और नरम दल में बटा हुआ था। 1907 से 1915 तक नरम दल का प्रभाव अधिक था। सर फिरोज शाह मेहता तथा गोखले जी के अवसान के बाद नरम दल के प्रभाव में न्यूनता आ गई थी। तब तक कांग्रेस आम जनता की संस्था नहीं बनी थी। गांधी जी ने स्वदेश आने के बाद समन्वय की सदियों से विकसित प्रक्रिया को एक बार फिर से वेगवान किया। गांधी जी ने अपने शील चारित्र और सत्याग्रह के कार्यक्रम की वजह से कांग्रेस में द्रुत गति से सम्मानजनक स्थान पा लिया था। कांग्रेस का संविधान सुधारने का काम लोकमान्य तिलक के आग्रह पर उनको सौंपा गया था। गांधी जी ने कांग्रेस के संविधान में वांछित सुधार किए तथा सत्याग्रह आंदोलन में बहुत ऊंचे वर्ग के लोगों को भागीदार बनाया। उन्होंने कांग्रेस को एक विशिष्ट वर्ग की संस्था न मानकर सामान्य जनता की संस्था बना दिया। उनकी तरफ से शुरू हुई विविध रचनात्मक प्रवृत्तियों से समाज के गरीब लोगों को रोजी रोटी मिली। गरीब मुस्लिमों ने भी इसका अच्छी संख्या में लाभ लिया। लगभग इसी अवधि में देश के मुस्लिमों के मन खिलाफत के सवाल को लेकर बहुत अधीर थे। ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के समय जब तुर्की प्रतिपक्ष में था तब भी वहां रहने वाले खलीफा को युद्ध में कोई आंच न आए ऐसा विधान हिंद के मुसलमानों को युद्ध प्रयासों में शामिल करने हेतु किया। लगभग इसी अरसे में उन्होंने साथी राज्यों के साथ ऐसा सौदा किया था कि जीतने के बाद तुर्की देश का विभाजन कर दिया जाएगा। इस प्रकार भारत के मुसलमानों को तो उसने धोखा ही दिया था।
0: जी हाँ साथियों, अंग्रेजों के वचन भंग से मुसलमानों के मन व्यथित और उत्तेजित थे, परंतु देश के गैर मुस्लिम नागरिकों का इस तरफ खास ध्यान नहीं था।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों गांधी जी का ध्यान तुरंत इस तरफ गया। उन्होंने कहा कि इस दुख के समय हिंदुओं को मुसलमान भाइयों का साथ जरूर देना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के अगुवाओं से गांधी जी ने विचार विमर्श किया। आंदोलन अहिंसक रहेगा अंजलि जी, तब तक इसमें पूरा साथ देना स्वीकार किया, परंतु खिलाफत कमेटी में उन्होंने कोई पद स्वीकार नहीं किया। खिलाफत कमेटी के नेताओं ने गांधी जी की दोनों शर्तें स्वीकार कर ली थी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया था कि अहिंसा को वे मात्र नीति के रूप में स्वीकार करते थे,
1: जी जी
0: निष्ठा के रूप में नहीं। खिलाफत के बाबत भी हिंदू के मुसलमान ही विरोध करते हैं।

0: तो इसका प्रभाव कम होगा और यदि उसमें हिंदू भी मिल जाएं तो उसका आंदोलन प्रभावशाली होगा।
1: जी जी,
0: ये बात वे नेता समझते थे श्रोता साथियों। जब एक भाई कष्ट महसूस करता हो तब दूसरे भाई को भी उसकी मदद करनी ही चाहिए, यह गांधी जी अच्छी तरीके से समझते थे।
1: बिल्कुल श्रोता साथियों, खिलाफत विषयक एक सभा में ही गांधी जी ने पहली बार अहिंसक असहयोग का कार्यक्रम सुझाया था। एकाध वर्ष में पूरे देश में यह कार्यक्रम स्वीकृत हो गया था।
0: बिल्कुल,
1: एकाध वर्ष के प्रयत्न के अंत में कांग्रेस ने भी असहयोग और खिलाफत आंदोलन को अपने कार्यक्रम में शामिल कर लिया था। खिलाफत के निमित्त से दो लोकप्रिय नेताओं मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली के साथ गांधी जी पूरे देश में घूम आए थे।
0: जी
1: हाँ। समय देश में जितनी कौमी एकता बनी मालूम होती थी उतनी उससे पहले या बाद में कभी बनी ही नहीं थी।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि आज हमने कार्यक्रम के माध्यम से बात की सांप्रदायिक सौहार्द के बारे में, अगले रविवार को ये हमारी बातें फिर से होंगी, लेकिन अभी लेते हैं कार्यक्रम से जाने की अनुमति। तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।
2: तो साथियों, सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था
2: नाना अंजलि बुन हूँ था का?
1: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ये हुकी जाएगा, खेतर बंजर थी जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
2: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
2: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखवो, बारिश ने पानी नो संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नो जीवन सफल थी जागा।
1: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचावो, पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: मारू नाम गिल्ली है ने मू मुन्नी नी मोटी बोन हूँ। एक दाड़ो स्कूल तक आवी तो देख्यू कि मुन्नी घणी रोई रही हती, तो मू हमजी के ने पानी नी तर लागी रही है, तो मू दूरी ने बा कने गई ने कीधु कि बाबा मुन्नी ने तर लागी है तो इने पानी पीवड़ाव दे। बाए हफ्तिंग ना कही दीधु ने मने कीधु कि 100 महीना हुदी मुन्नी केवल इनी माँ नो दूध ज पिएगा, ने अगर आपड़े मुन्नी ने कहीं भी खवड़ावंगा तो इन्हे दस्त लागी जागा। तो पसे बीजी वगत मुन्नी रोई तो मैंने कान में कही दीदू कि 100 महीना हुदी तने केवल मानु दूधस पीवू है।
4: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है।
5: सेहत नो राज हूँ है बोन,
6: असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करूं, थोड़ू सू व्यायाम ने तात्काली ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह।
7: होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन नो स्वस्थ बनावंगा।
8: होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज।
3: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
9: पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
10: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की, जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
11: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तकी इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
12: हिंडो स्कूल जा आपड़े, अपना भी अपना पूरा करो।
10: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है, हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
13: होवे जय वरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
10: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

वागर रेडियो 90.8 एफएम प्रस्तुत करता है जनता जनार्दन का जनता के लिए कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। जी हां साथियों, भारतीय संविधान से जुड़ी तमाम जानकारियों को समुदाय तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग संविधान की विकास गाथा को जानें और उसके उद्देश्यों को समझें।

सबसे बड़े लोकतंत्र हैं हम, विधि विधान से हमारा नाता है। देशभक्ति का रंग भर कर देखो मन में, झंडे के तीन रंगों में संविधान लहराता है।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि कार्यक्रम में हमारी बहुत अच्छी बातें चल रही थी जागृति जी, पिछले रविवार को संविधान बोध और संविधानिक नैतिकता में हमने ढेर सारी बातों को जाना था। हमने कार्यक्रम के माध्यम से जाना था तानाशाही को रोकने का प्रयास, केंद्र राज्य विभाजन और लोक सेवा व्यवस्था के बारे में। संविधानिक नैतिकता का सामान्य अर्थ भी हमने जान लिया था। यही आज रविवार विशेष कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में हमारी बातचीत होने वाली है संविधानिक प्रासंगिकता के बारे में। जी हाँ
1: श्रोता साथियों, भारत का संविधान इतने समय बाद भी प्रासंगिक बना हुआ है, क्योंकि अंजलि संविधान निर्माता ये जानते थे कि संविधान के लागू हो जाने के बाद भी हमारे देश में सामाजिक विधानों जिनमें भेदभाव, छुआछूत, असमानता और हिंसा के कई रूप मौजूद है,
0: जी बिल्कुल,
1: उसका ज्यादा प्रभाव रहेगा और संवैधानिक विधानों की मौजूदगी बहुत कमजोर रहेगी, क्योंकि समाज आने वाले समय में उन्हीं राजनीतिक दलों को शासन का अधिकार देगा जो सामाजिक विधानों को बनाए रखने के लिए तैयार रहेंगे। श्रोताओं, शायद इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने संविधान में कई छोटी छोटी बातों का उल्लेख किया था, ताकि आने वाली सरकारें संविधान को पूरी तरह से खत्म न कर दे। यह भी एक वजह है जिसके चलते भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन गया।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि वर्तमान में हमारे देश सांप्रदायिक, जातिवादी और तमाम तरह की प्रतिगामी व्यवस्थाओं के बीच उलझा हुआ है। उसे बेहतर जीवन देने के लिए यह जरूरी है कि देश के नागरिकों में समुचित ढंग से संवैधानिक नैतिकता का विकास किया जाए। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक श्रेष्ठ संविधान का निर्माण किया है, उसे लागू भी कर दिया गया, लेकिन समस्या यह हुई कि देश के नागरिकों को संविधान संस्कार नहीं दिए गए। शिक्षण संस्थाएं तो शुरू कर दी गई, लेकिन नागरिक शालाओं की स्थापना और उनका संचालन नहीं किया गया। इसी उपेक्षा की वजह से आज देश संविधान से विमुख नजर आता है।
1: जी हाँ, साथ ही श्रोताओं, संवैधानिक मूल्यों का संदर्भ अगर बात करें तो कोई भी परिवर्तन ऐसा होना चाहिए जो समाज को समता मूलक, मानवीय और न्याय मूलक बनाए, करुणा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विश्वास रखने वाला बनाए। साथ ही अंजलि, यह तभी हो सकेगा जब हम अपने जीवन में सकारात्मक मूल्यों को शामिल करेंगे। यदि समाज का हर व्यक्ति मूल्यों को व्यवहार में शामिल करेगा तो पूरे समाज के व्यवहार में स्थायी बदलाव आ सकता है।
0: जी,
1: इन मूल्यों का स्पष्ट जुड़ाव संवैधानिक मूल्यों से होता है। श्रोताओं, संवैधानिक मूल्य केवल भाषण या प्रवचन के विषय नहीं है, बल्कि उनकी संवैधानिकता भी है। नागरिकों या राज्य के पास उन्हें अस्वीकार करने या खारिज करने का विकल्प नहीं होता है। केवल कानून या नीति बन जाने से बदलाव नहीं आते, यदि आ भी गए तो ऐसे बदलाव स्थायी नहीं होते।
0: जी बिल्कुल, यही दोस्तों बात आती है कि क्या है संवैधानिक मूल्य, यानी कि साथियों, संवैधानिक मूल्य कोई अमूर्त विचार नहीं है।
1: जी हाँ,
0: उनका एक स्पष्ट वैधानिक स्वरूप होता है। हमारे संविधान की उद्देशिका में स्पष्ट रूप से 7 मूल्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें जागृति जी, पहला मूल्य है पंथ निरपेक्षता, दूसरा मूल्य है लोकतंत्र, तीसरा मूल्य है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय।
1: जी हाँ,
0: चौथा मूल्य बताता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के बारे में। पांचवा मूल्य बताता है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। छठा मूल्य बताता है व्यक्ति की गरिमा और सातवां मूल्य है बंधुता।
1: बिल्कुल, इसी के साथ संवैधानिक मूल्यों के महत्व के बारे में बात करें तो अंजलि, संवैधानिक होने के कारण इन मूल्यों की सार्वभौमिकता भी है और अनिवार्यता भी है। समाज जिन मूल्यों को अपनाता है उनसे ही उसके चरित्र, स्वभाव और विश्वास का निर्माण होता है। जब समाज अहिंसा, करुणा, समानता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा और न्याय सरीखे मूल्यों को अपनी संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था का आधार बना लेता है, तब राज्य और व्यवस्था का व्यवहार बिल्कुल अलग ही स्वरूप में उभर कर आता है।
0: जी बिल्कुल,
1: श्रोताओं, ये सोचा जाना जरूरी है कि क्या बिना न्याय, समानता और करुणा को अपनाए वंचितों को आवश्यक सेवाएं प्रदान की जा सकती है। अगर शिक्षा के अधिकार में समानता नहीं होगी अंजलि, तो जाति आधारित और लैंगिक भेदभाव के असर से बच्चों को कैसे बचाया जाएगा।
0: जी बिल्कुल,
1: सुरक्षित मातृत्व या मातृत्व अधिकारों की बात भी समानता, न्याय और करुणा के मूल्यों के बिना भी की जा सकती है या नहीं।
0: साथियों, आप बताना चाहेंगे कि संविधान आधारित दृष्टिकोण का क्या अर्थ होता है। कहना चाहेंगे कि संविधान आधारित दृष्टिकोण को अपनाने का मतलब ये है जागृति जी, कि संवैधानिक मूल्यों और प्रावधानों को जानते हुए उन्हें अपने नजरिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनाना।
1: जी हाँ,
0: संविधान में दर्ज मूलभूत अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों, मूल कर्तव्यों, शासन व्यवस्थाओं के तरीकों और न्यायिक विधाई पद्धति को जानना और अपनी रणनीति में शामिल करना। बच्चों के अधिकारों तथा शोषण से मुक्ति का सपना भारत के समाज ने उपनिवेशवाद से मुक्ति के समय ही देख लिया था।
1: जी हाँ।
0: किंतु उस सपने को फैलने से रोकने की कोशिश बार बार की गई, कभी जातिवाद की बारूद से तो कभी सांप्रदायिकता के जरिए, कभी असमान विकास की प्रक्रियाओं के जरिए तो कभी संसाधनों के असमान वितरण के जरिए तो कभी स्वास्थ्य शिक्षा भोजन रोजगार की अकाल पैदा करके इसे रोका गया।
1: बिल्कुल। तो अंजलि, जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में, तो ये बातें हम आगे भी करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी बिल्कुल।

0: का साथ है। इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में।
1: जैसा कि हम बात कर रहे थे संविधान बोध और संवैधानिक नैतिकता को लेकर, हमने जाना संवैधानिक प्रासंगिकता के बारे में, संवैधानिक मूल्य के संदर्भ के बारे में, साथ ही क्या है संवैधानिक मूल्य, संवैधानिक मूल्यों के महत्व के बारे में और संविधान आधारित दृष्टिकोण के अर्थ के बारे में।
0: जी,
1: यही अगर सबके संविधान के बारे में बात करें तो श्रोता साथियों, हमें ये सोच बदलनी होगी कि संविधान को जानना केवल कुछ सत्ताधारी लोगों की जिम्मेदारी है। संविधान को अपने जीवन का मूल अंग बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। हर नागरिक को संविधान और उसके प्रावधानों के बारे में जरूरी जानकारी रखनी चाहिए और सत्ता से ये पूछना चाहिए कि विकास की नीतियाँ और प्रक्रियाओं पर काम करते हुए संविधान को आधार बनाया जा रहा है अथवा नहीं।
2: जी बिल्कुल, इसी के साथ जागृति जी, हम देखते हैं कि इसी के साथ अब वक्त आ गया था कि हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बदलाव और विकास की प्रक्रिया में संविधान आधारित दृष्टिकोण को अपनाएं। हमारा संविधान समाज और राज्य के बीच समन्वय और व्यवस्था के संचालन के लिए कुछ बुनियादी सिद्धांत प्रतिपादित करता है।
1: जी हाँ।
2: इन सिद्धांतों के क्रियान्वयन में नागरिकों की भूमिका सबसे अहम है। अब जागृति जी, समस्या यह है कि आजादी के बाद देश में नागरिकता के पाठ को लेकर शिक्षण प्रशिक्षण ही नहीं हुआ।
1: बिल्कुल, और अंजलि, इसके पीछे दो वजह हो सकती है। एक तो ये कि जाति, लिंग, आर्थिक वर्ग और क्षेत्र आधारित विभाजन ने राष्ट्र को संविधान पर एकजुट न होने दिया। दूसरा ये कि हमारे यहाँ नागरिकता को महत्वपूर्ण माना ही नहीं गया, क्योंकि नागरिकता से परे हम धर्म, जाति और लैंगिक हितों में उलझे रहे। आज भी अगर हम संविधान को सही ढंग से समझना, महसूस करना शुरू करें तो सजग नागरिकता की तरफ जरूरी कदम बढ़ाया जा सकता है।
2: जी बिल्कुल, जागृति जी, अब बात आती है संवैधानिक चेतना और बुद्धिमत्ता की। तो साथियों, संवैधानिक चेतना का अर्थ है निजी, सामाजिक और व्यवस्थागत जीवन में संविधान के मूल्यों का मौजूद होना, उनका पालन किया जाना। इसका अर्थ है कि एक ऐसी नजर विकसित होना जो यह देख सके कि कब, कहां, कैसे और क्यों न्याय, समता, स्वतंत्रता, गरिमा, बंधुता के मूल्यों की उपेक्षा होती है।
1: जी हाँ।
2: यदि यह चेतना विकसित हो सके तो हम देश के लोगों में आर्थिक असमानता और बहुसंख्यक आबादी के साथ होने वाले अमानवीय शोषण को देखने और उसका विरोध करने की क्षमता पा लेंगे।
1: बिल्कुल,
2: संवैधानिक चेतना का सीधा जुड़ाव राजनीतिक लोकतंत्र की मजबूती से भी है। यह चेतना लोगों को समझा सकती है कि उन्हें जाति, धर्म और वैमनस्यता को आधार बनाकर अपने प्रतिनिधि और सरकार को नहीं चुनना है।
1: जी हाँ। इसी के साथ अंजलि, यदि हम लोकतंत्र को केवल रूप में ही नहीं वरन यथार्थ में बनाए रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? श्रोता साथियों, इस पर मेरे विचार के अनुसार सबसे पहले हमें यह करना चाहिए कि अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम संवैधानिक रीतियों को दृढ़ता पूर्वक अपनाएं।
2: जी हाँ।
1: इसका अर्थ ये है कि क्रांति की निर्मम रीतियों का हम परित्याग करें। इसका अर्थ ये है कि हम सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह की रीति का परित्याग करें। आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब कोई मार्ग न रहे तब तो इन संवैधानिक रीतियों को अपनाना बहुत कुछ न्यायपूर्ण हो सकता है।
2: जी बिल्कुल,
1: पर जब संवैधानिक रीतियों का मार्ग खुला हुआ है तब इन असंवैधानिक रीतियों को अपनाना कभी न्याय संगत नहीं हो सकता। ये रीतियाँ अराजकता के सूत्रपात के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और जितनी जल्दी इनका परित्याग किया जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा है। ये शब्द थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के।
2: जी बिल्कुल, इसी के साथ हम देखते हैं कि शायद डॉक्टर अम्बेडकर को यकीन था जागृति जी कि भारत के लोग राजनीतिक दल और सरकारें संविधान को तुरंत अपना ही लेने वाले हैं। उनमें यह विश्वास कहां से आया होगा, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है।
1: जी,
2: शायद जागृति जी, उन्होंने सोचा होगा कि स्वतंत्र भारत संवैधानिक चेतना और बुद्धिमत्ता को अपना लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी यह माना जाता है कि संविधान को धारण करना केवल सरकार और न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आज़ादी के 75 साल व्यर्थ हो गए। हमारी बुनियादी समझ यह भी है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्ति के साथ ही भारत के एकीकरण की शुरुआत हुई थी। इसके पहले भारतीय उपमहाद्वीप की भूमि छोटे, बड़े और बहुत बड़े साम्राज्यों में विभाजित थी। उसमें भाषाई विविधता थी, राज्य व्यवस्थाओं में विविधता थी, सांस्कृतिक विविधता थी, सामाजिक विविधताएं और धार्मिक विविधताएं भी थी। भारत का एकीकरण विविधताओं के सम्मान और उनके अस्तित्व के बने रहने की नैतिक शर्त पर हुआ है। इस विविधता को स्वीकार करना ही संवैधानिक बुद्धिमत्ता है।
1: जी हाँ, साथ ही अगर संवैधानिक चेतना और बुद्धिमता के गुण के बारे में अगर हम बात करें अंजलि, तो संवैधानिक चेतना और बुद्धिमता का सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है कि यह हर व्यक्ति, हर बच्चे, युवा और लैंगिक पहचान से जुड़े व्यक्ति में एक रूप में पाई जाती है, लेकिन समाज और सरकार इसे निष्क्रिय बनाए रखते हैं। यदि संवैधानिक मूल्यों को सबके द्वारा स्वीकार कर लिया जाए तो मजहबी, जातीय, नस्लीय आधारों पर होने वाले टकरावों को समाप्त किया जा सकता है।
2: जी बिल्कुल,
1: हर व्यक्ति को ये छूट होनी चाहिए कि वह अपना विचार सामने रख सके। सभी के विचारों को सुनना और समझना ही संवैधानिक बुद्धिमता का सूचक है। श्रोताओं, लोकतंत्र के मूल्यों को अपने जीवन के व्यवहार का आधार बनाना भी संवैधानिक बुद्धिमता का ही द्योतक है।
2: जी बिल्कुल, तो जागृति जी, जैसा कि आज कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रही हैं, आज हम कार्यक्रम के माध्यम से जान पाए संवैधानिक मूल्य का संदर्भ क्या है, संवैधानिक मूल्य आखिरकार संवैधानिक मूल्यों का क्या महत्व है और संविधान आधारित दृष्टिकोण का क्या अर्थ है, ये बातें तो ढेर सारी हो गई हैं। अगले रविवार को हमारी श्रोता साथियों से फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ अनोखी बातों के साथ में।
1: जी हाँ
3: साथियों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: सेहत नु राज हूं है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तकी करूं, थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: अरे गोरी, इतने सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
3: अरे दीदी, क्या करूं? कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
2: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है, जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा। पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है, और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
3: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी, और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
2: ये हुई ना बात गोरी।
1: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: भाई ने बोलो, आप इकारे विचार करियो है कि जैया पेड़ की छाव में आपड़े रह हैं, यह आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल रह हैं, ये भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। हो गए, अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं, लेकिन आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा, ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
5: हो गए, प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। हो गए, आज नाना कदम है ये अबावरा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: नमस्कार, आओ भाइयों और बहनों, सुनते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज वार रविवार का दिन है और आज ही के दिन हम कार्यक्रम दादी माँ की रसोई को लेकर हाजिर होते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको नई नई रेसिपी के बारे में बताते हैं ताकि आप ये रेसिपी अपने घर पर बनाकर अपने परिवार वालों को खुश कर सकते हैं। और हम जो रेसिपी बताते हैं वो रेसिपी की सामग्री भी हमें घर पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ऐसे ही आसान आसान रेसिपी को लेकर हम हाजिर होते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आज भी मैं आपको आम की कैंडी और आम के पापड़ के बारे में बताऊंगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप बने रहें कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहा था कि आज वार रविवार का दिन है और आज ही के दिन हम कार्यक्रम दादी माँ की रसोई के माध्यम से नए नए व्यंजनों के बारे में आपको बताते हैं। तो आज जैसा कि मैंने गीत से पहले कहा था कि मैं आपको आम की कैंडी के बारे में बताने वाली हूँ और आम के पापड़ के बारे में बताने वाली हूँ। ये दोनों ही रेसिपी बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में प्रतिभा जी आए हुए हैं। वो हमें बताएंगे कि आम की कैंडी किस तरह से बनती है, साथ ही आम का पापड़ किस तरह से बनता है और ये दोनों ही चीज हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभकारी है। तो आइए हम सुनते हैं प्रतिभा जी से आम की कैंडी और आम के पापड़ के बारे में रेसिपी। नमस्ते प्रतिभा जी।
1: नमस्ते जागृति जी,
0: आपका स्वागत है प्रतिभा जी हमारे आज के इस कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में।
1: धन्यवाद जागृति जी।
0: जैसा कि प्रतिभा जी आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में पधारे हैं और आप हमारे श्रोता साथियों को आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नई रेसिपी के बारे में बताने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या बताने वाले हैं।
1: जी, मैं अभी तो क्या है कि जागृति जी कच्चे आम बहुत आ रहे हैं गर्मियों में, तो मैं आपको एक कच्चे आम की कैंडी बताना चाहूँगी।
0: बिल्कुल,
1: जो बहुत ही मतलब आसान से आपके घर में ही सामान मिल जाएगा और इसे आप बनाकर घर पे खा सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि प्रतिभा जी आपने बताया कि आज आप आम की कैंडी के बारे में बताने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि गर्मियों का मौसम है और आम तो अभी बहुत सारा आए हुए हैं, तो हमारे श्रोता साथियों के लिए तो ये रेसिपी तो बहुत ही अच्छी होगी ताकि वो घर पर बनाकर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप आम की कैंडी कैसे बनाते हैं उसकी सामग्री के बारे में हमारे श्रोता साथियों को बताइए।
1: जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं श्रोता साथियों को नमस्कार कहना चाहूँगी। कच्चे आम की जो कैंडी है उसके लिए आपको घर में ही बेसिक सारे सामान मिल जाएंगे। कच्चे आम हमको चाहिए होंगे 500 ग्राम, मिश्री या आप शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं, चीनी जिसको कहते हैं। मिश्री लें तो धागे वाली लें 500 ग्राम, ठीक है। आप केसर या हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से आपको बता दूँगी, ठीक है। और एक कॉर्नफ्लोर आता है और घी 1 चम्मच, बस इतनी सी सामग्री आपको चाहिए।
0: एक बार पुनः आप हमारे श्रोता साथियों को सामग्री नोट करवा दीजिए।
1: जी, कच्चे आम 500 ग्राम ले लीजिएगा, कॉर्नफ्लोर 3 चम्मच, घी 1 चम्मच, मिश्री धागे वाली 500 ग्राम, अगर नहीं हो तो आप शक्कर का भी उपयोग कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: केसर या हल्दी जो भी हो उसका उपयोग कर सकते हैं।
0: बिल्कुल प्रतिभा जी, तो जैसा कि प्रतिभा जी ये तो आपने हमारे श्रोता साथियों को आम की कैंडी बनाने के लिए जो सामग्री हमें चाहिए उसके बारे में बताया, यही हम आपसे उसकी विधि के बारे में जानना चाहेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं।
1: जी बिल्कुल, सबसे पहले हम जो 500 ग्राम आम है ना उनको लेकर उनको अच्छे से धुल लेंगे। फिर कुछ भी नहीं करना है, वो सीधे जो आम है कच्चे आम है ना उनका छिलका उतारना कुछ नहीं करना, उनको चारों तरफ जो गोल एरिया है उस तरफ से चाकू से उसमें कट लगा देंगे चारों तरफ।
0: बिल्कुल,
1: तो सारे आमों में ऐसे ही हम कट लगा देंगे। फिर एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें एक ऐसा स्टैंड रख देंगे उसके ऊपर हम छलनी रख सके।
0: जी हाँ,
1: तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे उसमें, 2 कटोरी या 3 कटोरी के करीब, थोड़ी बड़ी कटोरी होनी चाहिए, है ना। और उसमें फिर वो छलनी रख देंगे उसके ऊपर, उसके ऊपर आम रख देंगे छलनी में और उसको ढक देंगे करीब 10 मिनट तक, उसको ढक के पका लेंगे।
0: जी हाँ,
1: फिर उसके बाद हम चाकू लेके उसको चेक कर लेंगे कि आम पक गया कि नहीं पक गया है। आपको कलर से भी पता चल जाएगा कि आम पक गया है, है ना, ठीक है। फिर उस आम को हम बाहर निकाल के थोड़ा ठंडा कर लेंगे, फिर उसका जो गूदा है वो हम निकाल लेंगे सारा।
0: जी,
1: गूदा निकालने के बाद एक मिक्सर ग्राइंडर ले लेंगे, मिक्सी का जार ले लेंगे, उसमें वो पल्प जो हमने गूदा निकाला है वो डाल देंगे और मिश्री को हम पहले से ही कूट के रख लेंगे, क्योंकि मिश्री धागे वाली जो होती है वो थोड़ी टुकड़े टुकड़ों में रहती है।
0: जी जी,
1: तो उसको हम एक खलबट्टे पे कूट लेंगे।
0: बिल्कुल,
1: और फिर वो पल्प जो आपने डाला है ना गूदा मिक्सी के जार में, उसमें 2-3 चम्मच डाल देंगे मिश्री और फिर उसको चला देंगे मिक्सर ग्राइंडर में। फिर बाद में देखेंगे कि अगर वो बहुत ही मतलब क्रीमी नहीं हुआ है तो फिर उसमें 2-3 चम्मच डाल के फिर उसको वापस से चला के उसको मतलब एक क्रीमी लुक लेकर आना है उसमें। उसके बाद एक कढ़ाई ले लीजिएगा
0: जी,
1: उसमें वो पल्प डाल दीजिएगा और उसके बाद जो मिश्री जितनी भी बची मिश्री है वो डाल दीजिएगा और फिर धीमी आंच पे उसको करीब 10 से 10-12 मिनट तक पकाइएगा।
0: बिल्कुल,
1: जब वो 10-12 मिनट तक पक जाए तो वो उसमें क्या करिएगा, कॉर्नफ्लोर जो आप मैंने बताया था ना 3 चम्मच, उसमें बस 3 चम्मच ही पानी डालिएगा, ज़्यादा पानी मत डालिएगा, नहीं तो वो फिर उसको मॉइस्चर सुखाने में फिर दिक्कत लगेगा
0: जी बिल्कुल,
1: तो वो करके फिर उसको चलाते रहिएगा बराबर 5 मिनट तक। जब ये हो जाए तो उसके बाद आपको पता ही चलने लगेगा कि वो कढ़ाई छोड़ने लगता है। उसमें बस एक चम्मच घी डाल दीजिएगा, फिर उसको ठंडा होने दीजिएगा। एक थाली ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा घी चारों तरफ लगा के
0: जी जी
1: जो वो बना हुआ है ना उसको डाल दीजिए,
0: पूरा
1: गूदा उसको फैला दीजिए। वो ठंडा हो जाए फिर उसके छोटे छोटे पीस आप अपने हिसाब से जैसे भी काटने हो, चौकोर ट्रायंगल जैसे भी काटे हो आप काट के
0: अपनी मर्जी अनुसार काट सकते हैं
1: बिल्कुल। फिर उसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। उसके बाद जो मिश्री थोड़ी सी बची हुई है उसमें उसको लपेट के आप इसको करीब 15 से 20 दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि प्रतिभा जी आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे श्रोता साथियों को आम की कैंडी के बारे में बताया कि किस तरह से आम की कैंडी हम घर पर ही बना सकते हैं और सामग्री भी हमें घर पर ही उपलब्ध हो जाती है, तो ये आम की कैंडी की सामग्री और विधि के बारे में तो आपने बताया, यही हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि इसके फायदे क्या होते हैं।
1: देखिए कच्चे आम की कैंडी स्वाद में तो चटपटी होती है, इसके कई स्वास्थ्य फायदे भी हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि इसमें भरपूर मात्रा में डाइट्री फाइबर होता है जो आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर पाचन क्रिया को सुधारता है
0: जी
1: और
0: हाँ।
1: कब्ज जैसी समस्याओं में भी राहत दिलाता है। कच्चे आम से शरीर को ठंडक मिलती है, डिहाइड्रेशन से बचाने में भी मदद करता है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको इम्यूनिटी हम कहते हैं उसको भी ये
0: बढ़ाता है। बिल्कुल,
1: ये पेट में अच्छे बैक्टीरिया को भी बढ़ावा देता है और आंतों में जो माइक्रोबायोम संतुलन को बनाए रखने में ये मदद करता है। ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए जागृति जी बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है और स्वादिष्ट एक मतलब स्नैक टाइप है ये, जिसे आप घर पे आसानी से बना सकते हैं।
0: जी हाँ, तो जैसा कि प्रतिभा जी आज आपने बहुत ही अच्छा बताया कि आम की कैंडी किस तरह से बनती है, इसके लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए, साथ ही इसके फायदों के बारे में, तो प्रतिभा जी आगे भी हम जानेंगे आम के पापड़ के बारे में आपसे ही रेसिपी के बारे में, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। और जैसा कि गीत से पहले प्रतिभा जी जुड़े हुए थे, उन्होंने हमें आम की कैंडी के बारे में बताया था कि किस तरह से आम की कैंडी बनाई जाती है, तो उसके लिए सामग्री क्या क्या चाहिए। यही प्रतिभा जी हमारे साथ जुड़े हुए, अब हम उनसे जानते हैं आम के पापड़ के बारे में।
1: जी, तो इस समय आम बहुत आ रहे हैं गर्मियों में, तो तरह

0: गट्टे में कूट लेंगे ना, वो जो दरदरी सी रहती है ना उसी को चिली फ्लेक्स बोलते हैं,
1: जी बिल्कुल
0: है ना। और घी या तेल कुछ भी आप ले सकते हैं थाली को चिकना करने के लिए।
1: बिल्कुल, हमारी आवश्यकता अनुसार।
0: जी
1: जी बिल्कुल प्रतिभा जी, ये तो आपने सामग्री के बारे में बताया, तो मैं चाहूंगी कि एक बार पुनः आप इस सामग्री को फिर से हमारे श्रोता साथियों को बताइए।
0: जी जागृति जी, कच्चे आम 1 किलो ले लीजिएगा, चीनी 1 से 1.5 कप, काला नमक 1 छोटा चम्मच, सादा नमक 1/2 छोटा चम्मच, भुना हुआ जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर या फिर चिली फ्लेक्स 1/2 छोटा चम्मच, घी या तेल थाली को चिकना करने के लिए चाहिए।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि प्रतिभा जी ये तो आपने सामग्री के बारे में बताया, यही आप हमारे श्रोता साथियों को इसकी विधि के बारे में बताइए कि किस तरह से हम आम के पापड़ को बना सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, सबसे पहले हम कच्चे आमों को धोकर छील लेंगे और फिर उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे।
1: बिल्कुल,
0: गुठली को अलग कर देंगे, ठीक है। फिर इन कटे हुए आमों को हम कुकर में डाल देंगे और फिर 1 या 2 कप पानी डालकर इनको 1 से 2 सीटी आने तक मतलब कि बॉयल कर लेंगे।
1: बिल्कुल,
0: फिर ये जब आम नरम हो जाए ना तो इनको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडे हो जाए तो फिर ग्राइंडर लेकर उसमें इसका क्या बोलते हैं पीस कर एकदम स्मूथ पेस्ट, जैसे चिकना बिल्कुल होता है ना उस तरह का पेस्ट बना लीजिए।
1: जी,
0: कच्चे आमों में कभी कभी ऐसा होता है कि रेशे आ जाते हैं, तो आप एक छन्नी से इस पल्प को पूरा छान लीजिए।
1: बिल्कुल,
0: ताकि ये एक समान हो जाएगा और इसमें से रेशे भी निकल जाएंगे और जो खाते समय आपके मुंह में
1: नहीं आएंगे। बिल्कुल,
0: फिर आप एक कढ़ाई ले लो, उसमें इस आम के पल्प को डालो और धीमी आंच पर 5 मिनट तक पका लो।
1: जी बिल्कुल,
0: ठीक है। फिर उसके बाद जो भी मैंने सामग्री बताई है, चीनी, काला नमक, सादा नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर या चिली फ्लेक्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ये आप उसमें डालकर करीब अब इसको धीमी आंच पे आपको 10 से 15 मिनट तक पकाना है।
1: जी बिल्कुल,
0: तब तक पकाना है जब तक ये मतलब कढ़ाई का जो तला होता है ना वो छोड़ने ना लगे।
1: जी जी,
0: जब ये छोड़ने लगे तो मतलब इसकी पकने की यही एक आपको चीज़ है दिखाई पड़ेगी कि ये कढ़ाई के जो किनारे हैं वो छोड़ दे।
1: जी बिल्कुल,
0: तो समझ लीजिएगा पक गया है। इसको ठंडा कर लीजिए, फिर इसके बाद एक थाली में तुरंत ही घी या तेल जो भी है
1: लगाते हम,
0: हाँ लगा के जो ये बने हुए है ना सामग्री इसको डाल दीजिए और पतला पतला फैला दीजिए।
1: बिल्कुल,
0: और इसके बाद इसको आप धूप में 1 या 2 दिन तक सुखा लग सकते हैं। अगर धूप नहीं है तो आप पंखे के नीचे भी इसको सुखा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जब ये सूख जाए तो फिर इसके छोटे छोटे मतलब टुकड़े आप अपने आकार के काट लीजिए।
1: बिल्कुल,
0: और आप यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं फिर।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि प्रतिभा जी आपने आम के पापड़ के बारे में बताया कि किस तरह से आम का पापड़ हम बना सकते हैं, उसके लिए क्या सामग्री चाहिए, साथ ही बनाने की विधि के बारे में बताया, यही हम आपसे इसके फायदे के बारे में जानना चाहेंगे कि ये जो आम का पापड़ है वो किस तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माना जाता है।
0: देखिए, इसमें विटामिन सी बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है, ये मतलब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करने में मदद करता है।
1: बिल्कुल,
0: खट्टा मीठा स्वाद मुंह के स्वाद को अच्छा करता है, जिनको भूख कम लगती है उनको भी मतलब भूख बढ़ जाती है, जी मचलाने में भी ये राहत करता है, जैसे सफ़र के टाइम भी आप इसको अपने साथ कैरी कर ले जा सकते हैं। ये गर्भवती महिलाओं में जब अगर उनको जी मचलाए तो ये खा लें तो उससे भी उनको फ़ायदा मिलता है।
1: जी हाँ,
0: और इसमें फाइबर और एंजाइम होते ही हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: जैसे कि पेट फूलना है, एसिडिटी की समस्या है, क्योंकि हमने इसमें काला नमक और जीरा डाल रखा है, इसलिए पेट फूलना और एसिडिटी की समस्या में भी यह राहत आपको दिला
1: सकता है। जी, तो जैसा कि आपने इसके फ़ायदों के बारे में बताया कि आम का जो पापड़ होता है उसका क्या फ़ायदे होते हैं, साथ ही हमने बहुत सारी बातें की सामग्री के बारे में, विधि के बारे में, तो जैसा कि समय समय पर आकर प्रतिभा जी आप हमारे श्रोता साथियों को ऐसे ऐसे व्यंजनों के बारे में, रेसिपी के बारे में बताते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद जागृति जी।
1: जैसा कि श्रोता साथियों, प्रतिभा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने हमें आम की कैंडी और आम के पापड़ के बारे में बताया कि ये किस तरह से हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है और हम इसे कैसे बना सकते हैं। अब समय का मान रखते हुए हमें आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना होगा, पर जाने से पहले आपको सुनवाना चाहेंगे एक और गीत।

साथियों इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज जो भी रेसिपी जो भी व्यंजन आपको बताएं वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम दादी माँ की रसोई वाग रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो साथियों अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी जागृति भट्ट को कार्यक्रम दादी माँ की रसोई से जाने की अनुमति। नमस्कार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए, हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। होटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून।